0: कार्यक्रम सुबह 7:30 सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रभु को प्राप्त करने का पहला साधन है प्रभु को प्राप्त करने का निश्चय। यह निश्चय होने पर ही इंद्रियों को अपने वश में रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है और कुविचार छीण हो जाते हैं, अंत में उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: शक्ति कम है बुद्धिमंद है, इसके लिए तो चिंता ना कर, तेरे पास जो कुछ है उसी के द्वारा तो उनकी पूजा करने को तैयार हो जा।

तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। इसके साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए चलते हैं दिल्ली।

0: कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता, जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
3: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
5: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল

0: হচ্ছে এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। ১৯২০ সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ ১৯২৩ সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বলাবো না, ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে ২০২৬ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ১২তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20. आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30. आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50. दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस. इट हेल्प अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल. इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई. इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप्स एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे. मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स. द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स. दैट इज व्हाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः. अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है. ये संतुलन ही योग का आधार है. यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है. लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं. बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको. योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डू और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध. ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है. इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा

0: से फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
0: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं और साथ ही भारत में इस समय

0: जो विदेशी मौजूद हैं, हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
1: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
2: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है, इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं। तो
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं, योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में?
2: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
3: स्कंध चालन जो है, ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है। और थोरेसिक कैविटी जो है, उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, उधर काम हो रहा होता है। और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं?
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी,
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना,

0: योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
1: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
1: yes,
0: and... और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब यह कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूं लेकिन नहीं

0: जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए। बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशकासन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasana.
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
1: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है।
0: जी,
1: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा?
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर।
0: जी,
2: बहुत ही
0: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी?
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है। और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी।
1: और

0: पवन मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्तासन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी,
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है। हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएं, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं, और नाड़ी

0: शोधन किया जा रहा है, तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
1: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं, तो ये प्राणों को भी लंबा करता है। आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना, और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरियेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
0: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
1: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
0: जी,
1: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, व्हिच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
0: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है।

0: मिशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो. सारी चीजें, मैंने मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा. मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है.
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान. और यहाँ पर अब प्रार्थना, शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है.
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर.
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
2: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं. और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं. आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है. तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई.
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yog abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jinme जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे. और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़े.
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड. And we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga.

0: embraced yoga as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinha ji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
1: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बनके 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट उस सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है, फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है, फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
0: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशन्ड एंड एज

0: You also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यालयों में संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया. योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंड लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है. सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी
0: so
1: को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की।

0: आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
7: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. Three Indian flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतार कर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में तीन मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क्यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क़यादत की। बहुत से मरकजी वज़रा, रियासती वज़रा और सीनियर अहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब

0: भारत और बैरूनी मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार होंगे अब से कुछ ही पलों में।
2: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा, सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।

0: योगाभ्यास के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत

0: की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं लखनऊ स्थित जन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
3: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
4: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
1: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
4: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और XHandle AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम कल 100% पूरा कर लिया गया। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य संपन्न हुआ। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट यूजी पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
7: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
8: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत का हिट्स सुपर हिट्स इस अंतराल के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: वीडियो लाइक करने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा है हम दिल दे चुके सनम फिल्म का, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।
1: मीडियम वेव 401.6 एक मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं, और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी प्रगति के रूप में देख सकते हैं, और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, और इन सबके पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें अब काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र, कृषि वगैरह में, इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है। इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य करता है।
5: जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी?
4: क्योंकि भारत, हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है, भारत युवाओं का देश है, और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है, उसका सदुपयोग करना उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी इम्प्लॉयबिलिटी

0: को बढ़ाएं, उनमें व्यावहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहाँ पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग एक तिहाई जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर, इसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं?
0: देखिए सर, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना। इसके लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नव कल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है और आपको मैं बताते हुए मैंने बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सकें अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए, इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया।
1: जी
0: दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का, कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी और ऐसे ऐसे कुछ, फोटोग्राफी, ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। दूसरा, तीसरा, यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है। 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट है वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं, योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों में, बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, एनसीसी, एनएसएस, जो विद्यार्थियों के फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके। तो ये भी एक बार हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है।
1: जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है, वो आएगी और नीचे बहेगी जैसे नदी बहती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो तीन करेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं, वो है जजमेंट करने का कि कोई काम करना है नहीं करना, ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी। मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करोगे जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी। वो तो लीडरशिप का जो है इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ क्रिएशन, क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे।
1: जी
0: क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा, और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो
1: जी
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इंप्रूवमेंट आदमी करता रहता है, व्यक्ति मानव। तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है, और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब, इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में। और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए।
1: जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें?
0: हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए। और जो हमारा जो लाइब्रेरी है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएसडी ऑर्डिनेंसेज में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें एक ये अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो फेलोशिप्स हैं, इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें लगभग 40-42 हजार रुपए बच्चों को मिल जाते हैं। इतना एक फेलोशिप 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से बिना किसी तनाव के अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं, और इसके माध्यम से एक उनके आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें।
1: सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। सीयूटी के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ रेट यूनिवर्सिटी है जो कि हाईएस्ट ग्रेड नैक से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है उसमें हम काफी ऊपर हमारे रिकॉग्निशन मिलती है हमें। और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूँ कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनको पूरा करता है।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 21 जून है और आज के दिन को आलमी योम योगा के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आप समाअत फरमाएंगे। पहले एक मुख्तसर तकरीर। योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बेहतर जिंदगी जीने का फन भी है। इसके बाद हम आलमी योम योगा के हवाले से आपको एक उबी रिपोर्ट सुनवाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे जनाबे राज आजमी से उनका कलाम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस मुख्तसर तकरीर से। उन्वान है योगा सिर्फ वर्जिशी नहीं बेहतर जिंदगी के जीने का फन भी है। आलमी योम योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद यह है कि हिंदुस्तान की कदीम सकाफत के जरिए जिस्मानी जहनी और रूहानी मुशक्कतों के साथ सेहत और तंदुरुस्ती के फवायद को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। योगा करने के बहुत से फायदे हैं। योगा करने से बहुत सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, खुद को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। साथ ही योगा करने से रूहानी सुकून भी मिलता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा वक्त निकालकर योगा को एक मामूल बना लें तो यकीनन आपके जिस्मानी और जहनी तौर पर फवायद सामने नजर आएंगे। वजीर आजम ने हिंदुस्तानी अवाम को सेहत के तई बेदार रखने के लिए योगा को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नई शिनाख्त अता कराई है और पूरी दुनिया को योगा की अफादियत से मुतारिफ कराया है। 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की तजवीज पेश की थी। 11 दिसंबर सन 2014 को इस तजवीज को मंजूरी मिल गई और पहला आलमी योम योगा 21 जून सन 2015 को मनाया गया। इस साल 12वां योम योगा हम मना रहे हैं। इस मौके पर सरकारी महकमों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर इदारों में योगा के हवाले से खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। बैनुल अक्वामी योम योगा के मौके पर हमें योगा की अफादियत को समझना होगा। योगा के बहुत से फायदे हैं, हमें अपनी जिंदगी में इसे दाखिल करना होगा ताकि सेहत के साथ साथ हमारा जहन भी तरोताजा रहे। योगा सिर्फ वर्जिश ही नहीं बेहतर जिंदगी जीने का फन भी है। सामईन, अभी आप आलमी योम योगा के मौके पर ये मुख्तसर तकरीर समाज फरमा रहे थे और अब समाज

बात है, बाहर तौर नुमाया होना अपनी फितरत है, बाहर तौर नुमाया होना। शेर मुलाजा फरमाइए कि चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो, चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो, वरना तुम

0: इस संदेश के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार हैं शंकर महादेवन।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को। आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
5: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले को।

0: आशा भोसले के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
3: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
1: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आई हैं नूतन मिश्रा और प्रस्तुत करता है नूर मोहम्मद।
4: 0 5 5 1 2 2 0 5 3 8 6 Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
4: Hello, फरमाइश.
8: Hello, फरमाइश.
9: Hello, फरमाइश के श्रोताओं को नूतन मिश्रा का नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को आकाशवाणी गोरखपुर की तरफ से ढेर सारी बधाई और अनंत शुभकामनाएं। कहा गया है सर्व योगेन साध्ये, यानी योग से सब कुछ संभव है। तो आज हम आपसे योग पर करेंगे कुछ बातें और आपके फरमाइश पर गीतों को तो सुनवाएंगे ही। तो आइए देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं।
10: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
9: इंद्रभान सिंह जी, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
10: ठीक हूँ मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ मौसम पानी गिरा है मैडम और बादल किया है और खूब उमस गर्मी लग रहा है मैडम। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब खूब पानी जम के गिरने वाला है और खूब हवा चल रहा है मैडम। वही जंगली नर्सरी के बीच में हूँ और यहाँ पर हवा जब भी चल रहा है तो अच्छा लगता है, बंद हो जाता है तो उमस गर्मी लगता है, लेकिन मौसम बना हुआ है, पानी जम के गिरेगा।
9: जी इंद्रभान जी, ये तो मौसम का तकाजा है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप योग करते हैं?
10: जी मैडम, मैं योग करता हूँ और मैं सुबह शाम खूब पैदल चलता हूँ मैडम, और पैर आगे पीछे जैसे स्कूल में करता था वो भी उसी टाइप को भी करता हूँ।
9: जी जी जी, इंद्रभान जी कहने का मतलब ये है कि आप योग करें और अपने परिवार के लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। और संगीत भी आप ध्यान दें तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत ही सुरीला माध्यम है। आज आप बताएं कि आपको कौन सा गीत मैं सुनवाऊं।
10: फिल्म का नाम है मेरा छाया और गीत के बोले नैनों में बदरा छाए, गायिका लता मंगेशकर।
9: जी धन्यवाद इंद्रभान जी, अपनी पसंद पर लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
0: हम बस्ती से विनोद पांडे बोल रहे हैं मैडम जी, आपको नमस्ते।
1: जी विनोद पांडे जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है, गर्मी का माहौल बढ़ रहा है मैडम जी, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और इसलिए कहीं आना जाना होता है तो बहुत विचार के सोच विचार के आना पड़ता है। सारी कचहरी में आए हुए हैं, देखिए हमका डर लग जाए तो कोई फरमाइश दे दें आपको।
1: जी जी विनोद जी, आपको अक्सर कचहरी आना जाना होता है और धूप का कहर इस समय बहुत अपने शबाब पे है, तो आप धूप से बच के रहिए। जी
0: आए तो आदेश हो जाएगी, इसलिए जो हमको आना पड़ता है कभी महीने में एक दाए दो है।
1: जी जी वो तो जरूरी है, काम तो करना ही है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बचा करके करें तो काम भी हो जाएगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे।
0: तो उसके बाद जो है पानी वानी रख के पीछे उसका चलते हैं, बहुत बचार के और बहुत ही सोच समझ के और हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से आते जाते, कोई परेशानी ना बढ़े।
1: जी बिल्कुल अच्छा करते हैं विनोद जी, पानी साथ लेकर के चलिए और गमछा या तौलिया वगैरह से अपना सर ढक कर के रहिए। आपको आज योग दिवस है, योग आप करते हैं या नहीं?
0: योगा वाला क्या? अच्छा जो व्यायाम किया जाता है मैडम?
1: हाँ हाँ, व्यायाम आप करते हैं
0: मैडम जी? पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि अब जो है शरीर दर्द करते, इसलिए जो है दवा खाना पड़ता है, रोज दवा लेते हैं खाने लिए, शरीर दर्द रहते मैडम क्या करें, मजबूरी है। हम हमेशा यही ये करते थे, लंबी दौड़ दौड़ते थे और हर एक जो है कुश्ती उसकी कबड्डी उबड्डी ज्यादा हम लोग खेलते थे जो प्राइमरी में पढ़ रहे थे।
1: जी जी नहीं विनोद जी, देखिए अगर आप दवा खाते हैं फिर भी आप हल्का फुल्का योग जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे तो आपको दवा तो फायदा करेगी ही करेगी, आप और भी स्वस्थ महसूस करेंगे खुद को।
0: मैडम जी बस हमारा यही है कि सुबह जो हमारा 4:30 बजे आप खुलता तो 1 किलोमीटर इधर से उधर सुबह टाइम जो दौड़ धूप आकर उस बाद तब ही घर पे आते हैं, तब मैदान लैट्रीन वैट्रीन जाते हैं, पहले टहलते हैं कम से कम 1 किलोमीटर दूरी।
1: जी अच्छा करते हैं आप। आपको आज कौन सा गीत हम सुनवाएं?
0: आप हमको सुनवा दीजिए मैडम जी, बाबुल की दुआएं लेती जा तुमको।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम
1: जी इलियास जी कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया है मैम। हमारे यहाँ चावल की दुकान है, अपनी दुकान पर बैठे हैं और फोन लगा रहे थे। फोन लग गया, बेहद खुशी हो रही है मैम।
1: जी जी आज योग दिवस है तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों से?
0: बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए
1: जी, और अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा योग भी करना चाहिए, उसको अपने जीवनचर्या में शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम।
1: हाँ इलियास जी आज कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
0: मैम आज आप अपनी पसंद का गीत सुनवा देना मैम।

0: हेलो
1: जी, हेलो, फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
0: नंदलाल निषाद नौसर गुड़ियाना टोला से।
1: नंदलाल निषाद जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं दीदी, आप बताओ आप कैसे हो?
1: हम लोग भी अच्छे हैं।
0: पहले नंबर बताओ, कौन दीदी बोल रही हो आप?
1: नूतन मिश्रा बोल रही हूँ।
0: नूतन मिश्रा दीदी
1: जी,
0: आज गाना सुनाइएगा गिरफ्तार फिल्म का।
1: गिरफ्तार?
0: आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ऐसा ही गाना है इसमें।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ एक बात और कहनी दीदी।
1: हाँ बिल्कुल कहें।
0: ये जो प्लास्टिक वाले जो सब्जियां लेके आते हैं, ये बंद ही कर दे तो बहुत अच्छा, लोग झोला लेके जाना नहीं चाहते।
1: जी नंदलाल जी, प्लास्टिक बहुत हानिकारक है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए।
0: और उससे परेशान हम ही लोग रहते हैं, और कोई नहीं रहता, हम ही लोग रहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार के
0: लोगों, नहीं हम टोकने के लिए टोकते हैं लोगों, नहीं लोग समझते नहीं, लोग बहुत से लोग झाड़ू लगाते हैं, हम जाते हैं कभी कभार घूमने, खाली है ना मुझे।
1: जी नंदलाल जी,
0: पेड़ माँ के नाम लगाया करे भाई, पेड़ बहुत जरूरी, हमने लगवाया है पेड़, पानी में डालते रहते हैं उसके अंदर, लेकिन इतना तगड़ा धूप है, जमीन सूख जा रही है, गर्मी से बेहाल रहते लोग ये सब।
1: हाँ, निश्चित रूप से।
0: पहले समय में जरा सा मानसून पड़ पानी बरस रहा, इतना ही करते थे लोग, पानी बरसने लगता था। अब है कि लोग कहते हैं पानी बरस जा, पानी बरस कहाँ से बरसेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल नंदलाल जी, आपकी जो सोच है वो जन कल्याण के लिए बड़ी उत्तम है, और आप इसे अपने अंदर बनाए रखें। पर्यावरण के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, साफ सफाई स्वच्छता के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज योग के लिए भी आप थोड़ा लोगों को जागरूक करें।
0: हम योग करते रहते हैं
1: जी। चलिए,
0: कुछ समस्याएं आ गई पेट के अंदर।
1: आपकी पसंद पर ये गीत गिरफ्तार फिल्म से।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
1: मैम आपका नाम?
0: नूतन मिश्रा।
1: मैम आपके साथ मैं सेकंड टाइम बात कर रही हूँ इतने दिन के बाद।
0: हाँ, कौन बोल रही हैं?
1: इसका रिकॉर्डिंग कल मैं 10 बजे सुनूंगी ना?
0: हाँ जी, कल 10:05 से आप सुन सकते हैं।
1: ठीक है मैम, मैं अभी शायरी बोलूँ या मेरा नाम?
0: पहले आप अपना नाम बताएं।
1: आप नूतन मिश्रा हैं और हम प्रियदर्शनी मिश्रा हैं।
0: जी जी जी जी, प्रियदर्शनी जी, कैसी हैं आप?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरा बर्थडे भी पिछले हफ्ते संडे गया और आपके साथ बात हुई, बट थोड़ा उदास हूँ। ये सब
0: हर दिन हम, हैप्पी बर्थडे।
1: थैंक यू जी, ये हर दिन हम सुन पा रहे थे लेकिन ये जब एक हफ्ते में आ गया ना, अभी थोड़ा मन थोड़ा उदास है, खटास हो गया है। थोड़ा इसको बढ़ाइए ना प्रोग्राम, प्लीज। जैसे दे रहा है उसे भी दीजिए ना प्लीज।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात हम अपने अनुभाग तक जरूर पहुँचाएंगे कि इस कार्यक्रम को पहले की तरह हर रोज हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं।
1: थैंक यू जी, आपने हमारी बात रखा, ये बड़ी बात है। और आज फादर्स डे है तो मेरे पापा को हैप्पी फादर्स डे। वी मेरे भैया और मेरी तरफ से वी ऑल लव हिम, वी लव हिम वेरी मच, ही इज बेस्ट फॉर अस। एंड ऐसे ही पापा सबको मिले। एंड आज भी इंटरनेशनल योगा डे है और योगा डे के लिए मैं बोलूंगी, जैसे टाइम टेबल हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं, भूल नहीं सकते, वैसे ही योगा अपने जिंदगी में हिस्सा, एक रूटीन की तरफ मैंने पार्ट लेना चाहिए जिंदगी में, एक योगा को ऐड करना चाहिए। और आज इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी है, ये वन काइंड ऑफ थेरेपी। और हम अगर स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो गोरखपुर चैनल सुनिए, नूतन जी के साथ बात कीजिए और म्यूजिक सुनिए।
0: क्या बात है प्रियदर्शनी जी।
1: अभी मैं शायरी बोलूं, मुझे लगता है आप बोलेंगे आप आ रही हूँ या मैं बोलती जा रही हूँ खामोश से।
0: मुझे अच्छा लगता है हमारे श्रोता हमसे जुड़ के इतनी अच्छी और ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रियदर्शनी जी आप जरूर शायरी बोले
1: जी। आंधिया गम की चलेगी तो मैं संभल जाऊंगी, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगी। मुझे सुली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझे सुली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझसे मेरा संगीत छीन लो तो मैं मर जाऊंगी।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और वाकई संगीत अगर जीवन में न रहे तो एक खालीपन, एक सुनापन सा
1: अधूरा। और आपको थैंक यू, आपको थैंक यू, आपको थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया, इसलिए फादर्स डे, संगीत डे और इंटरनेशनल योगा डे पे मैं कुछ बोल पाई अपने लिसनर को। थैंक यू जी।
0: कौन सा गीत आज सुनवाऊं
1: मैम आपको? मैं एक ही गाना बोलूंगी, ये टोनी कक्कड़ का होगा सिंगल या नेहा कक्कड़ का होगा सिंगल या दोनों का एक ही साथ में होगा, कोई भी गाना बजा।
0: नेहा कक्कड़ की आवाज में कोई सा भी गीत आप सुनना चाहते हैं? ऐसे ही हंसती रहिए, खिलखिलाती रहिए और अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
3: नमस्कार जी।
2: मैम, मैं नोएडा से चिरंजीव बात कर रहा हूँ।
3: नोएडा से चिरंजीव
2: जी, मुझे का जिंदा सॉन्ग रिक्वेस्ट है कि अगर आप।
3: चिरंजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
2: थैंक यू सो मच।
3: आप योग करते हैं?
2: जी जी, मैं योग करता हूँ।
3: बिल्कुल, योग करिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सब लोगों को योग के लिए प्रेरित करिए।
2: जी मैम, शुक्रिया मैम, मैं करता हूँ प्रेरित।
3: कॉल करने के लिए धन्यवाद और अपनी फरमाइश पर लीजिए, सुनिए ये गीत।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: जी हेलो,
1: हेलो,
0: फरमाइश में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं?
2: मैं निहारिका बोल रही हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: निहारिका?
3: बात
2: हाँ जी,
0: अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। निहारिका आप कैसी हैं? निहारिका
2: मैं ठीक हूँ मैम, मेरे हाथ सब एक्साइटेड हो गए, हमारी कॉल लग गई, हम बहुत दिन से ट्राई, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे।
0: जी आपके हस्बैंड भी बात करना चाह रहे हैं, आवाज आ रही है।
2: हम लोग हमारे परिवार में सब लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं मुझे 1 2 4 4 सॉन्ग सुनना है, वो आई थिंक संतोष मूवी का है।
0: जी
2: 1 2 4 4
0: उषा उत्थुप की आवाज में। और निहारिका ये बताएं, आप योगा करती हैं?
2: हाँ मैम, योगा तो करती हूँ, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। हाँ ये सब
0: तो आज आपने किया?
2: आज तो देखिए, आज तो वीकेंड था, तो आज थोड़ा आराम से सो लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ तो सब जॉब वाले हैं, तो सबको आज का दिन थोड़ा मिलता है सोने के लिए। बट हाँ, हम लोग हमेशा करते हैं।
0: हाँ,
2: तो हमारे घर में सब फिटनेस को लेके बहुत सीरियस है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, योग करें और रोज करें नियमित रूप से।
2: तो
0: जी, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक दिन, जिस दिन योग दिवस हो उसी दिन हम योग करें, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं होता।
2: मेडिसिन से बेहतर है हम योग करें, उसके बाद होता है डॉक्टर के पास जाना, योगा से ही हमारे बहुत सारी बीमारियों का इलाज है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, योग बहुत सारी बीमारियों का इलाज है योग में, और संगीत में भी कुछ बीमारियों का इलाज है। तो आज आपको कौन
2: जी,
0: सा गीत
2: वो
0: सुना
2: तो
0: है?
2: हमारी जान है
0: जी,
2: हमारी सुबह की शुरुआत और हमारे दिन का एंड संगीत से ही होता है।
0: बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपको मैं सुनवा रही हूँ उषा उत्थुप की आवाज में ये गीत।
2: जी मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी
1: जी, मैं लक्ष्मी त्रिपाठी गोंडा से बोल रही हूँ।
0: जी लक्ष्मी त्रिपाठी जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
0: हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम जी। मैं एक फरमाइश करना चाहती हूँ रामलला के लिए कि गाना आप मेरी फरमाइश पूरी करिए तो मुझे बहुत खुशी होगी।
0: ज़रूर लक्ष्मी जी, हम आपकी फरमाइश को सुनवाने के ही लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ज़रूर सुनवाएंगे।
1: मैम, मुझे गाना सुनना है, राम करे ऐसा हो जाए।
0: जी मिलन फिल्म का सॉन्ग है ये।
1: जी जी जी बिल्कुल।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: इसी के साथ साथियों, आज का हेलो फरमाइश यही संपन्न होता है। आप सबको एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के हमारे टेक्निकल सहयोगी थे अभय यादव और नम्रता श्रीवास्तव, और प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। अब नूतन मिश्रा को दें इजाजत। नमस्कार।
2: 0551220538 6 हेलो
3: हेलो
4: हेलो
5: हेलो
2: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश।
7: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है।

0: इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि INS दुनागिरि, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
7: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
9: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
8: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
9: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं जय नारायण शर्मा व साथी।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जय नारायण शर्मा व साथी की गाए कुछ लोकगीत।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

रघु भर के देखी के सखियां सब हर सैली सजल नयन भरी हाथ जोरी के प्रभु से विनती कैली। ओ बनिके पहुनवा अइला बनिके पहुनवा अइला हमरे भवनवा ए पहुना।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
2: बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA डी फार्मा बी फार्मा और एम फार्मा में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
1: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
2: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
3: लोक रंग में आज के कलाकार थे जय नारायण शर्मा व साथी। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: ये गीत था फिल्म कभी अलविदा ना कहना से, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। संगीत था शंकर एहसान लॉय का और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

ये गीत है फिल्म गैंगस्टर से, जिसे गाया है केके ने, संगीत है प्रीतम चक्रवर्ती का और गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी।

0: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: आइए सुनते हैं ये गीत, फिल्म है क्यों हो गया ना। इसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। संगीत है शंकर एहसान लॉय का और गीतकार हैं जावेद

0: इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 साल के उपलक्ष्य में एक विशेष भोजपुरी कार्यक्रम।
1: खास कार्यक्रम में आज उरौरा सभी सुनबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा भइल केंद्र सरकार के 12 साल के लेके भोजपुरी में एगो खास रिपोर्ट प्रस्तुत करता हुए आकाशवाणी का समाचार संपादक प्रेम चंद्र गुप्ता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार बीतल 9 जून के 12 साल पूरा कई लिहलस। इस मौका पर श्री मोदी कहले कि उनकर सरकार बीतल 12 साल में विश्वास विकास और जन कल्याण के समर्पित रहल हो। वहाँ के कहली कि ई उनके अथक कोशिश के नतीजा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके डिजिटल क्रांति ले देश के दुनिया भर में एगो नया पहचान मिलल हो। इससे पहले प्रधानमंत्री बीतल 8 जून के गरीबन के हित में सरकार का 12 साल का विकास यात्रा के रेखांकित कैले। श्री मोदी कहले कि यह दौरान देश कई गो बदलावन के साक्षी बनल आ गरीब कल्याण आ वंचित वर्ग यह बदलाव के केंद्र बिंदु में रहले। प्रधानमंत्री कहले कि गरीब कल्याण यात्रा मनई के सशक्तिकरण आ विकसित भारत का सपना साकार कैले का सामूहिक अभियान बनी गई बा।
3: गरीब और वंचित से उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,

0: किसान आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा भइले पर गृह मंत्री अमित शाह आ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतही कई गो जानल मानल लोग बधाई दिले।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून के भारत का सबसे लम्हर समय ले सेवा करे वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए ले। यह मौका पर नई दिल्ली में भइल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के बैठकी में प्रधानमंत्री कहले कि देश का 140 करोड़ नागरिकन का आकांक्षा जरूर पूरा हुई। वहां के कहले कि पहली बार देश का जनता देखले हो कि जब कौनो सरकार सही इरादन से चलावल जाला तब विकासो तेजी से होला।
0: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: NDA के बैठकी में श्री मोदी कहले कि देश लगातार विकास का नया कीर्तिमान बना रहा हो।
0: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडलों 10 जून के एगो प्रस्ताव पारित कर के प्रधानमंत्री के बधाई दिहलस। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल का बैठकी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले कि मंत्रिमंडल यह ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री के बधाई देवे बदे 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित कैलस।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के बधाई देत एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि भारतीय लोकतंत्र का ई अभूतपूर्व कीर्तिमान सज्जो देशवासियन का भरोसा, स्नेह, आशीर्वाद का सामूहिक अभिव्यक्ति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत का सबसे लम्हर समय ले सेवा करे वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बनले पर प्रदेश भर में कई गो कार्यक्रम आयोजित कैल जा रहल बा। भारतीय जनता पार्टी 10 जून के प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र के मंदिरन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन कैलस। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ये मौका पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना कैले। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसियों में 10 जून के कई गो कार्यक्रम आयोजित कैल गयी।
5: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र का NDA सरकार का 12 साल पूरा भइले के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में 11 जून के आयोजित चौपाल में जनता के

0: समस्या सुन लें। ए मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश विकास का नया ऊंचाई छू रहा है।
1: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य हैं। ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: केंद्र सरकार में 12 साल पूरा भइले के बाद बीतल 12 जून के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले कि सरकार पिछला 12 साल में महिला लोगिन के राष्ट्र निर्माण में उनकर पुरहर क्षमता के एहसास करावे बदे अनुकूल वातावरण तैयार कैले हवे। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहले कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेके शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस ले महिला लोगी अलगी अलगी क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही हई।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्र में एनडीए सरकार का 12 साल के उपलब्धियों के लेके प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीतल 12 जून के लखनऊ में मीडिया के साथ बातचीत कैले। ये मौका पर वहां के कहली कि पिछला 12 बरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सरकार गरीबन, किसानन, महिलन और नौजवानन के हित में कई गो प्रभावी कदम उठौले हमें। श्री योगी कहले कि हम वह नया भारत का नागरिक हई जवन अपने विकास यात्रा का तमाम चुनौतियों का सामना करत आगे बढ़ी रहल बा।
3: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करत कहले कि पिछला 12 बरिस में उत्तर प्रदेश आस्था आर्थिकी का एगो अद्भुत संगम बनल हो। वहां के कहली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी अगुवाई के नाते इस संभव हो पावल हो।
4: खास कार्यक्रम में आज रोरा सभी सुन ली नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा भइल केंद्र सरकार के 12 साल के लेके भोजपुरी में एगो खास रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहले आकाशवाणी का समाचार संपादक प्रेम चंद्र गुप्ता।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच, जिसे लेकर आ रही हैं रंजना मिश्रा।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: तो बच्चों, हम आ गए हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेके, बाल मंच आपके ही संग, जिसमें होंगी बहुत सारी मस्ती, मजेदार बातें, कविता और कहानियाँ। चलिए अब हम पूछते हैं पहेली, आप सबसे तैयार हैं आप सब?
1: हाँ दीदी।
0: तो चलिए बताइए, मैं जलती हूँ तो उजाला करती, खाली कमरे में क्यों बेकार चलती, मुझे बंद करोगे तो होगी बचत, बताओ मैं कौन?
2: मैं हूँ बिजली।
0: सही आंसर। तो बच्चों, इस पहेली के साथ आप लोग को पता चला कि आज का हमारा विषय क्या है?
1: हाँ दीदी।
0: क्या हो सकता है?
3: ऊर्जा संरक्षण।
0: तो आज हम सब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण पे, ठीक है बच्चों?
1: दीदी।
0: तो भाई, सबसे पहले आप सब अपना अपना नाम तो बताइए।
4: मेरा नाम संस्कार है।
2: मेरा नाम तेजस है।
5: मेरा नाम अभिनव है।
6: मैं कार्तिक हूँ।
0: तो भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे नाम है बच्चों के, और ये बच्चे हैं भी बड़े प्यारे प्यारे। तो बच्चों, आप सब ये बताइए कि आप घर से आप लोग आए हैं तो घर की स्विच लाइट सब ऑफ करके आए हैं?
7: हाँ दीदी।
1: हाँ दीदी।
0: पता है हम ये बात क्यों कर रहे हैं आप लोगों से?
4: बिजली बचाने के लिए।
0: तो भाई, सबसे पहले बताइए कि हमको क्या क्या करना चाहिए
4: बिजली बचाने के लिए। जब भी मैं फोन को चार्ज में लगाता हूँ, तो उसके बाद जब फोन को जब मैं प्लग से फिर वापस निकालता हूँ, तो फिर उसका स्विच भी बंद कर देता हूँ।
0: भाई बहुत जरूरी भी है ऐसा करना। और केवल बिजली बचाने से ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा, हमें और भी बहुत सी चीजें बचानी पड़ती है। पता है क्या क्या? जैसे हमें बिजली के साथ साथ पानी की भी बचत करनी चाहिए, है ना? पानी हम कैसे बचा सकते हैं घर में? अगर हम चाहें कि पानी का बचत करें, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पे क्या होता है ना कि पानी बहुत सीमित मात्रा में हमें मिलता है, मोटर पंप चलाने के लिए भी बिजली चाहिए होती है, इसलिए हमें सोच समझ के पानी की बचत करनी चाहिए। कार्तिक, आप बताइए कि हमको और क्या क्या करना चाहिए?
6: ब्रश करने समय हम लोगों को टैप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार हम लोग टैप खोल देते हैं।
0: भाई बहुत अच्छी बात कार्तिक ने बताई है कि हमें टैप हमेशा बंद करके ब्रश करना चाहिए, और जब भी जरूरत होती है तब हमें टैप को खोलना चाहिए। अभिनव, अब आप बताइए कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए?
5: हमें दिन के टाइम सूरज की रोशनी का उपयोग करना चाहिए, इसके लिए हमें खिड़की को खोल देना चाहिए और सूरज की रोशनी को प्राप्त करना चाहिए, और बल्ब को बंद कर देना चाहिए, इससे बिजली की बचत होगी। और हमें हमेशा LED बल्ब ही यूज करना चाहिए, और हमारे आसपास ही हमारा स्कूल है तो हमें पैदल या साइकिल से ही जाना चाहिए, इससे भी ऊर्जा की बचत होगी।
0: बिल्कुल सही, अगर हमारे घर के आसपास हमारा स्कूल है तो हमें पैदल जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए, ताकि हम पेट्रोल की और डीजल की बचत कर सकें। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, वो जिद करते हैं कि हमें कार से जाना है स्कूल, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अब पैदल जाएंगे स्कूल?
1: हाँ दीदी।
0: और भी हम क्या बचत कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग?
4: हाँ दीदी। दीदी, हम लोग जैसे घर में बोतल भर रहे हैं, और फिर हम लोग उसी को आधा अधूरा छोड़ के चले गए और बोतल भरता रहा, लेकिन थोड़े देर बाद कभी कभी वो ओवरफ्लो होके उसमें से पानी गिरने लगता है, तो उससे भी पानी वेस्ट होता है।
0: बिल्कुल, यहाँ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बोतल भरते समय भी हम एक एक करके बोतल भरें और टैप खुला ना छोड़ें, ठीक है? और क्या क्या बचत कर सकते हैं?
6: हम लोग कागज की बचत कर सकते हैं, हम लोगों को पेपर नहीं फाड़ना चाहिए ज्यादा।
0: पेपर नहीं फाड़ना चाहिए, तो पेपर फाड़ के जहाज कौन कौन बनाता है?
4: दीदी मैं।
0: फाड़ने में मजा आता है?
4: नहीं दीदी।
6: क्योंकि हम लोगों को पेपर की बचत करना चाहिए।
0: और पेपर की बचत हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं ना, कि पेपर में लिखने के बजाय हम उसको मोबाइल फ़ोन में भी स्टोर कर सकते हैं। कोई अगर हम ऐसे लिख रहे हैं या कुछ भी कविता कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ है अगर हमें, तो हम उन सब चीज़ों को लिखें और अपना एक अलग से फाइल बनाएं और उसको हम अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, और इसको हम जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो इन सब के बाद आप ये बताइए कि क्या लेकर आए हैं आप? तो भाई सबसे पहले कौन आ रहा है?
6: विता, मैं लेके आया हूँ। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन उसको चूहे ने खाया, हाथी को भी मार गिराया। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। थैंक यू।
0: बहुत बढ़िया कविता। और भाई कार्तिक के गाल भी जो है ना वो टमाटर जैसे हैं, लाल लाल। अब हम आते हैं तेजस के पास। तो तेजस आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ। हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर धाती, सबसे हिलमिल कर रह रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह अपरंपार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार, चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाएं, सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाए, तत नर्तन को हरदम तैयार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार, चहक चहक कर फुदक फुदक कर मन को मुग्ध बनाए, तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाए, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाए, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार।
0: बहुत बढ़िया। तेजस की इस कविता के बाद कौन आ रहा है? तो अब आ रहे हैं अभिनव।
5: दीदी मैं आज सुनाने वाला हूँ जादुई चिराग और गांव की समझदारी।
0: सुनाइए।
5: बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और हरा भरा गांव था। इस गांव में आनंद नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गांव के सभी लोग बहुत खुश हाल थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी समस्या थी। उनके गांव में बिजली केवल कुछ ही घंटे के लिए आती थी और वह भी बहुत धीमी। लोग अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन आनंद को जंगल में एक प्राचीन और चमकीला दीपक जादुई चिराग मिला। जैसे ही उसने चिराग को साफ किया, उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद मैं ऊर्जा का जिन हूँ, मैं तुम्हारे सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे गांव के लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। आनंद बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने गांव की बिजली की समस्या के बारे में सोचा और जिन से कहा, जिन भाई मुझे अपने गांव में कभी ख़त्म ना होने वाली बिजली चाहिए, ताकि हमारे घर हमेशा रोशन रहें। जिन जोर से हंसा और बोला, तथास्तु, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें असीमित ऊर्जा, बिजली और ईंधन तो दे दूंगा, लेकिन यदि तुम्हारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने इस ऊर्जा की बर्बादी की तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक दिन यह ऊर्जा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आनंद ने जिन की यह शर्त मान ली। इसके बाद गांव में कभी अंधेरा नहीं हुआ। सभी घरों में पंखे, बल्ब और अन्य मशीन दिन रात चलने लगी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद गांव के लोगों की आदतें खराब होने लगीं। वे कमरे में न होने पर भी पंखे और लाइट चालू छोड़ देते थे। दिन के समय ही खिड़कियां बंद करके बल्ब जलाते थे। ईंधन और पानी का भी बहुत दुरुपयोग करने लगे। एक दिन अचानक सारा गांव अंधेरे में डूब गया। सभी मशीनें और बल्ब अचानक बंद हो गए। आनंद घबरा कर जंगल में उसी जादुई चिराग के पास भागा। उसने जिन को बुलाया और पूछा, जिन भाई ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। जिन ने गंभीर होकर कहा, आनंद मैंने ऊर्जा दी थी, लेकिन तुम्हारे गांव वालों ने उसका सम्मान नहीं किया। जब तुम बिना काम के बिजली, पानी और ईंधन बर्बाद करते हो तो प्रकृति उसे वापस खींच लेती है। मैंने अपनी शर्त में कहा था कि बर्बादी का मतलब ऊर्जा का अंत है। आनंद को अपनी गलती समझ में आई। उसने जिन से एक आखिरी मौका मांगा। जिन मान गया। जब गांव की बिजली वापस आ गई तो आनंद ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें जिन के चेतावनी, ऊर्जा बचाना ही ऊर्जा का उत्पादन है। इसके बाद गांव में कभी ऊर्जा की कमी नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया था कि प्रकृति के संसाधनों का समझदारी से उपयोग ही असली बुद्धिमानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजली, ईंधन और पानी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। जब हम एक यूनिट बिजली या पानी बचाते हैं तो न केवल अपना पैसा बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। ऊर्जा की बचत ही एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है।
0: बहुत ही अच्छी कहानी, जोरदार तालियां। तो बच्चों इस कहानी के बाद चलिए हम लोग सुनते हैं गाना, सुना जाए।
1: हाँ दीदी।
0: तो कौन सा गाना सुनना है बच्चों?
1: हम भी अगर बच्चे होते।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
7: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू,

0: बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: तो भाई इस गीत के बाद अब फिर आते हैं आप सबके पास और अब भाई अब कौन आ रहा है अपना पिटारा खोलने। अब हम आते हैं संस्कार के पास। तो संस्कार आप क्या लेकर आए हैं?
3: एक कहानी, छोटी सी समझदारी। एक गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। उसे कमरे से बाहर जाते समय पंखा और लाइट बंद करना भूल जाने की आदत थी। उसके पिता हमेशा उसे समझाते थे कि बिजली बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को बिजली संरक्षण के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर हम थोड़ी थोड़ी बिजली बचाएंगे तो देश की बहुत ऊर्जा बच सकती है। राहुल ने उसी दिन से अपनी आदत बदल ली। वह घर में सभी को याद दिलाने लगा कि ज़रूरत न होने पर लाइट पंखे और कुछ समय बाद पूरे गांव के लोगों ने बिजली बचा कुछ समय बाद पूरे गांव के लोगों ने बिजली बचाने की आदत अपना ली। बिजली की बचत हुई और सभी ने समझा कि छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऊर्जा बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज की बचत ही कल का उज्जवल जीवन बनाती है।
2: बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी सीख। जोरदार तालियां। तो भाई अब आ रहे हैं तेजस, क्या सुनाने वाले हैं?
4: मैं ऊर्जा संरक्षण पे एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल को तुम खुशियों से सजाओ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, सीमित है पुराने संसाधन, इनको कम उपयोग में लाओ। संपन्न भारत हेतु तुम नव ऊर्जा को अपनाओ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, पेट्रोल डीजल सब है सीमित, यू मोटर न दौड़ाओ। प्रदूषण मुक्त भारत तुम नव पीढ़ी को दे जाओ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ, बिजली का करके दुरुपयोग, यू बिल ही न भरे ही जाओ। ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करो तुम, कर्तव्य अपना अपना निभाओ। ऊर्जा बचाओ, ऊर्जा बचाओ।
2: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई तेजस की इस कविता के बाद अब हम आते हैं अभिनव के पास।
5: दीदी मैं अभी एक कविता लाया हूँ। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ कांटे हम चुन चुन दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत के ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते हंसाते हैं, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं।
2: बहुत बढ़िया।
3: मैं भी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ बिजली पर। बिजली सबको चाहिए सुबह दोपहर शाम, बिना बिजली होते नहीं अब बहुतेरे काम। ऊर्जा सभी बचाइए, बालक युवा वृद्ध, सुखमय सबका कल रहे, इच्छित होवे सिद्ध। पंखे एसी हीटर सब चलते हैं अविराम, इनको तभी चलाइए जब हो इनका काम। कोयला व यूरेनियम शिला तेल की खान, सभी पुनः अप्राप्य है हर पल रखिए ध्यान। कितने वन निर्वन हुए उजड़े कितने गांव, जल विद्युत का देश में हुआ तभी फैलाव। धरती पर है जल रही प्रदूषण की आग, सब मिलकर कुछ कीजिए बचे सुनहरा बाग। ऊर्जा के प्रति रखिए बहुमूल्यता बोध, इसके संरक्षण के लिए करते रहिए शोध। ईंधन खपत घटा सके खींचे नहीं लकीर, हम कहलाएंगे तभी नव भारत के वीर।
2: वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई इसमें तो ऊर्जा संरक्षण के सारे जो हम उपाय करते हैं ना, वो सारे उपाय इसमें बताए गए हैं और बहुत सारे संदेश दिए गए हैं जिसका हमें बहुत ही ईमानदारी से पालन करना चाहिए, तभी हम आगे भविष्य में ऊर्जा बचाए रख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है बच्चों?
6: ठीक है दीदी। हाँ दीदी।
2: आप लोग करेंगे ना आपसे?
6: हाँ दीदी।
2: तो भाई हम सब के बीच जो सबसे छोटे से मेंबर है ना कार्तिक, वो आ रहे हैं, उनका मन हो रहा है कुछ बताने का, कुछ सुनाने का। तो कार्तिक आप क्या सुना रहे हैं भाई?
7: मैं एक कविता सुना रहा हूँ।
2: क्या है भाई सुनाइए।
7: हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिला के कहाँ चले, मेरे घर आ जाओ ना, खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर।
2: कार्तिक के लिए जोरदार तालियां। कार्तिक बहुत मुस्कुरा रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं, कुछ सुनने का मन कर रहा है ना कार्तिक?
7: हाँ दीदी।
2: क्या सुनना है आपको?
7: मुझे बम बम बोले वाला सॉन्ग सुनना है। बम बम बोले मस्ती में डोले।
2: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
8: देखो देखो क्या वो पेड़ है,

0: तो भाई इस गीत के बाद अब फिर आते हैं आप सबके पास संस्कार। आप बताइए कि कैसे बचत करनी चाहिए पानी की हमें।
1: दीदी, हमें बारिश के पानी को एक बाल्टी में स्टोर करके उस पानी को पौधों में डाल देना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात।
1: और वो जो बारिश का पानी आता है, जिसको हमने बाल्टी में स्टोर किया रहता है, हम उसको गाड़ी धुलने में भी यूज़ कर सकते हैं।
0: तो बच्चों, इस तरह से हम अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को ला करके ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों,
2: ठीक है दीदी।
0: तो हम सब मिलके ऊर्जा बचाएंगे ना।
2: हाँ दीदी।

0: हमें फ्रिज का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना
0: और हमें फोन, टीवी और कंप्यूटर कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसको चार्ज करने वाले बिजली की बचत।
1: बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया संस्कार ने बताया भाई, जोरदार तालियां। तो बच्चों आइए अब हम थोड़ा हंसते हैं, हंसाते हैं संस्कार के चुटकुलों के साथ।
0: बेटा बोला, पापा ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? पापा, बेटा जब तुम कमरे से बाहर निकलो और बिना कहे लाइट बंद कर दो तो उसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, और जब मैं करूं तो इसे कंजूसी कहते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार क्या तुम साइकिल चलाते हो? तो दूसरा दोस्त बोला, नहीं भाई, मैं तो बस अपनी बेकार की आदतों को ही रिसाइकल करता रहता हूँ।
1: बच्चों अब हम आते हैं आप सबका दिमाग का टेस्ट लेने पहेलियों के साथ। तो सबसे पहले भाई पहेली लेके कौन आ रहा है? संस्कार।
0: वो कौन सी चीज है जिसके पास चार पैर होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकती है?
1: तेजस बताइए।
2: टेबल।
0: सही जवाब।
1: तो भाई अभी तो मेरी पहेलियां जो हैं वो बची ही रह गई हैं, तो चलिए फटाफट हम उसको पूछ लेते हैं आप लोगों से। तैयार हैं आप लोग?
3: हाँ दीदी।
1: बिना पैरों के दौड़ लगाऊं, घर घर ठंडी हवा पहुंचाऊं, जरूरत ना हो तो मुझे रोक दो, ऊर्जा बचाने में हाथ बटाऊं।
4: पंखा।
5: कूलर।
1: सही आंसर। अब हम आते हैं दूसरी पहेली पर। अब ये बताइए आप सब कि जितनी बचाओगे उतनी बढ़ेगी, भविष्य की राह भी आसान करेगी, प्रकृति का अनमोल उपहार कहलाऊं, बताओ मैं क्या हूँ? बताओ बताओ, दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ। कौन बताने वाला है?
6: ऊर्जा।
0: ऊर्जा।
1: सही आंसर। और बच्चों अब बताइए आप सब कि दिन में मुफ्त का उजियारा लाता, दुनिया भर को रोशनी पहुंचाता, इसका उपयोग जो समझदारी से करे ऊर्जा संरक्षण में आगे बढ़े।
0: सूरज।
1: सही आंसर। बच्चों हम लोगों ने इतनी सारी ऊर्जा संरक्षण की बातें की, आप सबको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
5: नहीं दीदी, नहीं मालूम है हम लोग।
1: तो बच्चों हम बता दें आप सबको कि भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को ऊर्जा की बचत, ऊर्जा के महत्व और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में जागरूक करना। बच्चों आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
1: तो बच्चों इन सब बातों के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। अब रंजना को दीजिए इजाजत। तो चलते चलते हम सब मिलकर बोलते हैं
3: जय हिंद।
1: आज के बाल मंच कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।
7: आप सुन रहे थे बालमंच, जिसे लेकर आई थी रंजना मिश्रा। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने।

0: है फिल्म बॉर्डर से।
1: ये गीत है फिल्म बॉर्डर से, जिसे गाए हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने। संगीत है अनु मलिक का और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

ये गीत है फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया अभिजीत भट्टाचार्य ने। संगीत है जतिन ललित का और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: अभी आप जो गीत सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे गाया है कुमार सानू ने। संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर।

ये गीत है फिल्म डुप्लीकेट से, जिसे गाया है कुमार सानू ने। अनु मलिक का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर।

0: इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही दिन देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं विनीता सिंह।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी वनिता सिंह। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। योगा का 12वां आलमी दिन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है उम्र बढ़ने के असरात का मुकाबला करने के लिए योगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योगा डे की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मरकजी तकरीब आज मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के रेड रोड पर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में योगा प्रैक्टिस की क्यादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अहम जरिया है।
3: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया बताया। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बैनुल अक्वामी योगा दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज खसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असेंबली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और तमाम रियासती वज़रा और इंतजामी अहदेदारों ने मुख्तलिफ अज़ला में मुनक़िद योगा सेशन में हिस्सा लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के फोर्ट ग्राउंड में योगा सेशन की क़यादत की। योगा की मश्क करके सेहतमंद रहने का पैगाम देते हुए वजीर आला ने रियासत के लोगों को बैनुल अक़वामी योगा दिन पर मुबारकबाद दी।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
2: नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के त्रिवेणी में संगम नोज में शिरकत की, जबकि ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के दी रेजिडेंसी पार्क में शिरकत की। इसी तरह फरुखाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, अयोध्या, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कुशीनगर, चंदौली, मऊ समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती हुकूमत के वज्रा और अवामी नुमाइंदों ने योगा डे के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। योगा डे के मौके पर स्कूलों में ग्रुप योगा मशकें और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जहां तलबा को योगा के जिस्मानी और रूहानी फवायद से आगाह किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ दो रोजा दौरे पर महोबा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महोबा को 697 करोड़ रुपए के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। कबल अज़ वजीर आला गोरखपुर गिरी पहाड़ के दामन में वाक़ सिद्ध बाबा धाम पहुंचे, जो गुरु गोरखनाथ की तपस्या की जगह है और वहां पूजा की। वजीर आला शहर के मोदी मैदान में मुनक़िद जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। इसके बाद श्री योगी महोबा से हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के लिए रवाना होंगे, जहां वजीर आला 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 221 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें ललितपुर में 1766 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड तरक्की का नमूना बन रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हर घर तक नल स्कीम को नाफिज किया जा रहा है, पीने का साफ पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क भर और बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों में 22 लाख 79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज में दाखिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे बंद होगा। तुलबा को एक नया एडमिट कार्ड और एक दुरुस्त तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड लाना होगा। 3 मई के इम्तिहान के एडमिट कार्ड आज दुरुस्त नहीं होंगे। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी के लिए दोबारा इम्तिहान आज मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून ममालिक के 14 शहरों में मुनक़िद हो रहा है। मेडिकल दाखिला इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक मुनक़िद होगा। इस बार उम्मीदवारों को मजीद 15 मिनट का वक्त दिया गया है। रियासत भर के 59 अजला में नीट का दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन खसूसी गैर महफूज ट्रेनें चला रहा है। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत।
5: बहनों स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपना प्यारा कार्यक्रम नारी जगत में। और मैं हूं अनीता, आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आई हूं, आपसे जानकारियां और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो बहनों आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज संपूर्ण देश, क्या पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और क्या पूरा विश्व अब स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सतर्क भी हो गया है बहनों। इसलिए अब हर साल 21 जून को एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दिया और तब से साल 2015 से हमेशा योग दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग से होने वाले लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना। बहुत सारी बीमारियां योग प्राणायाम ध्यान करने से दूर होता है बहनों। और आज की जीवन शैली में अनेकों चुनौतियां और बीमारियां भी हैं, योग के द्वारा दूर करके इनको स्वस्थ निरोग जीवन शैली अपनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो बहनों योग तो वैसे भी भारत की प्राचीन विरासत है जिसका लक्ष्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। 2026 की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है और इसमें सक्रिय, संतुलित और निरोगी जीवन जीने के महत्व पर केंद्रित करता है ये। तो बहनों कैसे गीतों के माध्यम से योग सीखते हैं और इस गीत में बहुत प्यारे अच्छे तरीकों से योग के तरीके को अपनाया गया है और ढेर मोहब्बत के साथ जो है इस गीत को सुने और योग सीखें।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर, कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

बहनों, योग करना तो सभी के लिए आवश्यक है, हर आयु के लिए करना जरूरी होता है, और महिलाओं के लिए तो योग प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह स्वस्थ रहेंगी तभी तो घर परिवार बच्चे सभी का ध्यान दे सकेंगी। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान मन को शांत रखने में भी मदद करता है। और बहनों देखिए, आजकल की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, और ऐसी व्यस्तता में भी आप 1 घंटे का समय अपने लिए जरूर निकालें। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन उपाय भी है, और यह PCOS, पीठ दर्द, पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी और कार्यस्थल के तनाव जैसी समस्याओं को संतुलित करने के लिए, हार्मोन्स को ठीक करने के लिए और शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए योग बेहद कारगर होता है। तो बहनों, जो भी समस्याएं हैं आप उनके लिए आप योग करें तो उसमें काफ़ी मतलब आपको आराम मिलेगा। और जैसे PCOS महिलाओं में एक हार्मोनल असंतुलन और होता है, इसमें वजन बढ़ता है और ये अनियमित पीरियड की समस्या भी होती है। योग करने से अंडाशय उत्तेजित होता है और पेल्विक क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाता है। इसके लिए आपको तितली आसन, भुजंगासन, धनुरासन, जो ओवेरियन फंक्शन को सुधारने और प्रजनन क्षमता को इससे अच्छी होती है, और इन आसनों को करने से PCOD की समस्या काफ़ी आराम मिलती है। बैक पेन में भी आपको लंबी सिटिंग करने से जो शारीरिक परेशानी हो जाती है, कमर में दर्द होता है, तो इसके लिए भी आसन होता है। और आप इसके लिए सेतुबंध सर्वांगासन, और जिससे रीढ़ की हड्डी को मजबूती करता है और पीठ के निचले हिस्सों को दर्द में कम करता है। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए चक्रवाकासन योग होता है, और इससे आप तनाव मुक्त होती हैं और काफ़ी हड्डियों को यह काफ़ी आराम देता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी में भी यह आसन मांसपेशियों को टोन और प्रसव के बाद दर्द को दूर करने में सहायक होता है। जैसे वालासन, मार्जारासन, ये आसन काफ़ी राहत देते हैं। और बहनों जो देखिए, आप ऑफिस अगर वर्किंग वुमेन हैं, ऑफिस जाती हैं, तो आपको काफ़ी मानसिक भी परेशानी होती होगी। इसके लिए डेस्क पर या घर पर जाने के बाद किए जाने वाले आसन जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या तंत्रिका तंत्र को साफ शांत करता है और ध्यान भी केंद्रित करता है बहनों। तो बहनों, महिलाओं के लिए, और इसके लिए देखिए, सब योग करने के बाद आप एक और मुद्रा में अच्छी तरह से, शवासन की मुद्रा होती है, उसमें आप एकदम शांत और शांत होकर के लेट जाइए। यह मानसिक और शारीरिक थकान को मिटाने का बहुत अच्छा आसन है, और मतलब लास्ट में ये करते हैं सारे आसनों।

भाई बहनों, इस मौसम के क्या कहने। कभी देखिए तपती गर्मी, धूप हो रही है तो कभी धूप छांव हो रही है तो कभी बादलों में ढलती हुई धूप छुपती। अगर मैं आ रही थी तो मौसम एकदम बदली बदली सा हो गया, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छा मौसम हो गया और इसमें प्यारा सा गीत आपको पसंद आया होगा। और बहनों देखिए, हम योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो योग करना तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप समय कम है तो अपने लिए सिर्फ 15 मिनट का योग करें, और आइए देखते हैं कैसे 15 मिनट में योग करते हैं। योग रूटीन से करने से ऊर्जा बढ़ाने और तनाव कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। इसमें देखिए, पहले सूर्य नमस्कार, पहले आप सूक्ष्म योग करिए और धीरे धीरे हल्के हल्के सूक्ष्म योग करिए। इसके बाद आप जो है कठिन योग कर सकती हैं। इसमें पहले पद्मासन में बैठिए, सूर्य नमस्कार करिए, और उसके बाद आप जो है तड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, बालासन और लास्ट में शवासन प्रमुख है। और आप घर पर आसानी से बिना किसी उपकरण के भी योग कर सकती हैं। तो तड़ासन में जैसे कि आप सीधे खड़े हों या शरीर को खींचने और संतुलन बनाने के लिए करते हैं। सुखासन, पद्मासन, पालथी मार कर बैठें और अपनी रीढ़ सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें। इसी तरह से बालासन योग होता है, घुटनों के बल इसमें बैठ करके हिप्स को एड़ियों पर टिकाएं और हाथों को जमीन पर फैलाकर आराम करें। भुजंगासन भी एक योग होता है, इसमें पेट के बल लेटें और छाती को ऊपर की ओर उठाएं। यह रीढ़ और फेफड़ों को के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह शरीर को लचीला और तनाव दूर करता है। इसी तरह से मैंने अनुलोम विलोम व कपालभाति भी करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, इससे और शरीर ऊर्जावान बनता है। आप शांति से आरामदायक स्थिति में बैठकर 3 से 5 मिनट गहरी सांस लें और योग करें, और लास्ट में 2-3 मिनट आप शांत होकर शवासन की मुद्रा में लेट जाइए और शरीर मन को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। तो मैंने योग आप रूटीन से प्रतिदिन फॉलो करो, काफ़ी आराम मिलेगा। और भी योग से जुड़ी हुई जानकारियाँ तो और भी करते हैं, लेकिन सुनते हैं प्यारा सा गीत।

मैनो अब योग तो कर लिया और ढेर सारा योग हो गया, तो उसके बाद आप भाई आप आहार क्या क्या लें इसके बारे में भी चलिए जानकारी लेते हैं। तो इसमें जो है संतुलित और सात्विक आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर की ऊर्जा और मन को शांति भी देता है। इसमें आप ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और अंकुरित दाल शामिल करें। और बहनों योग के अनुसार आधे पेट कहते हैं कि आधा पेट भोजन, एक चौथाई पानी, एक चौथाई भाग खाली रखें योग के समय। तो इसमें समय का भी ध्यान रखें। योग अभ्यास करने से कम 2 घंटे पहले तक भारी भोजन न करें, और अभ्यास के पहले आप केवल नींबू पानी या कुछ मेवे ले सकती हैं। योग के बाद जो है योग करने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, आधा घंटे बाद ताजे फल या नारियल पानी पिए। कसरत के 30 से 60 मिनट के अंदर केला, दूध, अंडे, ओट्स या बटर टोस्ट खाना रिकवरी के लिए बेहतर माना जाता है। आप केला प्रोटीन शेक, अंडे, साबुत अनाज, दही, फल हमेशा अपने नाश्ते में योग के बाद शामिल करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। और बहनों इसमें भाई एक्सरसाइज के बाद जो पसीने के रूप में शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और योग के तुरंत बाद वसा वाला भोजन करने से बचें, क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। तो सही बात है, योग करें, स्वस्थ रहें और सुनते हैं गीत।

0: गीत तो बहुत प्यारा था, और देखिए आपको हमने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत सुनवाए जानकारियों के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें, और अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। किसान भाई अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती किसानी। इसमें आज आप सुनेंगे बातचीत, विषय है मोटे अनाजों की गुणवत्ता और खेती से लाभ। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
1: समय परिवर्तनशील है, जवना चीज का एक समय कदर ना कही जात रहे ओकर आज बाजार में बहुत मांग बा। उपयोगिता के दृष्टिकोण से, पोषक तत्व से भरपूर, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से औरी तो औरी प्रकृति के प्रति सहनशीलता रखे वाली फसल जौना के हमन का प्राचीन काल से उगावल जात रहल है आ अब हमन का ओके मोट अनाज के नाम से जानल जाला। अपने सरकार का भी मंशा बा कि लोगन के अंदर जन जागरूकता पैदा कइल जा, मोटा अनाज, छोटा अनाज, सुपाच्य अनाज आ हर तरह के बीमारी से लड़ना के सक्षम अनाज। आज एकरे बारे में भरपूर जानकारी देवे खातिर अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। आप हैं कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हम स्वागत करतनी। आप ही बताएं कि मोटा अनाज के विशेषता के अलावा और कौन कौन एकर उपयोगिता बा।
2: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मोटे अनाज के विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो मोटा अनाज है ये कोई नया शब्द नहीं है या फिर नई इसके अंतर्गत आने वाली फसलें कोई नई फसलें नहीं है, बल्कि अपने सभ्यता में, अपने संस्कृति में, अपनी परंपरा में एक पुराना इतिहास रहा है। अगर भारतीय परंपरा की बात की जाए तो मोटे अनाजों का जिक्र जो है वो यजुर्वेद से ही मिलता है। अगर प्रमाणित तौर पे देखा जाए तो आज से करीब 6,500 वर्ष पूर्व से ही हमारे पूर्वज मोटे अनाजों का उपयोग करते थे अपने खाने पीने की तौर पे, और आज से करीब जो है 50 से 60 वर्ष पूर्व तक इन मोटे अनाज का जो प्रचलन है वो अपने भारत देश में बहुत ही व्यापक तौर पे था। अगर कुल खाद्यान्न में इसकी हिस्सेदारी देखी जाए तो लगभग 40% तक जो है हम मोटे अनाजों पे जो है डिपेंड थे। तो पहले हम ये जानते हैं कि मोटा अनाज होता क्या है, इन्हें मोटा अनाज क्यों कहते हैं। देखिए, मोटा अनाज कहने के पीछे जो है इसकी लोगों की मंशा है वो ये है कि ये ऐसा

0: अनाज है, ऐसी फसलें हैं ये कि जिसकी उत्पादन लेने में जो है ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप कम पानी में, कम रासायनिक खाद के उपयोग में और कम उपजाऊ मिट्टी में, कम श्रम के साथ जो है आप बहुत ही अच्छी से अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ न केवल जो है कम लागत में आप जो है इससे अच्छा उपज ले सकते हैं, यहीं इसका दूसरा लाभ ये भी है कि ये जो उपज है, इसके जो अनाज है, जैसे इसमें जो आने वाली फसलें हैं उस पे एक बार बात रख लेते हैं। मोटे अनाज में आने वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, शावा, कोदो, काकून, चेना तथा जो है कुटकी हैं। तो इन फसलों में इसका एक दूसरा जो लाभ है, पहला तो ये है कि आप बहुत ही कम संसाधन में, कम लागत में, कम खाद में, कम पानी में आप अच्छा उपज ले लेंगे। और दूसरा ये है कि आप इसके पोषक जो मान है, जो पोषक ये जो है पूरी तरह से भरपूर है। और जैसे आपने ये बताया कि काफी जो है सुपाच्य होता है। अगर इनमें से कुछ अनाजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बाजरा, जो कि मोटे अनाज का एक बहुत ही अहम फसल है, इसमें प्रति 100 ग्राम खाद्य हिस्से में 361 किलो कैलोरी की जो है ऊर्जा इससे मिलती है, जो कि अन्य हमारे धान गेहूं वाली फसलें हैं इससे जो है कई गुना ज्यादा है। अगर इसमें लोहे की मात्रा देखी जाए तो इसमें लौह पदार्थ प्रति 100 ग्राम हिस्से में 8 mg जो है वो लौह पदार्थ मिलता है। उसी तरह अगर आप रागी पे देखेंगे तो रागी में जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा मिलती है। प्रति 100 ग्राम खाद्य हिस्से में लगभग 344 mg जो है कैल्शियम मिलता है, जो कि अन्य किसी भी फसल में इतनी मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार ज्वार है, मक्का है, रागी है, ये सारे फसलें जो हैं पोषण से भरपूर हैं और जो है ये ज्यादा सुपाच्य हैं। और इनका लगातार सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो निश्चित तौर पे दीर्घायु या फिर अच्छी उम्र उन्हें जो है मिलती है। अगर हम इसके जो है इसको अगर आर्थिक रूप से अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करें धान और गेहूं को लेकर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि खरीफ 2022 के लिए सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है उसमें धान का जो A1 या A क्लास का जो उपज है उसके लिए 2060 रुपए, उसकी तुलना में अगर अन्य दो मोटे अनाज हैं जो जो खरीफ में बोई जाती हैं, जिसमें ज्वार आता है, बाजरा है, रागी है और मक्का है, बाकी अन्य फसलें हैं, ये मुख्य फसलें हैं, तो धान की तुलना में आप अगर देखा जाए तो ज्वार का जो है 2990 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंटल जो है वो सरकार देती है। बाजरे की बात की है तो बाजरा का 2350 रुपये और रागी का जो है 3578 रुपये, जो कि धान की तुलना में देखा जाए से भी ज्यादा है। तो ये न केवल पोषक से भरपूर है, न केवल कम लागत इसमें लगता है, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसका ज्यादा है। अगर वर्तमान के समय में सरकार आय बढ़ाने की बात कर रही है, पोषण वाले अनाज को उपजाने की बात कर रही है, कोरोना जैसी महामारी के बीच में देखा गया कि गुणवत्ता युक्त तो पोषक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए जो सुपाच्य हो और जिसमें जो है मनुष्य को बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाए, तो ऐसे परिवेश में, वर्तमान परिवेश में, इस आधुनिक युग में लोगों का मोटे अनाजों की तरफ, जो हमारे किसान भाई हैं उनको मोटे अनाजों की तरफ जाना जाने के बारे में निश्चित ही सोचना चाहिए, तभी उनको अपनी उपज से अच्छा दाम मिल पाएगा। और जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत सरकार भी इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। इसके क्रम में वर्ष 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था मोटे अनाजों के लिए, और आने वाले समय में अगर 2023 की बात की जाए तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं हमारे किसान भाई कि आने वाला जो समय है वो पुनः जो है हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि ये मोटा अनाज आज भी भारत इसमें पूरी दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। और आने वाले समय में जब जबकि एक वैश्विक लेवल पे इसकी मांग बढ़ती जा रही है, तो किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मोटे अनाजों की उपज लेके जो है अच्छी उपज लेके ज्यादा से ज्यादा लाभ वो कमा सकते हैं।
1: प्रकृति में जौन उतार चढ़ाव होला, वर्षा का, गर्मी का, हवा का या सूखा का, ओकरे प्रति यह पौधन का कौना तरह से रुझान होला?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और उसका एक ये तीसरा लाभ, ये और सबसे बड़ा लाभ है मोटे अनाजों की खेती करने में कि हमारे किसान भाइयों को अगर कम बारिश हुआ, इसी समय जलवायु परिवर्तन की समस्या जो है ये वैश्विक पटल पे कृषि जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसलिए जब जलवायु

0: की ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं, खरीफ के सीजन में वर्षा का कम होना, कभी रबी के सीजन में पानी का ज्यादा हो जाना, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में जो है ये मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए एक अच्छे उपज और अच्छा आय देने वाली जो है सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये मोटा अनाज कम पानी मिलने पर भी जो है ज्यादा से ज्यादा उपज जो है देने की इसमें शक्ति है। अगर इसको जो है धान के से अगर कंपेयर किया जाए, धान से एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 किलोग्राम धान पैदा करने में करीब 4,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जबकि अगर आप मोटे अनाजों से इसका इसकी तुलना करेंगे, ज्वार और बाजरा या फिर रागी से, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे कम प्रतिशत, कम से कम लगभग 40% कम पानी में ही जो है आप मोटे अनाज को पैदा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम पानी में, कम खाद में और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आप इससे जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। तो ये आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि आय बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपने देश और वैश्विक जगत की जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और निश्चित रूप से जो है ये विश्व जगत इन मोटे अनाजों का सेवन करके वैश्विक लेवल पे जो है विकास की जो गति है वो और भी तेजी से बढ़ने वाली है ऐसे अनाजों का सेवन करके।
1: डॉक्टर राहुल सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी देहली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुन रहे थे बातचीत। विषय था मोटे अनाजों की गुणवत्ता और खेती से लाभ। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार रिले होंगे।
3: This is Akashvani, and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla, where Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
4: Yoga keval हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
3: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga

0: की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
1: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran from Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf, has named Minhap 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
5: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए

0: आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्युएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

एक दूजे के लिए अब सुनोस यस फिल्म बाट लता मंगेशकर र एसबी बालसुब्रमण्यम को आवाज में शब्द स आनंद बक्सी को संगीत लक्ष्मीकांत पैरेलाल को

0: एक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो। ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: अभी मैं कसर रह गई
0: जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूं। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं।
0: हाँ?
1: और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
0: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 9.3 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के प्रारंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान। अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुनन, गोरखपुर।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज यादव। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से। जो गलती करके स्वीकार नहीं करते, उनसे सुधरने की उम्मीद ही व्यर्थ है। जी हां दोस्तों, अगर आपसे या आपके किसी दोस्त से कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वीकारने से उसे सुधारने का मौका मिलेगा और वह गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी। दोस्तों, इस विचार पर आप जरूर ध्यान दें और इस विचार के बाद लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

0: युवा साथियों, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है संतुलित आहार हमारे जीवन का आधार, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वार्ताकार श्री आनंद उपाध्याय।
1: भोजन दैनिक जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है। जो हम खाते हैं वह न केवल हमारे वजन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर डालता है। संतुलित और आहार से संबंधित अनुशासन शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और अर्थात बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि पोषण से भरपूर भोजन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं, संक्रमण से बचाव होता है। पोषण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अच्छा भोजन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है, जिससे मनोदशा में सुधार होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन और आहार क्या है, उसके बाद शरीर और स्वास्थ्य को समझते हुए भोजन के प्रभाव को समझेंगे, अर्थात भोजन शरीर को कैसे प्रभावित करता है। आमतौर पर भोजन शब्द ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से भोजन वह खाद्य पदार्थ है जिससे भूख मिटाने के साथ ही साथ शरीर का पोषण भी हो, अर्थात शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। इन्हीं पोषक तत्व को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा व तेल, विटामिन्स, आहारी खनिज, रेशा एवं जल के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इन्हीं पोषक तत्वों को आहार भोजन के घटक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं घटकों से मिलकर जीवों और समस्त मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक आधार पर भी कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और नीर अर्थात जल, विटामिन्स संग खनिज लवण मिलकर ये शरीर बनता है। विटामिन्स की उपयोगिता हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से ही मिलकर हुआ है। मनुष्य अत्यधिक अनुकूलनीय सर्वहारी है। मनुष्य अपने अनुकूलता के आधार पर ही आहार को ग्रहण करता है। विभिन्न परिस्थितियों में भोजन प्राप्त करने के लिए खुद को अनुकूलित भी कर लिया है मानव ने। जैसे जैसे मानव ने तकनीक का विकास किया है, वैसे वैसे उपलब्ध कृषि अवसरों के अनुरूप भोजन शैली

का विकास किया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार के व्यंजन और पाक कलाओं का विकास हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, मसाले एवं जड़ी बूटियां शामिल हैं। बढ़ते व्यापार के कारण संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिश्रण से भोजन एवं खानपान की परंपराओं तथा प्रथाओं में हुए बदलाव से भोजन एवं भोजन करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इस बदलाव ने मानव शरीर एवं मानसिक तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया है तथा कर रहा है। इस बदलाव को हम सभी लोग अपने परिवेश में या होने वाले समारोह में देख सकते हैं। व्यस्त जिंदगी में व्यक्ति ने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों एवं जंक फूड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। जो खाद्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार से डिब्बा या पॉलीथीन में मशीनों के द्वारा बंद की जाती हैं, उन्हें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अपनी जीवन शैली बना लेने वाले व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तली भुनी चीज़ें अधिक खाता है या फिर जंक फूड का अधिक सेवन करता है, उसके शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम क्लोराइड्स इत्यादि पोषक तत्वों की अधिकता होने लगती है, जबकि विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। सोडियम और हानिकारक वसी अम्ल, विशेषकर संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और ट्रांस फैट स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह हृदय के लिए हानिकारक होता है क्योंकि ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है, अथवा दिल के दौरे और धमनियों में रुकावट होने लगती है। मधुमेह और मोटापा भी बढ़ सकता है। यह खून के थक्के, जमने तथा सूजन का कारण भी बन सकते हैं। बच्चे, किशोर, किशोरियों या फिर युवा गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर, पालक, बथुआ, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। उनका शरीर विभिन्न विटामिन्स और आहारीय खनिज तत्वों की कमी से रोगी हो जाता है। जैसे विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन ए और सी, ई की कमी जब शरीर में होगी तब आँखों की रोशनी कम हो सकती है या आँखों में जलन, सूखापन आदि इत्यादि हो सकता है। कह सकते हैं कि आँखें खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विटामिन बी टू की कमी से होंठ फटने लगते हैं। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो पायरिया रोग हो सकता है, जबकि विटामिन सी का स्रोत आंवला, नींबू आदि खट्टे फल होते हैं। यदि विटामिन सी मुख्य रूप से ज़्यादा कम होता है तब मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं और खून भी आने लगता है। इसी प्रकार से जो बच्चे लगातार एसी में बैठे रहते हैं और धूप में कम निकलते हैं, उन बच्चों के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, अर्थात बच्चे हों या व्यक्ति या कोई अन्य, सभी लोगों को कम से कम धूप में सुबह में निकलना चाहिए। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी मांसपेशियों में ऐंठन और अनावश्यक थकान होने लगती है। चलने में लड़खड़ाहट और गिरने का खतरा बना रहता है। पालक, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग आदि हरी पत्तेदार सब्जियों को न खाने वाले व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी नाइन, फॉलिक जिसे फॉलिक अम्ल कहते हैं, और आयरन जिसे लौह तत्व कहते हैं, या आयोडीन आदि पोषणीय या आहारीय खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। इन खनिज तत्वों की कमी से शरीर में सर्वप्रथम खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व या आयरन, कॉपर एवं फॉलिक अम्ल की कमी से मुख्य रूप से खून की कमी हो जाती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी तब व्यक्ति को थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगता है। थायराइड हार्मोन की कमी से गलघंट रोग हो जाता है। शरीर का वजन बढ़ने लगता है और थकावट महसूस होती है। बालों का झड़ना और मानसिक सुस्ती भी हो सकती है।

बच्चों में आयोडीन की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। स्त्रियों में अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। कभी कभी गर्भधारण की समस्या भी हो सकती है। बच्चों में कुपोषण के कारण प्रोटीन्स, यदि बच्चों को प्रोटीन्स और खाने का आहार जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या कहेंगे दाल चावल रोटी भी कम मिलती है, तब ऐसे बच्चों को मैरस्मस रोग या क्वाशरकोर रोग हो सकता है। क्वाशर रोग में बच्चों का पेट बाहर निकलता है, चेहरा और पैर सूजन या कहेंगे चेहरा और पैर में सूजन आ सकती है। मैरस्मस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में बच्चों को ना ही प्रोटीन मिलती है, ना ही भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इस कारण शरीर बेहद कमजोर हो जाता है और सिर्फ दूर से देखने पर हड्डियों का ढांचा नजर आता है। इस रोग का मुख्य आधार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की अत्यधिक कमी हो जाती है। जब व्यक्ति के आहार में मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, तांबा एवं विटामिन डी या विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, तब शरीर में इंसुलिन के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जैसे सॉस, केचप, जैम, जेली, अचार, डिब्बेबंद फल व फलों का रस एवं दुग्ध उत्पादों, पनीर या नमी वाले इत्यादि पदार्थ जो डिब्बे में बंद होकर के आते हैं, उनमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट को मुख्य रूप से मिलाया जाता है। बाजार में जो बच्चे भुजिया ज़्यादा खाते हैं बाजार से लेकर के, उनमें और जो भी नमकीन आती है उसमें भी टेरिटरी ब्यूटाइल्स हाइड्रोक्विनोन्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे भुजिया सुरक्षित रह सके। इसके अलावा ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉयल्यून्स रसायन भी मिलाया जाता है। इन रसायनों की वजह से भुजिया हो या डिब्बा बंद पदार्थ हो, उनकी सुगंध, रंग और स्वाद अपने मूल रूप में महसूस होते हैं और इस प्रकार बार बार जो पदार्थों को खाता है, चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या कोई और भी हो, तो शरीर में एक नियमित मात्रा से अधिक ये रसायन पहुंचने लगते हैं। तब इस स्थिति में ये शरीर के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। असुरक्षित भंडारण और अधिक रसायन की वजह से कैंसर जैसे रोग भी घातक हो जाते हैं। घरों में असुरक्षित भंडारण, चाहे वो घर की रसोई हो या बाजार में विक्रेताओं का स्टोर या फिर ठेले पर बिकने वाली खाद्य सामग्री पर स्वच्छता का ध्यान न देने पर भी भोजन और पानी बैक्टीरिया या फफूंदी से दूषित हो सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार जिसे डायरिया कहा जाता है, पेचिश आदि घातक रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति मांस या दूषित सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन सब्जियों में परजीवियों के लार्वा भी हो सकते हैं, जो पेट में पहुंचकर शरीर को रोगी बना सकते हैं या शरीर में गंभीर घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। जैसे यदि शरीर में एस्कैरिस के लार्वा पहुंचेंगे तो एस्कैरिसिस रोग हो सकता है, अथवा फाइलेरिया के लार्वा होंगे तो फाइलेरियास हो सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हाथी पांव रोग कहा जाता है। इसी प्रकार से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जब कई दिनों तक फ्रिज के अंदर बने रहते हैं तो बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। फ्रिज में गलत तरीके से खाना रखने या गंदे फ्रिज के कारण फूड पॉइजनिंग जैसे सर्दी, खांसी या फिर अपच या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें साल्मोनेला बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और यह बैक्टीरिया गंदे फ्रिज के ड्रॉवर में पनपते हैं, जो भोजन को दूषित या संक्रमित करता है। खराब तरीके से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या संरक्षित या सड़े हुए खाद्य पदार्थ खाने से क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म बैक्टीरिया से बॉटुलिज्म बीमारी हो सकती है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से वातावरण में रहता है जहां वायु या हवा ना हो, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि फ्रिज में अधिक दिनों से बंद डिब्बों वाले भोजन को उबालकर ही खाना चाहिए। भोजन करने से पहले भोजन को
जानें।

0: अर्थात सावधानी पूर्वक भोजन तैयार करें और भंडारण कक्ष फ्रिज की समय समय पर सफाई करते रहें। अपने भोजन में दाल वाली फलियां, पत्तेदार हरी सब्जियां और सलाद को अवश्य शामिल करें और मौसमी फल अवश्य सेवन करें।
1: इस वार्ता के बाद दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे करियर की। करियर की बातों में आज हमने जो विषय लिया है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आप जानते हैं AI आज हमारे फोन से लेकर कारों तक हर जगह है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले AI होता क्या है। AI कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बनाता है जो इंसानों जैसा सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। उदाहरण के लिए स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट।

0: AI पर ही चलते हैं। भारत में AI का बाजार 2025 तक 7 अरब डॉलर हो चुका है और 2030 तक 50 अरब तक पहुंच जाएगा। AI में करियर के लिए 10वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम चुनें, खासकर मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ग्रेजुएशन में आप BTech कर सकते हैं, AI डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस करें, जो भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे IIT, NIT या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी उपलब्ध हैं। इस कोर्स के करने के बाद आपके ढेरों जॉब ऑप्शंस हैं। अब AI इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स जो रोबोट डिज़ाइन करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, NLP स्पेशलिस्ट जो चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं। इस क्षेत्र में ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो आप करके सर्टिफाइड AI एक्सपर्ट बन सकते हैं। भारत में ढेर सारी कंपनियां हैं जो AI के प्रोफेशनल को हायर करती हैं। आप चाहें तो इस क्षेत्र में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। AI तेजी से बदल रहा है तो लगातार सीखना पड़ेगा। एथिक्स का ध्यान रखें, अवसर अनगिनत है। स्टार्टअप्स में ज्वाइन करें या अपना AI बिजनेस शुरू करें। तो श्रोताओं, AI में करियर चुनें और दुनिया बदलें।
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: इस गीत के साथ दोस्तों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज की युवाणी में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज को दे अनुमति, नमस्कार।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM

अब युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान। अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुरन, गोरखपुर।

0: Sauce.
1: पंचो जय हिंद।
2: हाँ तो पंच भाई यही नारा के साथ आज का अपनी बैठकी शुरू भाई। पंच भाई हमन के अपने बैठकी में ज्ञान विज्ञान के बतियावल जाला बात और जानकारी दिहल जाला, लोगन के नई नई जानकारी सुनावल जाला और अपने काम के बात भी कल जाला। लेकिन पंच भाई आज 21 जून है और आज पूरे विश्व में हर व्यक्ति 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनावत बाटे।
1: सही करे भैया,
2: आज पूरे विश्व में योग के महत्व के बढ़ावा देवे वाले ये दिवस मनावल जात बा। योग के लोकप्रियता के देख के और सार्वभौमिक अपील और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील के ध्यान में रख के 11 दिसंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र संघ इस संकल्प पारित करे रहल कि 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनौले के घोषणा कैल जा।
1: सही कहा भैया,
2: तब से योग दिवस लगातार मनावल जाता, पूरे विश्व में धूमधाम से मनावल जाता,
1: पूरा विश्व में हर देश अपने आज के दिन अपन योग दिवस के रूप में मनाता।
2: और योग जौन बा एगो प्राचीन भारतीय पद्धति है जौन की हमन के शरीर और मन के आपस में जोड़ेला।
1: भैया सही कहा, ये आज से ना बहुत मैंने अपन कहा जा पुरखा पुरनिया पर रहना अपन ऋषि मुनि
2: सदियों से चले आवत
1: भैया मनावत रहना।

0: विभिन्न आसन और सांस के जोन क्रिया बाटे ओकरे माध्यम से योग हमें स्वस्थ रहले के और जोन बीमारी जोन बाटे उसे लड़ले के तनाव के कम कैले में मदद करेला।
1: सही कह रहे भैया तुम।
0: ई जोन योग होला ई एकाग्रता और अनुशासन के भी विकसित करेला। अगर हमन के प्रतिदिन योग के अभ्यास कैल जा तो हमन के निरोगी रह जाई और अपने आप बीमारी से दूर
1: कौनो
0: रह
1: भी
0: जाई।
1: बड़ बीमारी नहीं हो भैया हो, आप शरीर एकदम निरोग रही, स्वस्थ रही।
0: और भैया जब बात कर जाए योग के तो ई जोन योग दिवस मनावल जात बा 21 जून के, या मतलब आज जोन मनावल जात बा, ई प्रत्येक वर्ष कौनो न कौनो विषय के केंद्र में रख के मनावल जाला।
1: ये बारी कौन सी केंद्र में
0: भैया
1: रखल गई बा?
0: ए साल के जोन विषय बाटे स्वस्थ आयु के लिए योग,
1: अच्छा।
0: यानी कि अगर जीवन जिए के है तो योग करे के बाटे,
1: वो स्वस्थ रह के जिए
0: स्वस्थ
1: वो।
0: रह के जीवन जिए के बाटे, योग करे के बाटे। और काहे कि भारत में प्राचीन काल से सदियों से ऋषि मुनि भी योग के अपने स्वास्थ्य के खातिर बहुत आवश्यक मानत रहना और योग पर ही अपन पूरा जीवन बिता देते रहना योग कहके। तो
1: सही कहा भैया।
0: एनाते योग जौन बा एगो आध्यात्मिक साधन है जौन कि मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित कहके और एक केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पे आधारित रख के पूरे पूरे समाज के अपने शरीर के स्वस्थ रखाला।
1: भैया योग का कुछ साधन भी होला, वो कहा है
0: भैया
1: भैया?
0: योग के जो साधन है वो है 8 साधन है,
1: हाँ, कौन
0: यम
1: कौन?
0: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और योग करत समय 10 प्रकार के योगासन भी होला जो उनकी शरीर के विभिन्न समस्या से मुक्ति भी प्रदान
1: कौन
0: करेला।
1: कौन आसन
0: और
1: है?
0: भैया ये आसन है जन ताड़ासन वृक्षासन बालासन भुजंगासन पश्चिमोत्तासन त्रिकोणासन वज्रासन संत संधासन और नौकासन और शवासन। तो एक तरह से जितना आसन है अगर 10ों आसन के कायदे से सीख लेवल जा तो ये मान के चल जा कि शरीर के लगभग 99% बीमारी दूर हो जाए।
1: भैया सही करो, शरीर स्वस्थ रखे खातिर अगर समय निकाले बा भैया, ई ना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के मना,
0: तो
1: अभी
0: एक दिन
1: मना,
0: कल जा
1: एक दिन रोज
0: रोज
1: मैं अपन नियम बना लें कि रोज अपन उठ के तनिक समय, आधे घंटा 15 मिनट समय निकाले, लेकिन दिनचर्या में अपने ला दें और रोज अपन प्रतिदिन ओके करें, तब भी शरीर स्वस्थ रहेगा भैया।
0: अस्वस्थ। जब शरीर स्वस्थ रही तो जो लोग डॉक्टर के यहाँ घूमे ना तो वो डॉक्टर के यहाँ घूमने के समस्या कम हो जाए, लोग अब सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करिए, अपन पैसा बचिए। एनाते योग कैल हर व्यक्ति के जरूरी है। यही नाते भैया आज हमन के सोचत हैं कि योग से संबंधित आज एगो वार्ता भी सुनवा देवल जा कि वर्तमान में योग चिकित्सा के आवश्यकता का बा, ये विषय पर जानकारी देत बाटें डॉक्टर छोटे लाल गुप्ता और उनसे बात कही करत बाटें भैया वेद प्रकाश श्रीवास्तव।
2: पंच भाई हमन के अपने बैठकी में समय समय पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगन के आमंत्रित कई के आप लोगन तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचौले के प्रयास कई जाला। यही क्रम में आज अपने बैठकी में वरिष्ठ योग प्रशिक्षक डॉक्टर छोटे लाल गुप्ता जी आयल हैं। परंपरा के अनुरूप आपके स्वागत बा। आज हमन के बातचीत कई जाई वर्तमान समय में योग चिकित्सा के आवश्यकता, बदलत समय में आज योग काहे इतना आवश्यक भाई बा।
3: योग विद्या हमें एक ऐसी चमत्कारी कुंजी हाथ में सौंप देती है जिससे न केवल हम आध्यात्मिक ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर सकते हैं, अपितु रोगों से और क्लेशदायक वृद्धावस्था से अपने को मुक्त करते हुए चीर यौवन और दीर्घ श्वास से परिपूर्ण शरीर प्रणाली का गठन करने में समर्थ बनते हुए सर्वांग सुंदर मानसिक गठन के भी अधिकारी बन सकते हैं। यदि समग्र मानवता योग विद्या द्वारा प्रचारित प्रणाली को अपनी सुरक्षा के लिए स्वीकार कर ले तो वह जुग जुगों के लिए असामयिक मृत्यु, अकाल निधन और कराल काल स्वरूप महामारियों के चंगुल से भी वो सुनिश्चित रह सकता है।
2: आपके कहले के मतलब ई बा कि निरोग रहे खातिर आज ही पूरी तरह से एक आवश्यकता बनल बा। अगर आपके स्वस्थ रहल बा, जैसे डॉक्टर साहब ई देखे में आवेला कि अधिकतर लोग ई शिकायत करेलन कि हम समय पे खाना भी खात हैं, समय पे उठतो हैं, तब वो कब्ज के समस्या, गैस के समस्या, डकार के समस्या, कई लोग बहुत संतुलित शाकाहारी भोजन के बावजूद ई कहलन कि खट्टी डकार आवे लगेला थोड़ी देर बाद, एकर का कारण बा?
3: भोजन संबंधी अनिवार्य नियम है कि भोजन कभी न लीजिए लक्ष्मण उषा काल, मिथ्या है जलपान भी चाय आदि तो काल, मिर्च खटाई त्याज है नमक अधिक मत खाए, धनिया पत्ती संग में लहसुन नमक मिलाए, चोकर आटे में मिला धीमी आंच पकाए, आ तीक्ष्ण भूख हो तब तभी चबा चबा कर खाए। बिना भूख मत खाइए परखे सच्ची भूख, थोड़ा सा कम खाइए जितनी होवे भूख
4: जी।
3: कभी करें स्नान मत लक्ष्मण भोजन बाद, आ लघु शंका मत भूलिए वज्र आसन फिर तात, कच्चे पक्के खाइए ताजे मीठे फल
4: जी जी,
3: तली भूजी चीजें तजो बढ़े बुद्धि तन बल, बीज अंकुरित खाए यदि नाश्ते में जो बंधु, दूध में पीपली पड़े कफ जा दूबे सिंधु, तजो दवाएं पश्चिमी
4: जी जी,
3: योग आयुर्वेद अपनाओ असंभव हो तो प्रकृति की अंकुरित अन्न खाओ, गांजा भांग अफीम चाय पान गुटका बीड़ी सिगरेट, यदि दिनचर्या में जुड़े तो कपन के पूछो रेट
4: जी।
3: तब क्या करें, भोजन में सलाद लें कब्ज गैस के भ्रात, आ छोटी हरड़ चूसिए भोजन के पश्चात
4: जी।
3: एक छोटी हरड़ होती है
4: जी, जी।
3: भोजन करने के बाद
4: हाँ, हाँ।
3: उसको चूस लें, पेट की बीमारी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा
4: हाँ, हाँ।
3: और भोजन करने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलिए, उसके बाद से पेशाब करके एक आसन है योग में वज्र आसन पाचक आसन, उसमें बैठ जाइए भोजन पच जाएगा और कब्ज गैस पेट की बीमारी नहीं होगी।
4: दिन वाले खाने में और रात्रिकालीन जब आदमी भोजन कर रहा दोनों में आवश्यक बा?
3: हाँ दोनों में कर सकते हैं
4: जी, जी।
3: हाँ दोनों में कर सकते
4: हैं। अच्छा केहू केहू के खैला के नियम डॉक्टर साहब, केहू 10 बजे खाना खाला, जेके ऑफिस दफ्तर जाए के बाद 9 बजे अगर 10 बजे से नियमित पहुंचे के बाद, और चाहे भी ये कि हर आदमी अपने कार्यालय में सही समय पहुंचे ते 9 बजे खाना खाला, केहू केहू ऐसन बा कि कोनो अपन निजी काम करता तो खाना खाते समय दिन के 12-1 बज जाला, तो आपके तनी ई स्पष्ट करनी कि का सुबह और शाम के खाने में कोनो एकर निर्धारित समय रहेला और शाम के और सुबह में
3: तनी के। अगर मान लीजिए सुबह में नहीं टाइम मिलता है
4: जी जी,
3: लेकिन शाम को खाना खाने के बाद
4: जी
3: वो जो है 1000 कदम टहल सकते हैं
4: शाम के जी चीज बात।
3: और खाना इसलिए हजम नहीं हो पाता है कि वो बिना भूख के लोग खा लेते हैं
4: जी जी।
3: हाँ भूख हाँ, पर खाइए।
4: कविता में बताइनी है कि
3: बिना
4: जब भूख लगे
3: मत खाइए, परखे सच्ची भूख
4: जी जी।
3: जब भूख लगे तब खाना चाहिए
4: जी।
3: और 3 हिस्सा ही भरना चाहिए, आंखें त्रिफल दांते लून, आप पेट के भरिए तीन ही
4: हाँ, हाँ, हाँ।
3: 3 कोन ही पेट को भरना चाहिए और हवा और पानी के लिए छोड़ देना चाहिए
4: जी जी। अच्छा एक चीज आप ये बताइए कि पहले के लोग कहते हैं कि खाना खाइले के बाद बड़ा देर में लोटा लेके अपन समय अगर पुरनियन से कभी जो हम देखले बा कि काफी देर बाद उ लोटा से पानी पियत रहले, जब लोटा ओटा रहे जग रहे तो खाना खाइले के कह जाला 1-1.5 घंटा बाद ही पानी पिए
3: हाँ,
4: चाहिए
3: हाँ।
4: आयुर्वेद के हिसाब से का नहीं
3: हाँ, बिल्कुल नहीं, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद
4: जी जी
3: हाँ 1.5 घंटे तक, तब जब खाना खा लेंगे
4: जी
3: तब पानी पियेंगे तब खाना हजम होगा और गैस की बीमारी नहीं होगी। आज बहुतायत गैस की बीमारी चल रही है।
4: अच्छा आयुर्वेद के हिसाब से रात में सोले के का नियम बा, समय कितना समय से आदमी सो जाए तो नींद ढंग से पूरा होके
3: हाँ।
4: जो आजकल तरह तरह से लोग तनाव में आ जाते हमें, मनोचिकित्सक लगे जाते हमें, नींदे नहीं आवाता, एक आयुर्वेद में का मतलब निवारण बा और कारण दोनों?
3: बहुत बढ़िया का निवारण है योग में, बिना पैसा खर्च किए बिना दवा के
4: जी जी।
3: तो उसमें जो है तब तो ये ट्रीटमेंट आ गया, हम तो नेति जल नेति बताते हैं, तो जब रात को जब उस सोवे तो पैर के तलवा में सरसों का तेल मालिश करके सोवे तो उनको गहरी नींद आएगी बहुत। ये प्रैक्टिकल
4: तो सरसों के तेल गरम रहे कि कई सहूं रहे ये तनिया स्पष्ट
3: नहीं, उसमें जो है कोई गर्म की आवश्यकता नहीं है इस टाइम, ना ही कोई गर्म की नहीं आवश्यकता,
4: बस सूते समय मतलब हाँ, सोते हाँ, समय
3: पैर के तलवा
4: पैर में सरसों के तेल मल ले दोनों
3: हाँ,
4: पैर में
3: हाँ,
4: जी।
3: और उनको गहरी नींद आएगी
4: जी
3: हाँ।
4: अच्छा आयुर्वेद में यो कहावत बा कि बाएं करवट पहले सोए चाहिए
3: हाँ,
4: जी
3: कहावत नहीं है
4: जी जी,
3: जो स्टमक है वो बाएं करवट होता है
4: जी जी,
3: तो जब आप सोएंगे
4: हाँ, हाँ।
3: तो बाएं करवट पड़ेगा क्योंकि उसमें भोजन रहता है
4: जी जी,
3: इसलिए बाएं करवट सोना चाहिए
4: जी। आजकल डॉक्टर साहब कई ओर से केहू कौन उम्र के होके लेकिन नेत्र विकार के समस्या आँख के कमजोरी की समस्या आवता, पहले के लोग कहते हैं कि सुबह उठ के ठंडे पानी से जोन पुरनिया बुजुर्ग वार के।

0: बात रहे बुजुर्गन के कि ठंडे पानी से आंख धोई उसके बाद तनी अपन दूर तक टहले जाए चाहे ताजा हवा के उनकर मतलब होत रहे एमे आपका प्रकाश डालम कि कैसे मतलब आंख के ज्योति आंख के रोशनी बढ़ाओ कैसे सगरो कार आंख से होला
1: योग में जल।

0: बैटिंग सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है, लेकिन जहां पर हमारी पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा जो बैटर अंदर जाएगा उस पर प्रेशर ज्यादा आता है। और मिडल ऑर्डर की बात करूं तो वहां पे यास्तिका भाटिया की जगह पे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर हम दीप्ति शर्मा को ऊपर लेके आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट मैचेस में उन्होंने काफी बेटर स्कोर किया है यास्तिका भाटिया को अगर हम कंपेरिजन करें तो।
1: राइट देन, दो चेंजेस जो हुए हैं, तस्मीन ब्रिड्स और दानी वैन निकर्क अंदर हैं, और सुने लूज और काला रहने के मिस आउट कर रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए। और ताज़ा खबर ये है कि दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मैदान के बीचों बीच आया है, और आईसीसी का ध्वज और उसकी दाई तरफ भारत और बाई तरफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और प्लेयर्स वहाँ पे तैयार हो रहे हैं नेशनल एंथम के लिए। बहुत जल्दी से हम यहाँ पे रविंदर जी आपसे मैं बड़ी जल्दी जानना चाहूँगा कि इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा है 3.98, साउथ अफ्रीका इज -1.10। ये कांटे की टक्कर है, स्पेशली जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट में वो जो फाइनल हमने देखा था, साउथ अफ्रीका जानते हैं कि हमारे को एनआरआर भी मेंटेन करके रखना है।
2: देखिए एनआरआर का तो डिफरेंस रहेगा ही, और इंडिया अभी जो जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये देखिए कि इस ये जो आज इंडिया को उस रनरेट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे मैंने देखा है जो चेस करने वाले ज्यादातर जीते हैं, काफी जीते, और जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, लॉरा देख ली, डर्कसन देख ली, इवन क्लर्क जो कि काफी फॉर्म में चल रही है दोनों मैचेस में, तो इंडिया को एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट कम, और उसी को क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये 20 ओवर्स के मैच में दो प्लेयर्स ही खड़े हो जाते हैं तो मैच को बराबर कर देते हैं।
3: जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जी प्रकाश जी अपना सवाल पूछे।
1: हेलो जी,
4: कैसे हो यार?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
4: अरे आपकी आवाज सुन सुन के बड़ा हो रहा यार।
1: ये कॉम्प्लीमेंट था का? जी बताएं।
4: एक जी
1: बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस से थोड़ा सा उतना खुश नहीं है, एंड ऑफ को थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, होता है ना टेंटेटिव होता है।
2: हरमनप्रीत देखिए, हरमनप्रीत एक अब इससे बड़ा क्या होगा, 200 का मैच खेल रही हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, और उनको अब उनको पता है कि किस मैच में क्या, किस मैच में अपने प्लेयर अपने गेम को किस लेवल पे लेके जाना है, तो उन और ये जो अचीवमेंट है वो अभी तक कोई मेंस भी नहीं पूरा कर पाया जो उन्होंने पूरा करके दिखाया। आप चिंता मत कीजिए, जो जरूरत पड़ेगी तो हरमनप्रीत आपको उस समय मैच को जिताते हुए मिलेंगे।
1: उथरा वेरी क्विकली बिकॉज वी विल हेड टुवर्ड्स ओल्ड ट्रैफर्ड, द रिकॉर्ड से दैट पीपल द टीम्स हु हैव चेस्ड हैव मच मोर percentage in winning the games. Do you think that's a fearing factor for India? They chose to bat after winning the toss. Anything to concern?
5: I think the kind of players we have, if they play their normal game, records don't really matter much for India, and we have the capacity and the capability to win whether we chase or we set the total, and if they set a high enough total we have the bowling to restrict the opponent at any level that we want.
3: चलते चलते एक सवाल रविंदर, हरमन को हम लंबे टाइम से कप्तानी करते देख रहे हैं, बट डू यू थिंक शी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन देन एवर बिफोर? जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कर रही हैं, खासकर शफाली वर्मा को जिस तरह से पावर प्ले में यूज किया उन्होंने पिछले मैच में, इसके अलावा डीआरएस को लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप में कई बार सवाल उठे थे उन पर, लेकिन अब उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस दिख रहा है ऑन द फील्ड।
2: बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको पास जो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास, वो वाकई देखने लायक बिल्कुल है, और अब वो मैच्योर क्रिकेटर हैं, पुराने मैं कहता हूँ काफी इतने सालों से खेल रही हैं, अब इस समय वो मेरी इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं हो सकता, और इस समय इंडिया के पास जो हरमनप्रीत है वो एक एसेट है, इस समय वो कितना आगे इस समय चला पाएंगी और वो देखने वाली बात है, लेकिन हरमनप्रीत का जो वाकई आप सही कह रहे हो, जो उनका डिसीजन ले जो ले टेकिंग जो एलिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है, डीआरएस को पहले नहीं ले पाते थी, लेकिन अब वो जो डीआरएस जो लेती हैं उसकी वाकई बहुत ही बड़ा रीज़न है।
3: जी, और चलते चलते प्रेडिक्शंस, उत्तरा आपसे शुरू करते हैं, कितना स्कोर है?
5: जीत का या स्कोर का?
3: बिल्कुल दोनों बताइए।
5: ये चाहते हैं कि

0: इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका इजी बिल्कुल नहीं आपको जीतने देगी. और टोटल आई थिंक क्लोज टू 200 जाना चाहिए.
1: जी वैशाली
2: 180 अराउंड.
1: रविंद्र
3: 180 के आसपास सही रहे.
1: जी बिल्कुल. तो अब देखते हैं हमारी कमेंट्री टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.
4: फर्स्ट बॉल 20.
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
6: नमस्कार, मैं संजय सरीन अपने साथी कमेंटेटर. किशन कुमार के साथ आज भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप का यह बहुत एक अहम मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर. कुछ देर पहले टॉस हुई और टॉस भारत ने जीती और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. भारतीय टीम आज इस प्रकार रहेगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर, जमेमा रेड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मेदाना, यशिका भाटिया, अरुणादिति रेड्डी. आज एक नया नाम जो इस टीम के साथ जुड़ा है वो है प्रेमा रावत, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा. ये होंगे भारत के आज प्लेइंग 11. प्रेमा रावत को स्थान मिला है श्रियंका पाटिल की जगह जो चोटग्रस्त होकर बाहर गई हैं. और आज प्रेमा रावत अपना मैच खेलेंगी, पहला मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का ये इस 2026 का. और साउथ अफ्रीका की टीम अपने कप्तान लॉरा वॉल्वर्डाट के साथ टीम में उतरेंगी. मजीना कैप, तुमी शेखुखुने, शिनालो राफ्ता, क्लो टैशन, नानकुले मलाबा, नंदनी डक्लाक, एनरी डक्शन, डैनवेन निकक और आयोबोंगा खाका जो उनकी बॉलर है तेज गेंदबाज, ये टीम में शामिल रहेंगी. और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में दोनों टीमें अब बिल्कुल सेट हैं. भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी. टॉस भारत ने जीता जैसे मैंने आपको बताया. स्मृति मंदाना और क्रीज पर मौजूद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का ये अहम मैच खेला जाएगा. शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना इस समय क्रीज पर हैं. शेफाली वर्मा का रैंक 7 है इस समय और स्मृति मंदाना का रैंक 7 है और शेफाली वर्मा 20 के अपने आईसीसी रैंकिंग पे हैं. मार्जना कैप गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी. 123 मैच उन्होंने खेले हैं, 97 विकेट्स उनके नाम पर हैं. और सामना करती हुई भारतीय बल्लेबाज एक अहम मैच में. किशन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अहम मैच में. भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच जो खेला जा रहा है, अपने सुनने वालों को मैं बता दूं, मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे स्टैटिस्टिशियन होंगे इस मैच में और भागवत सिंह रावत जो हमें बताते रहेंगे क्या क्या स्कोर इस मैच में बन रहा है. ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी.
7: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री. वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम दिस इन द आईसीसी T20 Women's World Cup, as important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI World Cup final which India won. Here's the first ball, and Smriti starts off beautifully off the pads, has been whipped away, should get a couple for that, and India are on the way of the very first delivery. 2 for the loss. Now in the context of this World Cup also, this is a very very important game because India won both their games. Should India win over here, they get into the driver's seat. And a lovely confident looking stroke on the onside off her pads by Smriti Mandana. It's a kind of a bread and butter shot for her, and that went down to mid wicket for a couple. once again on the Midland leg, played defensively forward by Spiti on the onside, no runs result. Now it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on from there on, because South Africa is a very good batting side and they can really give it a good chase to good total. Marizand Cup outside the off stump, flowing off drive, good stop there at mid off inside the 30 yard, and no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizand Cup. And as I was saying, you know, South Africa, we want to win over here. Remember, they lost to Australia, and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it'll be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizand Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
6: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी। और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं। शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मैरिजंड कैप का, चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं और इन चार गेंदों में भारत ने तीन रन बनाए हैं। मैरिजंड कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई, बट क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरी भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है।
7: Yeah, I mean, it'll be very important to see how Shefali goes about this. She likes to hit it over the top. Here's Marizand Cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle and driven into the covers. A half push, half drive, and a good stop there by Laura Wolfhard, but they get a couple for that. So Shefali Verma also in the very first delivery on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizand Cup. So controlled over here by Marizand Cup. Also interesting to see that five deliveries, Marizand Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizand Cup into Shefali Verma on the path. Once again, turned around the corner. That might well carry down to the boundary. The first four of the match coming up down to the square leg boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका।
6: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये चार रन जो निकल कर बाहर गया, और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला, और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं। और अच्छी शुरुआत, हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक तीन मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है। भारत ने 2 मैच खेले, आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए। साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं। इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे। 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन। स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई, और बहुत ज़रूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, और उसे पुश किया, मिड ऑफ पर जब तक फेन को फील्ड किया जाता, तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और इन इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची चार के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
7: Yes, it'll be now. This is an interesting contest that we'll have to see. Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail. Also, she's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven. That's gone down to the square cover boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका
6: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे पुश भर किया। टाइमिंग इसमें अच्छी थी, हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई और ये चार रन उनके बल्ले से निकलते हुए और इन चार रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर। तीन गेंदें अभी उन्होंने खेली हैं और भारत 1.3 ओवर्स के बाद 14 के अपने स्कोर पर। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का और स्कोर पहुंचा। इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
6: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से अच्छी टाइमिंग अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका। स्मृति मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर द स्टंप लेग स्टंप के बाहर और ये 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
6: लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और उसे हल्का सा सिर्फ दिशा दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 23। स्मृति मांदना खेल रही है 12 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शेफाली वर्मा खेल रही है 11 के अपने व्यक्तिगत योग पर और रन रेट भारत का अभी 11.5। कैप ने एक ओवर डाला 9 रन दिए और इस्माइल ने अभी तक एक ओवर डाला है 14 रन दिए हैं, कोई एक्सट्रेस नहीं है। 18 ओवर बाकी बचे हुए हैं और इन 18 ओवरों में बहुत एक बड़े स्कोर की तलाश में भारतीय टीम रहेगी ताकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय जो उन्होंने लिया उसमें वो कामयाब रहे और एक अच्छा स्कोर सामने रखे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बहुत ही गहरी बल्लेबाजी है साउथ अफ्रीका के पास।
7: 23 for no loss. Once again, with outside the off stump, the first ball of caps, so they've kept a sweeper cover of the very first delivery. Now, this is what's been happening in the first two overs. India, of course, winning the toss and batting first from South Africa's perspective. They've got two experienced bowlers out there, and that's Marizan Karp and Shabnim Ismail. Now, what they've been doing is either bowling on the pads or a lot of width outside the off stump, and that is tailor-made deliveries for Smriti Mandana and Shefali Verma to score off. Now, they'll have to try and hit the top of our ball in that corridor of uncertainty. Once again on the pass, the next delivery to Smriti Mandana. Nicely played on the onside for one more. So, two singles of Karp's over. And Karp, of course, gave 9 runs in her first over, whereas Shabnim Ismail gave 14. And Karp gave 1 boundary and Shabnim Ismail 2. And that's what, from India's perspective, one must say, this is a very, very good start. Very sure start. Marizan Karp this time to Shefali Verma. Once again on the pads. Overbalances her field. Shefali Verma, but plays it nicely off her pads down to square leg for a single. And he ball on the pads. He just rolled the wrist on that one. And enough runs there to get one more to Shefali Verma.

0: Chiefs up to 13 of 6. Smithy Bananas 13 of 9. India 2.3 overs, 26 for no loss. And this is certainly, that's why we say, a very, very good start for India. The current run rate already, 10.4. Here is Mohsin Kab, this time to Smithy Banana on the leg and mill stump. Beautifully driven on the onside. Might well carry down to the long odd boundary for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: The timing on that was so good. Now, when a ball gathers momentum on the turf as it travels, tells you a lot about that timing. On the pads for sure, but how well was that timed? Beautifully timed. Gathered momentum on the turf as it went down to wide long on for 4. Cap is certainly distraught, but if you're going to continue bowling on the pads with outside off stump, this is what's going to happen. You're going to go for boundaries.
2: 2.4 overs ke baad Bharat 30 ke apne score par pahuncha hua. Smriti Mandhana 17 run par khel rahi hai, 10 gende abhi tak unhone kheli hai. Cap ki agli gend aur use cut kiya, lekin seedha fielder ke haath mein ek puri jisko bolte hain corridor laga rakha hai offside par Smriti Mandhana ke liye. क्योंकि सबको मालूम है और खास तौर पे साउथ अफ्रीका की टीम को ये मालूम है कि उनके जो बल्ले हैं वो स्क्वायर की तरफ ज्यादा चलता है और बहुत एक्यूरेट भी चलता है. प्लेसिंग और टाइमिंग दोनों अपने पास रखती हैं वो.
0: एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड. एक्चुअली Mohsin Kab लकी टू गेट अवे विद दैट, दैट द शॉट आउटसाइड द ऑफ सम इनफ विद जस्ट वेंट स्ट्रेट टू दैट फील्डर एट पॉइंट वाइड ऑफ द क्रीज. इज Mohsin Kab एंड शी इज बोल्ड. लुक एट दैट फेरोशियस लुक ऑन Mohsin Kab. Went wide of the crease, changed the angle, brought that ball into the left-hander, and Smriti Mandhana is castled. Just as we were saying, that in India have got a good start over here. 30, they lose the big wicket of the in-form Smriti Mandhana. Clean ball by Mohsin Kab.
2: एक बहुत ही नए तरीके की शॉट खेलने की कोशिश करी. हालांकि Smriti Mandhana ऐसी शॉट्स खेलती हैं, लेकिन अभी समय और टाइम नहीं था इस शॉट को खेलने का. पूरी तरह से बीट हुई, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही थी Mohsin Kab. एक शानदार ऑलराउंडर है और समझती है गेंद को, इसलिए उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल रखी और एक नई जिसे स्कूप के रूप में उठाने की कोशिश की थी Smriti Mandhana ने, और पूरी तरह से बीट हुई और गेंद जो थी बिल्कुल विकेट के ऊपर थी और पूरी तरह से छकाया उन्होंने और बोल्ड किया. एक बहुत बड़ी विकेट साउथ अफ्रीका ने अपने लिए अर्जित करी और Smriti Mandhana के रूप में 17 रन बनाकर वापस पवेलियन में.
0: Absolutely, you know, the thinking is what I liked over there. Absolutely, she went wide of the crease. As we said that, suddenly we saw she going wide of the crease, brought that ball in. Most of the deliveries were on the pads or outside the off stump, lot of width. For a change, went wide of the crease, brought it in. Good thinking. Smriti, of course, tried to play the modern T20 game stroke, the scoop over fine leg, but also the slow ball. So it went through, the bat went early, the ball went through, and that was the end of Smriti Mandhana. It's a huge wicket, I can tell you, because Smriti Mandhana is in form, and that's why you saw, I mean, Mohsin Kab was so ferocious out there. 3 overs bowled, 30 for 1. Yastika Bhatia comes in. Now India need a very, very good partnership from here on. Chloe Tryon. Well tossed up, and she's found the gap over there. Shefali Verma between extra cover and mid off down to the wide long off boundary for 4.
1: Ye laga abha ka choka.
2: और शिफाली वर्मा के बल्ले से ये निकलता हुआ खूबसूरत चौका ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. आगे बढ़कर कुछ कदम आगे निकाले और उसे कवर बाउंड्री के बाहर उन्होंने धकेला 4 रन के लिए. एक खूबसूरत शॉट लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, लेग स्टंप के बाहर गेंद, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Well, Shefali is not going to stop. If you're going to bowl those kind of ones, the last delivery was exactly there for the sweep. And Shefali Verma goes through with it down to the backward square leg boundary for 4. Beautifully played. 38 for 1 India. 3.2 overs. I just wonder, was it right to bring in Chloe Tryon? Round the wicket. Here's Chloe Tryon. This time to Shefali Verma, who goes down the wicket. Lofts it out and high. Has she got the distance? Over long goal for the first 6 of the match.
1: ये लगा आभा का छक्का.
2: और इस मैच का ये पहला छक्का शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ आगे बढ़े और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा। उन्होंने एक खूबसूरत स्ट्रोक पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे टाइमिंग के साथ इस गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। 74 मीटर लंबा ये छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ भारतीय स्कोर जो बढ़ता हुआ 44 रन पर पहुंचा एक खिलाड़ी के नुकसान पर 3.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। क्योंकि अभी तक 7 चौके और एक छक्का लग चुका है बल्लेबाजों के रूप में और शिफाली रुकने का नाम ही ले रही। अगली गेंद को उन्होंने धीरे से डिफ्लेक्ट किया डीप मिड विकेट की तरफ, एक प्रोटेक्शन लगाई गई थी जो डीप मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया गया बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले।
3: Prior to this single, she was 27 of 9. That pays a strike rate of 300. And that's an enormous strike rate for an opening batter to start off from. And that's why I would question this change. I mean, Shabnim Ismail went for a lot of runs in the first over. That's right. But she's got all the experience. And she's a very shrewd bowler. I wonder whether it was a good change to take her off. Here's Kuru Trant this time from over the wicket. Short in lane outside the off jump. Beautifully played by Yastika Bhatia. That's her first delivery. And that's down to square third man inside the 30 yard. They want a single which is not really available over there. They yes, no, and finally decide against it, which was the right decision, certainly, because there was no run. Here is Chloe trying for the last time. It is over. That's a good ball. That's the incoming ball to the left-hander. That's been punched away, and it will be cut off. The ball itself slows down just about 5 feet inside the square cover boundary.

0: वर्ल्ड कप वुमेन्स T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। शाम के 7:19 और 10 सेकेंड हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट UG की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया और कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
8: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
7: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योग अभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है।
9: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
7: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
8: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
7: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई

0: को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर के ग्राम हथौरिया में खनौत नदी पर बनने वाले सेतु निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि खनौत नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: Yeah, I think I need a statue in Kursa, I think, now.
1: And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
2: किया और एक ही रन उनके बल्ले से अभी तक निकला है।
3: मोहम्मद शाहरुद्दीन शेयर्ड सम इंटरेस्टिंग फिगर्स विद अस। इंडिया इन पावर प्ले वर्सेस पाकिस्तान 38 for 2 वर्सेस नेदरलैंड्स 59 फॉर नो लॉस वर्सेस साउथ अफ्रीका आल्सो 59 इन टर्म्स ऑफ रन्स गुड बट दे हैव लॉस्ट द टू ओपनर्स दैट्स स्मृति मंदाना एंड शेफाली वर्मा एंड दैट्स ह्यूज। सो साउथ अफ्रीका हैव रियली गॉटन बैक into this game. Had India gotten to 60-65 with the loss of one wicket or no loss, that would have been good. But two important wickets that South Africa have gained have made it relatively even Stevens. And it's got to be a partnership now that has to be weaved between Jemima Rodrigues and Yastika Bhatia here. And first ball of New York started by Malaba outside the off stump. And we all know Malaba doesn't give any pace on the ball at all. And if you've got to score off her, you've got to create the pace. You've got to create the power. And that's the only way you're going to get runs. The first ball, a controlled drive down to sweeper cover. And that gets one more to Jemima Rodrigues, who's now 2. And India are 60 for 2. Yastika Bhatia, 10 of 8. Malaba to Yastika Bhatia from round the wicket. That's at the off and middle stump. Not much turn on that one. And that's played gently forward into short mid wicket by Yastika Bhatia. And that score remains for India 60 for 2. This is going to be a good contest. Malaba round the wicket. Short in land outside the off stump. That's been beautifully steered. A square drive down to square third mid boundary for 4.
4: Ye laga aabha ka choka.
2: और इसे खूबसूरती के साथ गेंद को सिर्फ दिशा भर दी उन्होंने स्क्वायर बाउंड्री के बाहर और डीप पॉइंट की तरफ इसे मोड़ा और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक का यशिका भाटिया के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर पहुंचती हुई यशिका। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी और उसे भी मोड़ा गया है और स्क्वायर बाउंड्री पर बहुत अच्छी फील्डिंग और जब तक फील्ड करके थ्रो किया गया दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले बहुत अच्छी फील्डिंग करेगी क्योंकि ये स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर आर 2 रन लेना चाहती थी लेकिन 2 रन भी नहीं लेने दिए।
3: Yeah, I mean, but that she's pitching it too short.
2: Yeah.
3: That's what's happening from Malaba. Now, if you're going to pitch it too short, you're giving the batter enough time to pick their spot. Here's Malaba. This time holds the ball in the air for a little longer than the previous delivery. I won't say that was a length delivery. Just holds it back. And concedes just a single as the ball is played on the onside. This is what she'll have to do. Toss the ball up a little more. Give the ball more air time. Try to see if it grips the surface. If there's anything in the surface for her to get turned. Too early days in this game. Next everyone, well tossed up. And that's driven straight down to extra cover where Laura Wolfart completes the fielding. 7 overs bowled. And India 66 for 2 winning the toss. Batting first. Now this is going to be a very interesting contest because Malaba doesn't give any pace on the ball. If she's going to toss it up like she did in the last delivery of that over, when she got clobbered for 2 boundaries, she pitched it short. When you pitch it short, you give the batter enough time and also they can pick their spots. That's what happened with the Indian batters. But the last ball was good. If she gives it more air time and also gets that length correctly, this will be a good contest as well.
2: आप KK एक बात को देखें कि उन्होंने आखिरी गेंद जो थी उसे हवा दी और गेंद को थोड़ा सा आगे टिप्पा दिया बल्लेबाज को मौका ही नहीं दिया कि वो अपना बैट खोल सके डिफेंसिव प्ले करने के लिए मजबूर किया गया। मलाबा जो है एक विश्व विख्यात स्पिनर है और साउथ अफ्रीका की टीम की जो रीढ़ की हड्डी है स्पिन की उसकी एक एक एक ऐसा अंक है वो एक ऐसा मनका है जिस पर पूरी साउथ अफ्रीका टीम की स्पिन मौजूद है। और अगर आप आंकड़ों पर जाना चाहें तो भारत ने जो अपने पावर प्ले में 59 रन बनाए थे 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 13 डॉट बॉल्स उनमें खेली गई थी यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने छोर बदलने की जो कला है वो अब पूरी तरह सीख ली है और अपने अपने छोर जल्दी से बदलते रहते हैं। खाका को इनवाइट किया गया है गेंदबाजी के लिए चौथे बॉलर के रूप में 5वें बॉलर के रूप में उन्हें राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया जमीमा रेडरिक्स ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉट मिड ऑन पर तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 67 रन। दो खिलाड़ी के नुकसान पर 9.35 की औसत से भारतीय बल्लेबाज अभी अपने स्कोर बना रहे हैं। दो विकेट जो अभी तक आउट हुई हैं स्मृति मानना 17 पे व्यक्तिगत योग पर और शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ 31 रन बनाए थे अपने बल्ले से आउट होने से पहले और इस समय यशिका भाटिया एक अच्छी पारी खेलती हुई। इस पारी में जोर कम है और टाइमिंग बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर। खाका अपनी गेंदबाजी के साथ इस समय तैयार राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंद कर रही हैं अपने ओवर की दूसरी गेंद के साथ साथ 7.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 67 रन 2 विकेट राइट आर्म ओवर का स्टंप्स। एक जोरदार अपील और ये आउट ऑफ और लेग पर ये ऑफ और मिडल पर ये गेंद थी और इसे स्क्वायर खेलना चाहती थी लेकिन नाकामयाब रही और विकेट्स के सामने थी। जोरदार अपील करी गई और आउट करार दिया गया लेकिन यशिका भाटिया ने अपना थर्ड अंपायर से अपने निर्णय को पुनः विचार के लिए अंपायर को बोला और ये निर्णय अब थर्ड अंपायर के पास पहुंचा है कि क्या इस गेंद ने बल्ले को छुआ था पैड्स तक पहुंचने से पहले या नहीं, क्या वो क्रीज पर थी या गेंद बाहर थी, ये सब कुछ थर्ड अंपायर अब निर्णय लेंगी। लेकिन सॉफ्ट डिसमिसल जिसे बोलते हैं अंपायर ऑन ग्राउंड जो अंपायर थे उन्होंने आउट करार दिया यशिका भाटिया को और यशिका भाटिया इस समय खेल रही हैं 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत का स्कोर है 67 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। क्या ये आउट है या नहीं इसका निर्णय अब थर्ड अंपायर लेगी। भारत 67 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 9.35 का औसत है भारतीय बल्लेबाजों का अभी तक।
3: What be interesting is the way to the ball pitch. Oh, it's pitched in line. That was what I wanted to see. And the wickets hitting, and that will be one more certainly down for India because the only point of interest once the ball did not make contact with the bat was the bowler bowling over the wicket. Did that ball pitch outside the leg somehow in line? The moment it pitched in line, it was curtains for Yashika Bhatia. She had a good innings over here, 15. She got a start, hasn't managed to convert it. Out LBW to Ayabonga Khaka. Once again, that change has worked. And South Africa get their third wicket. And India now, with 3 wickets down, in terms of run rate, looks good, 9.14. But remember, they've lost 3 top of their batters.
2: That's
3: Smriti Mandhana and Shefali Verma, Yashika Bhatia, back in the dugout. And that is good for South Africa.
2: टीवी अंपायर थी जिन्होंने इन्हें आउट करार दिया कांडासा डल्ला बोडे। ये वेस्टइंडीज की 39 वर्षीय अंपायर हैं और अपना 8वां मैच है एज टीवी अंपायर जिन्होंने अभी अभी यशिका भाटिया को आउट करार दिया। भारत 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 67 रन अभी तक बना चुका है बोर्ड पर 9.14 की औसत से ये रन बन रहे हैं। यशिका भाटिया अभी अभी LBW आउट होकर वापस जाती हुई मलाबा की गेंद पर 15 रन उन्होंने बनाए थे और जिमीवा रॉड्रिक्स खेल रही हैं 4 पर। शुरुआत भारत की बहुत अच्छी थी, अच्छी बल्लेबाजी हुई, अच्छा स्कोर बना लेकिन बहुत रेगुलर इंटरवल्स पर भारत की विकेट्स गिरती हुई और भारत की टॉप 3 बल्लेबाजी अब आउट होकर वापस जाती हुई और हरमनप्रीत कौर जो आज अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है, विश्व की पहली खिलाड़ी जिन्होंने 200 मैच खेलने का ये कीर्तिमान अपने नाम पर अर्जित किया है।
3: खाका जो हरमनप्रीत कौर प्लेज विद एन एंगल बैट डाउन टू पॉइंट दे गो क्रॉस फॉर 1। जेमी मरोडिक्स आस्क हरमनप्रीत इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर सेकंड व्हिच वाज नॉट देयर रियली एंड सो हरमनप्रीत ओपन्स हर account with the very first delivery that she's faced. Always good to be off the mark. 200th T20 international for the Indian captain. What a moment, historic moment, as she walked in to Old Trafford, Manchester. Here is Ayabonga Khaka over the wicket this time, and that's been played gently on the leg and middle stumps, played down to mid-on inside the 30 yard to Shabnim Ismail, and the score for India remains 68-3. So the current run rate down to 8.87. Now that will happen when you've taken wickets, you've gone to peg back the opposition. India have lost wickets. They can ill afford to lose one more over here. They'll want to weave a partnership. As here is Ayabonga Khaka. Oh, that's a good ball. on the off stump. Now, when you go to bowl that length and that line, there you are. Shabnam Ismail saying well bowled. And so is also a lot of other South African players, de Klerk and others, applauding Ayabonga Kaka, because when you try to bowl on that off stump, the corridor of uncertainty, no width whatsoever, also no pace on the ball, that is good bowling. Just the two runs will Ayabonga Kaka end this over well. The run rate, which is over 10.5, is now 8.7. Kaka this time to Jemima Rodrigues, rolls a wrist on that one to bowl on the off and middle, turns it round to Wakin, short mid wicket, goes across for a single, 8 overs bowled. India 69 for 3 at a run rate of 8.6.
2: भारत 69 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.63 की औसत से ये रन बन रहे हैं और मोहम्मद ईशा उदाइन जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने बहुत एक अच्छी जो जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए दी है कि हरमनप्रीत कौर जैसे कि हमने पहले बताया अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही है और वो पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 200 से ज़्यादा या 200वां मैच खेल रही हैं और इसके अलावा 200 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने टेस्ट ओडीआई और T20 में एज कैप्टन कप्तान के रूप में भी उन्होंने ये उनका 200वां मैच है और वो दुनिया की सिर्फ ये दूसरी वुमेन प्लेयर हैं आफ्टर चार्ली एडवर्ड्स जिन्होंने 220 मैच खेले हैं। चार्ली एडवर्ड्स ने इंग्लैंड की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 220 मैचों में कैप्टनशिप की है और अभी तक हरमनप्रीत कौर का ये 200वां इंटरनेशनल मैच है टेस्ट ओडीआई और T20 इंटरनेशनल मैचेस को मिलाकर।
3: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर शब्नम इस्माइल दिस टाइम टू जेमिमा रॉड्रिक्स एंड दैट्स प्लेड ऑन द ऑफसाइड एंड अ डॉट बॉल इनिशियली जेमिमा रॉड्रिक्स वांटिंग अ सिंगल बट राइटली सेंट बैक बाय अ कैप्टन दे नो दैट द लास्ट थिंग दैट इंडिया वांट हियर इज अ रन आउट 69 फॉर 3 And they need to weave a partnership together. Remember, the first partnership between Smriti and Shefali was 30. The second between Yastika and Shefali was 24. And Yastika and Jemima just 13. So what South Africans have done over here is taken wickets at regular intervals just when India threatened a big partnership. Ismail this time, that's a much better delivery from outside the off, some nipping back into the right-hander. And that's been played on the onside by Jimmy Marotics. One more dot ball. Now slowly these dot balls would add to the pressure. But what India must definitely do over here is weave a partnership, because one definitely knows that if Harmanpreet Kaur takes it deep beyond over number 16 or 17, or even for that matter beyond the 15th over, she's got the ability to end with a flourish. Here's the next one that's played uppishly over the heads of the infield at cover from outside the off stump by Jemima, down to sweep a cover for just a single. That single will take India into the 70 for 3.
2: Bharat ka score 70 run 3 khiladi ke nuksan par 8.24 ki ausat se ye run bante hue aur Bharat ne pichli 12 gendon par कोई बाउंड्री नहीं स्कोर करी है, इसलिए ये जो स्कोर है, स्कोर रेट है, वो नीचे आता हुआ 10 से 9, 9 से अब 8.24 पर, और आखिरी विकेट जो गिरी थी 67 के योग पर वो थी यशिका भाटिया की। और शबनम इस्माइल अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो झोंकती हुई अपनी गेंदबाजी पर अपने तीसरे ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर गेंद उसे हल्का सा पुश किया और जब तक खुद वापस दौड़कर पहुंचती हुई शबनम इस्माइल बल्लेबाजों के पास मुस्तैदी से आंखों ही आंखों में इशारा किया हरमनप्रीत ने और जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपने अपने छोर बदले और भारत का स्कोर 8.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद पहुंचता हुआ 71 रन तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर बहुत ही एक मुस्तैदी से चुराया हुआ ये रन, आंखों से इशारा किया और फिर अपने अपने छोर बदले। हालांकि ये कॉल जेमिमा रॉड्रिक्स की थी क्योंकि सामने से वो देख रही थी बल्लेबाज को और उस कॉल को हरमनप्रीत ने हाँ बोली और दोनों ने अपने अपने छोर बदले। भारत 71 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद और शबनम इस्माइल अपने ओवर की पांचवी गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया, स्केयर लेग पर खड़े फील्डर ने भागकर इस गेंद को पकड़ा और पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर इस एक रन के साथ 72 पर पहुंचा। 8.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 73 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं, दो के अपने व्यक्तिगत योग पर, जेमिमा रॉड्रिग्स सात के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। और अगर आप बॉलिंग को देखें तो तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक ही स्पीड के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए। अगली गेंद ऑफ स्टंप लेग स्टंप पर थी और उसे हल्की सी दिशा दी स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड किया गया लेकिन पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के बाद, और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 73 पर तीन खिलाड़ी के नुकसान पर। 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 8.11 की औसत से अभी जो स्कोर बन रहा है जिसमें हरमनप्रीत के 3 रन हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं, जो 3 विकेट्स गिरी हैं अभी तक वो स्मृति मांदना 17 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शिफाली वर्मा 31 की अपनी तेज तरार पारी को समाप्त किया था उन्होंने, और यशिका भाटिया जो अपनी टाइमिंग से आज अच्छी बल्लेबाजी दिखा रही थी 15 के योग पर LBW करार दी गई।
3: One of the reasons why India elected to bat first, we believe, after winning the toss is because the wicket will turn in the second for the second team batting and India have got the spin attack, but they need to put a good amount of total batting first on the board for the spinners to have some purchase and come to the party. They're also having Prema Rawat, the leg spinner, 24-year-old, who is making a debut, and she's the 94th player to play T20s for India. Malaba, meanwhile, starts a fresh over. Round the wicket, once again, no pace on that one at all. Just a hint of turn, but not much on the leg and middle stump. Patted back along the wicket by Harmanpreet Kaur. 3 or 4 she is. She won't be in a hurry. She knows that if she spends enough time there, she can end with a flourish, as I said earlier. Jemima is 7 over. Malaba, short in length outside the off stump and waits for it. And then square cuts it away down to backward point for a couple. And that couple will take Harmanpreet to 5 now. And India are 75 for 3. So, you know, one of the things that managed ensured that Shabnim Ismail got wickets. First over, she gave pace to the ball around 120 as we watch Malaba once again. Well tossed up this time on the leg and middle stumps, waits for it, does Jemima and turn it around the corner. Look at that. You know, one thing interesting, no pace on the ball at all. The batter has to wait for it and keep on waiting, and then the ball comes to the batter and try to turn, use the wrist and turn it around the corner. So that's what's Malaba's secret.
2: देखिए मलाबा की अभी जो गेंदबाजी हो रही है वो धीमे करे अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है उन्होंने 4 रन।
4: ये लगा आभा का चौका।
3: लवली स्ट्रोक देयर फ्रॉम जेमिमा रॉड्रिग्स, दैट वाज इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गॉट राइट अंडर इट एंड देयर वाज शीड सीन द फील्ड ओवर देयर, नोबडी रियली इन दैट वाइड लॉन्ग अप पोजीशन, पिक्ड अ स्पॉट एंड ब्यूटीफुली प्लेड इट, अ लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव down to the wide log of boundary for 4. That will be a boundary after 18 balls. That tells you what's been happening in the last 3 overs or so. After getting 3 wickets, the South Africans have clawed their way back, putting the Indian batters under a tight leash. But the Indian batters out there, experienced, know very well what is needed is spend a few overs out there and then take the attack back to the South African bowlers. Malaba this time on the leg and middle stumps, ball straightens up after pitching, waits for it as Jemima nicely turns it round the corner with a wrist down to backward square leg for a single. And now India 81 for 3. 67 is when the last wicket fell. So these two have added 14 already, and India's current run rate is 8.24. Last ball, Malaba's over, well tossed up, and Harmanpreet is content with a controlled drive down to long on. So, 9 runs coming off the Malaba over, halfway mark at the end of 10 overs, India 82 for 3.
2: 8.2 की औसत से ये

0: में अभी तक हो चुकी हैं। तीन खिलाड़ी जो भारतीय टीम ने खोए हैं अभी तक, पहली विकेट स्मृति मांदना 17 रन पर, 30 रन की भागीदारी हुई थी पहली विकेट के लिए, दूसरी विकेट शेफाली वर्मा 31 रन पर आउट हुई, 24 रन की भागीदारी हुई थी दूसरी विकेट के लिए, और तीसरी विकेट यशिका भाटिया के रूप में आउट हुई, यशिका भाटिया 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, और 13 रन की भागीदारी हुई थी तीसरी विकेट के लिए, 15 रन की भागीदारी अभी तक की इन जिमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर के बीच में हो चुकी है, और भारत अभी 82 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर है अभी भारत का। ये जो टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड्स वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जा रहा है, भारत आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेलता हुआ, अगले ओवर के साथ डी क्लार्क को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है डी क्लार्क, तेज गेंदबाजी भी करती हैं और बल्ले से भी तेज रन बनाने की यो हमेशा कोशिश में रहती हैं। 83 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर, हरमनप्रीत ने पहली गेंद पर एक रन चुनाया, अब जिमीमा रॉड्रिक्स से सामना करने वाली है डी क्लार्क की अगली गेंद का। भारत 83 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 10.1 ओवर की समाप्ति के बाद 8.16 की औसत से ये रन बनते हुए, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, और ये उठाया है और ये आउट, बहुत ही आसान सा कैच, बॉलर ने खुद बताया अपनी गेंद पर, और डी क्लार्क ने एक वो विकेट चटकाई है कि जिससे एक जो सबसे जरूरी भागीदारी बनने की कोशिश की जा रही थी, और ये जो दोनों बल्लेबाज हरमनप्रीत और जिमीमा रॉड्रिक्स, जिन्हें ये बोला जाता है कि ये बहुत लंबी पारी खेलने की क्षमता अपने पास रखते हैं, उसे सिर्फ मोड़ने की कोशिश करी गई थी लेग स्टंप की तरफ, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा ही कैच अपनी ही गेंद पर डी क्लार्क ने पकड़ा, और भारत ने जिमीमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना चौथा विकेट गवाया। भारत 83 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 10.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: नडी डी क्लार्क स्टार्टिंग दैट ओवर विद द फर्स्ट डिलीवरी दैट वाज बोल्ड जस्ट ओवर 101 क्लिक्स, एंड वेरी क्लियरली द साउथ अफ्रीकन्स हैव अंडरस्टूड डोंट कीप पेस ऑन द बॉल, दैट्स वे टू गेट विकेट्स। We saw Shabnam Ismail doing that in a second and third over. Nadine de Klerk starting exactly in the same manner. And that ball to Jemima Rodrigues coming through very slowly off the wicket as well. Deliberately bowled that way. And the bat went through, and that's why the ball ballooned up in the air for an easy return catch for de Klerk on a follow through. Now India in a spot of bother for sure. 83 for 4. Smriti Mandana, Shefali Verma, Yastika Bhatia, Jemima Rodrigues will be back in the hut. I presume Deepti Sharma will be replacing Jemima Rodrigues out there in the middle. She's got all the experience, but after that will be Richa Ghosh. But Richa Ghosh can do a lot of tonking, but she's good when she comes in a little later on the leg and middle. The first delivery from Nadine de Klerk to Deepti Sharma, and she manages to roll a wrist on that one, playing down to mid-wicket for a single. She's off the mark in the very first delivery. As we watch that...
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, मैच का प्रसारण जारी रहेगा इस प्रायोजित कार्यक्रम के बाद। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम KIPM कैंपस की बातें, प्रायोजक हैं KIPM गीडा गोरखपुर।
3: KIPM गीडा गोरखपुर स्थित पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, जहां छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेशंस की सराहना करते हुए उन्हें राज्यपाल महोदया द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। TCS द्वारा आयोजित AI हैकथॉन में KIPM के छात्र आकाश यादव को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।
4: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो के खास कार्यक्रम कैंपस की बातें में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है, तमाम इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर के नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आज हम इन्हीं इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे फार्मेसी कोर्सेज के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सबके बीच मौजूद हैं कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर जय नारायण मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: सर। ये फार्मेसी कोर्सेस होते क्या हैं?
5: देखिए, फार्मेसी कोर्स मेडिसिन से रिलेटेड

0: कोर्स है। दवाओं को कैसे किसी पेशेंट को दिया जाए इसकी शिक्षा फार्मेसी में दी जाती है और अलग अलग स्तर पे कोर्सेस हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें सिर्फ डिस्पेंसिंग की सुविधा है, दवाओं के बारे में, दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, दवाओं के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में फार्मेसी के बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही मास्टर ऑफ फार्मेसी का भी कोर्स चलता है। ये कोर्स इसलिए है क्योंकि जो बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स की एक लैब है जिसको रिसर्च लैब बोला जाता है। वो 24 घंटा हमारे यहाँ खुली रहती है। अभ्यर्थी को दिन रात प्रैक्टिकल करना रहता है क्योंकि उसके बाद को रिसर्च फील्ड में जाना है।
1: सर, इन कोर्सेज को करने के बाद आपके यहाँ प्लेसमेंट से रोजगार की क्या व्यवस्था है?
0: इसके लिए सारे लोग डिफरेंट की बातें करते हैं कि प्लेसमेंट की सुविधा इंस्टीट्यूट में है कि नहीं। प्लेसमेंट कराना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह की कंपनियां कॉलेज को विजिट करती हैं और विजिट करने के बाद वो कंपनियां बच्चों को अपने तरीके से उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद उनको प्लेस्ड कर ले जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं और 50% बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल में भी प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ पे वो फार्मासिस्ट का रोल अदा करते हैं तो उनको कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग और दवाओं के बारे में इतना अच्छा जानकारी यहां से दिया जाता है कि वो आज तक हमारा किसी भी बच्चे का किसी भी फार्मासिस्ट के रूप में कोई शिकायत नहीं आया है।
1: आइए अब सुनते हैं कि आईपीएम कॉलेज से फार्मेसी की शिक्षा प्राप्त कर प्लेस्ड हुए विद्यार्थियों का क्या कहना है।
2: हेलो, मैं आरजू बक्स। मैंने 2016 में केआईपीएम से बीफार्म कंप्लीट किया और आज मैं सन फार्मा कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ थैंक्स टू केआईपीएम। तो आप भी अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए केआईपीएम में एडमिशन ले सकते हैं।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता मिश्रा। आई हैव कंप्लीटेड माय बीफार्म फ्रॉम केआईपीएम। करंटली आई एम पर्सुइंग पीएचडी फ्रॉम एनएमएमएस यूनिवर्सिटी मुंबई। दोज हु वांट to pursue their future in pharmaceutical sector, for them KIPM is best option in Gorakhpur area because it has all instrument facilities which are necessary for a pharmacy college.
1: जी धन्यवाद।
4: पूर्वांचल का पहला MBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर।
1: फार्मेसी कोर्सेज को करने के लिए शहरों में तमाम बड़े बड़े कॉलेज है, फिर लोग KIPM कॉलेज ही क्यों चुने?
0: हमारा कॉलेज जो है पूरे पूर्वांचल में भी एक नंबर पे है, यूपी में तीसरे या चौथे नंबर पे हम लोगों का कॉलेज है। इस कॉलेज को ज्वाइन करें इसके लिए हमारे जो पास आउट बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनसे जो हमने कमिटमेंट किया कि आपको यहाँ पे अच्छी लैब की सुविधा दी जाएगी, अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो टीचर्स इतने योग्य हैं कि कोई एक बार क्लास में अगर टीचर चला जाता है तो बच्चे उनको छोड़ने को भी तैयार नहीं हो।
1: सर, फार्मेसी कॉलेज चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
0: पहले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं, वहाँ पे लैब की सुविधा है कि नहीं, केमिकल की व्यवस्था है कि नहीं।
1: सर, आपके कॉलेज में फार्मेसी कोर्सेज के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज संचालित किए जाते हैं?
0: हमारे कॉलेज में फार्मेसी कोर्स के अलावा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में BBA, PCA, MBA, MCA कोर्स संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में BTEC, MTEC और पॉलिटेक्निक कोर्स संचालित किए जाते हैं। हमारे कॉलेज को NBA द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है जिससे KIPM पूर्वांचल का पहला कॉलेज बना है।
1: धन्यवाद सर हमें इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो श्रोताओं, अगर आप फार्मेसी से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं जैसे फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा, तो गीडा स्थित KIPM टेक्निकल कैंपस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
5: फ्यूचर को दीजिए सही डायरेक्शन।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
6: अभी आप सुन रहे थे कैंपस की बातें, प्रायोजक थे KIPM गीडा गोरखपुर। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ICC वर्ल्ड कप T20 वीमेंस कप का आंखों देखा हाल सुनते हैं मैनचेस्टर से।
7: में 93 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर बाकी के 8 ओवर्स में क्या स्कोर होगा? अगली गेंद खाका की और उसे कट करने की कोशिश करी थी लेकिन शॉट पॉइंट पर उस गेंद को फील्ड किया गया लेकिन भागकर 1 रन चुराने में कामयाब नहीं भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा। हरमनप्रीत अब सामना करेंगी खाका का। आयोबंगा खाका एक बेहतरीन तेज गति की गेंदबाज है। भारत 94 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.1 ओवर्स में 7.73 का स्ट्राइक रेट है भारतीय टीम का और कप्तान बहुत संतुष्ट होगी। राइट आर्म ओवर द स्टंप हल्के से पुश किया और कवर्स पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन के लिए पर्याप्त समय था। दोनों ही बल्लेबाजों के साथ स्कोर पहुंचा 95 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर भारत। और जो 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हुई हैं, स्मृति मांदना 17 पर, शिफाली वर्मा 31 के व्यक्तिगत योग पर, यशिका भाटिया 15 पर आउट हुई और आखिरी विकेट जो जमीमा रॉड्रिक्स के रूप में गिरी थी जिन्होंने 12 रन बनाए थे। भारत 12.2 ओवर में 95 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली गेंद खाका की ऑफ स्टंप के बाहर और उसे कट किया है। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाती हुई, गेंद खूब धीमी होती हुई और बाउंड्री के पास जाकर उसे खुद रोका, लेकिन इस बार बहुत तेजी से रन चुराए भारतीय बल्लेबाजों ने। 3 अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा की तरफ से और इन 3 रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 98 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.3 ओवर्स के समाप्ति के बाद। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा है ग्रुप ए का, क्योंकि इस मैच की जीत के बाद दोनों टीमें अपने आप को सेमीफाइनल के दरवाजे के पास पाती हुई। खाका अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, हरमनप्रीत ने इस गेंद को हल्का सा पुश किया, बॉल को जब तक कवर पर फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास समय थे अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर पहुंचा 99 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद। आयोबंगा खाका ने अभी तक अपने 1.4 ओवर्स में 9 रन खर्चे हैं और 1 विकेट भी उन्होंने अर्जित की है। हरमनप्रीत 16 पर खेल रही हैं और सामना कर रही हैं दीप्ति शर्मा। आयोबंगा खाका के इस ओवर की 5वीं गेंद का राइट आर्म ओवर द स्टंप ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, उसे पुश भर किया, डीप कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 100 रन। और ये भारत ने जो अपने दूसरा 50 रन भारत ने जो बनाया है, अब 100 रन 51 से 100 गेंदें लगी, हालांकि पहले 100 को पहले 50 को बनाने में 26 गेंदें लगी थी और दूसरे 50 रन अर्जित करने के लिए भारतीय टीम को 51 गेंदों का सामना करना पड़ा। और अब भारत जो है वो 100 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद उसे हल्का सा पुश किया, बॉल को डीप कवर पर आकर फील्डर ने फील्ड किया, 101 रन पर स्कोर पहुंचा भारत का 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। हरमनप्रीत पहुंची 17 के योग पर और दीप्ति शर्मा 9 रन पर बल्लेबाजी करती हुई 18 रन की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के रूप में दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। और बाकी के जो बचे 7 ओवर हैं के भारत उसमें एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। हालांकि गेंदबाजी बड़ी चतुराई से करी जा रही है और कप्तान जो वॉलमार्ट है वो बहुत ही मंझी हुई प्लेयर हैं और बहुत ही तरीके से अपने गेंदबाजों को बदल रही है। लौला बॉलवर्डाट एक ऐसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, एक ऐसी एक्सपीरियंस कप्तान हैं जिन्हें मालूम है कि गेम के पेस को कितना रोकना है और कब किस बॉलर को बॉल गेंदबाजी दी जाए ताकि बल्लेबाजों को बांध के रखा जाए।
8: इंडिया'स फर्स्ट 50 गेम ऑफ 26 बॉल्स, दैट्स व्हेन शेफाली वर्मा वाज ऑन अ रोल एज द फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर फ्रॉम लाबा fetches India one more, that takes India up to 102 for 4. The current run rate is 7.75. India's second 50, 51 to 100 came in 51 deliveries, and that tells you a story in itself. Double the number of deliveries for the second 50. That's what happens when you lose wickets. Current run rate is 7.75. Malaba now from round the wicket, this time to Deepi Sharma, who goes for a favourite sweep and manages to get over the infield down to the back foot square leg boundary for 4.
4: ये लगा आभा का चौका।
7: दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 6। स्केयर विकेट खेलना चाहती थी दीप्ति शर्मा, कामयाब भी हुई, हालांकि जो स्ट्रोक वो खेलना चाहती थी उसके लिए कामयाब ना हो सकी, लेकिन 4 रन उन्हें जरूर मिले और इन 4 रनों के साथ दीप्ति का स्कोर पहुंचा 13। मलावा अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और हल्का सा उसे दिशा भर दी और

0: फील्डर्स उस गेंद को रोकने के लिए पहुंचे और जब तक गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए वापस, तब तक पर्याप्त समय था एक रन के चुराने के लिए। और इस एक रन के साथ 107 पर पहुंची भारतीय टीम का स्कोर। चार खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 18 पर और दीप्ति शर्मा 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर।
1: नेक्स्ट डिलीवरी पुल राउंड द कॉर्नर एंड दे गो थ्रू फॉर अ रन। गुड कॉलिंग एंड गुड रिस्पॉन्स देयर। So, 7 runs and 4 deliveries in this Malaba over so far. Malaba has conceded 23 runs in 2.4 overs. More than normally what she does by her miserly standards. India's run rate is 7.9. Malaba around the wicket this time, fetched from outside the off stump and driven down to wide long on for a single. So, 4 singles and that one boundary in this over. That takes India up to 109. One delivery in this Malaba over remaining now. And if India continue to score, current rate will end up at 158. They must probably be looking at somewhere around 170. Malaba around the wicket. Short and outside the off stump. Cricket away between the third man fielder and the point fielder. Down to the back foot point boundary for 4.
2: Love.
0: बेहतरीन स्क्वेयर कट हरमनप्रीत के बल्ले से और गेंद स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ हरमनप्रीत पहुंची 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत 113 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 14 ओवर की जो गेम है वो भारतीय टीम की हो चुकी है। हमारे जो स्टेटिस्टिशियन है मोहम्मद ईशान उद्दीन साहब ने बताया है कि हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा की पार्टनरशिप 30 इनिंग्स में उन्होंने अभी तक 555 रन बना लिए थे और उसमें 4 बार 50 के ऊपर की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। और अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 30 रन की भागीदारी हो चुकी है। भारत 8.07 की औसत के साथ 14 ओवर में अब तक 113 रन 4 खिलाड़ियों के रूप में बना चुका है। आउट होने वाली खिलाड़ी स्मृति मांदना, शिफाली वर्मा, यशिका भाटिया और जमीमा रॉड्रिक्स आउट होकर क्रीज पर वापस जाती हुई। हरमनप्रीत 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं और दीप्ति शर्मा 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। इन दोनों के बीच में अभी तक 30 रन की बहुत बहुमूल्य भागीदारी हो चुकी है और मलाबा ने अपने 3 ओवर में 28 रन खर्चे हैं। हालांकि हमारे साथी कमेंटेटर के साहब बोल रहे थे बहुत कंजूस हैं रन देने के मामले में, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंद पर अभी तक 3 ओवरों में 28 रन अर्जित किए हैं और भारत अभी 113 रन पर खेल रहा है 4 खिलाड़ी गंवाने के बाद। बाकी के बचे 6 ओवर्स में ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी भागीदारी बनाने की कोशिश जरूर करेंगी ताकि भारत को एक अच्छा स्कोर दिया जाए, ताकि जो बहुत लंबी इन डेप्थ बैटिंग है साउथ अफ्रीका की उसको रोका जा सके उस चेज को चेज करने के लिए।
1: 113 for 4. Now, interestingly, 6 overs to go. Marizan Kapp has got one. Ismail has got one. So that will make it 2 overs. And Kaka has got 2. She, in all probability, bowled 2. That'll make it 4. And Nadine de Klerk has got 3 left. She'd probably bowl 2. Though Malaba has got 1. I presume, having conceded 28 of 3, she may not be given one more. We'll have to wait and see. But certainly, Kaap will get one, Ismail will get one, and I presume Kaka will get 2. Nadine de Klerk just the one over for 5 runs, and she got the wicket of Jemima Rodrigues' cotton ball. So it's quite possible that we'll see more of Nadine de Klerk as well. So this Indian innings is very interestingly poised, but one important factor one must point out over here is 14 overs have been bowled, not a single extra has been given. No balls, no wides, and not a single extra has been given so far, which is brilliant effort by the South Africans.
0: ये देखिए जी कितनी किफायती बॉलिंग करी गई है, कितनी डिसिप्लिन से गेंदबाजी करी गई है कि ना कोई बाय, ना कोई लेग बाय, ना कोई नो बॉल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइड है वो अभी तक एक भी अर्जित नहीं करी गई। बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करी गई है। यशिका भाटिया 15 पर आउट हुई थी, शिफाली वर्मा ने 31 रन बनाए थे और सबसे सामृति मराना जो शुरू में आउट हुई थी 17 रन उन्होंने बनाए थे 12 गेंदों का सामना किया था। हरमनप्रीत कौर खेल रही है।

0: के योग पर अभी तक उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है और दीप्ति शर्मा जिन्होंने अभी तक 10 गेंदें खेली हैं और उन्होंने 15 रन अर्जित किए हैं। दीप्ति शर्मा के बल्ले से एक चौका निकला है, हरमनप्रीत के कौर बल्ले के से दो, जमीमा रॉड्रिक्स ने आउट होने से पहले एक चौका मारा था, यशिका भाटिया ने आउट होने से पहले बेहतरीन 3 चौके अपने बल्ले से जड़े थे, शेफाली वर्मा ने भी 3 चौके जड़े थे और शेफाली वर्मा ने 4 चौके और एक छक्का जड़ा था आउट होने से पहले, और समृति मांदना ने आउट होने से पहले 3 चौके जड़े थे अपने 17 के योग पर। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ग्रुप ए का ये एक बहुत ही अहम मैच खेला जा रहा है। 14 ओवर्स में बिना किसी एक्स्ट्रा के भारत के अब तक 113 रन है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
1: The wickets are really have lost so far. Smriti Mandana bowled by Kaf for 17. Shefali Verma called by Jafta of Ismail for 31. Yastika Bhatia, LBW to Kaka for 15. Jemima Rodrigues, the last to go, cotton bowled by De Klerk for 12. And ever since, it's been Harmanpreet Kaur, the Indian captain, and Deepti Sharma out there in the middle. Kaur is 23 of 20. And Deepti Sharma is 15 of 10. So these two have really gotten together and they'll want to play till the very end and end this innings with a flourish. India were going at about over 11.5, and when they started losing wickets, obviously the run rate went down to around 7.7 in the last couple of overs, up to over 8, close to about 8.1 now, which means India will end at around 160 or a little more than that. But they'll want to look at least about 180. Shabnam Ismail from by to the crease. First ball on the leg and middle stumps. Turned around the corner nicely by Deepti Sharma. They go through for one and they're happy with just the one. So the over starts off on a single. Shabnam Ismail 1 for 26 in 3 overs prior to this one. And she got the wicket of Shefali Verma. Caught by Jafta. That's a lovely delivery. Almost, I'd call it a snorter. Short pitch delivery. And Shefali Verma in two minds whether to play it or not. In the meantime, it was so well directed. A bouncer between her shoulder and the head, which is the perfect place in which you can pull a bouncer. Have the batter in two minds. Also, came a little bit slower off the wicket. And that's what happened when she ended up getting the faintest of tickles out to the glove through to Jafta. Shabnam Ismail this time over the wicket. This short in lane that's been pulled away. A short arm pull or a short arm jab, you can say, down to Kapp there on the mid-wicket boundary for a single. So two singles in this over so far. Now very clearly, Harmanpreet and Deepti have realized this is over number 15. And they will want to play at least another over or over and a half. And after that, go after the bowling and get some boundaries in. Ismail, two singles in this over so far, and she's bowling around the off stump. From round the wicket this time to Deepti Sharma on the leg and middle stumps for a change, and that's been turned away on the onside for a single. And when she's bowling to Harmanpreet Kaur, she's bowling over the wicket, pitching it on the off stump for Deepti Sharma. What she's doing is going wide of the crease, round the wicket, and trying to bring the ball in. Also hitting the deck hard.
0: ये देखिए जी, बहुत मुस्तैदी से गेंदबाजी करी जा रही है क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में उनका शुमार है शबनम इस्माइल का, और दोनों बल्लेबाजों को वो अलग तरीके से गेंदबाजी कर रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और ख़ास तौर पर हरमनप्रीत कौर को वो गेंद लेग स्टंप के बाहर देना पसंद नहीं करेंगी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हरमनप्रीत कौर का अपनी ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा विकेट के ऊपर, और भारत ने अपने कप्तान के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट खोया है हरमनप्रीत कौर के रूप में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शबनम इस्माइल गेंद को ऑफ स्टंप पर रख रही हैं और ऑफ स्टंप के आसपास वो गेंद को इसलिए रख रही हैं ताकि उस गेंद को कट ना किया जा सके, और एक गेंद टप्पा काने के बाद थोड़ा सा अंदर की आई और हरमनप्रीत कौर उसे कट करना चाहती थी, गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद सीधा स्टंप्स पर, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हरमनप्रीत कौर के रूप में जो 24 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और ये 116 रन भारत के 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 14.4 ओवर्स की समाप्त

0: समाप्ति के बाद एक बड़ी विकेट इस्माइल शबनम इस्माइल ने अपने आप के पास अर्जित करी है और इसीलिए उन्हें दुनिया के एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। और इस विकेट के साथ भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ 116 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होकर जाती हुई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 24 रन बनाए आउट होने से पहले। और शबनम इस्माइल 3.4 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन खर्चे। अगली गेंद ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया और बॉल को फील्ड किया गया मिड ऑफ पर बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान पर। भारत 116 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। ये 15वां ओवर चल रहा है और भारत के अभी 116 रन अर्जित किए हैं 7.82 की औसत से। ये बल्लेबाजी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। इस्माइल 3.5 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन दिए हैं और 2 विकेट अपनी टीम के लिए उन्होंने अर्जित किए हैं। और 116 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर अभी अभी जो एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, उनका अर्जित किया उन्होंने, बोल्ड किया उन्हें। 24 के व्यक्तिगत योग पर 22 गेंदें उन्होंने खेली थी। आखिरी गेंद इस ओवर की एकदम विकेट टू विकेट की गई बॉल और ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया, खुद इस्माइल ने उसे फील्ड किया और ओवर की समाप्ति 116 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर।
1: What a spell of bowling, the last 3 overs by Shabnam Ismail. The first over went for 17, the remaining 3 have gone just for 11. That tells you the story of Shabnam Ismail. The first over went for 14, I beg your pardon. The first over went for 14. The remaining 3 have gone for 14. That's each over is less than 5 and over. And that tells you a story how and one of the reasons that she's been successful in over number 2, 3 and 4. She realized quickly enough with all the experience, cut the pace on the ball. The first over was consistently above 120, 122 or thereabouts. And from the second over onwards, it was around 111, 107. So that is what has got her the success. And got the big wicket of Hardman Court. First ball of a fresh over. Short and lane outside the off stump from Kaka. This time to Deepthi Sharma. And Deepthi Sharma square cuts it away. Probably gets the feeling she missed out on that, because after quite some time, there was width on the delivery. Otherwise, they bowled really nagging line and length. Have the South Africans to the Indians. Here is Kaka from over the wicket to Deepthi Sharma. A lot of width on that one, and Deepthi Sharma goes after it, doesn't quite connect. That's because that was bowled slower through the air, very slow delivery, and Deepthi Sharma not picking the slow one, and the ball going through to Sinalo Chafta. So two dot balls to start the over. That's the 16th one of the innings, and Kaka really bowling very intelligently over the wicket, and there's been pushed gently in the onside. They go through for one, just a one run in 3 deliveries in this over so far from Ayabonga Kaka. That'll bring in Richa Ghosh. Now Richa Ghosh, we know, can talk the ball. Now if the wicket is slower, the ball is not coming onto the bat, sometimes a batter who's got the power can generate power and hit the ball out of the park over boundaries. Now Richa Ghosh has got that kind of power. It'll be an interesting contest between Kaka and Richa Ghosh. What's important to see is what's the line that Kaka now bowls to Richa Ghosh. And here is Kaka from over the wicket to Richa Ghosh. That's the off stump, right on the off stump. And Richa Ghosh has to push it down to long on. Now, no width, no pace, and that's a good way to go for also bowling the ball exactly on the off stump, trying to hit the top of off.
0: आप ये देखिए कि गेंदबाजी कितनी डिसिप्लिन्ड हो रही है, विकेट टू विकेट गेंद कराई जा रही है ताकि बल्लेबाज को मौका ना मिले एक अच्छा शॉट खेलने का, एक लंबा शॉट खेलने का। इसलिए बहुत सीधी गेंद करी जा रही है अगली ओवर ऑफ स्टंप के बाहर, और उसे सीधा खेला लेकिन लॉन्ग ऑफ का फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया था इसी शॉट को रोकने के लिए, ताकि कोई स्कोर ना बन सके। और भारत 118 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 15.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: The first 6 overs a power play. India scored 59 for 2. Just the 13 dots. 7 to 15. 7 overs 15, 57 runs came on 3 wickets. And Deepti Sharma waits for that one. At the very last moment, plays a lovely cut, a very late cut, one can say. And that goes down to the third bin boundary for 4. The last ball of that has
0: और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा के बल्ले से ये स्क्वेयर कट करने की कोशिश थी, बाहरी किनारा जरूर लगा और थर्ड मैन की दिशा के बाहर ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 4 रन के लिए भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर ये 122 रन भारत ने अर्जित किए हैं। 16 ओवर्स में 7.63 की औसत के साथ इस्माइल शबनम इस्माइल ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए हैं। और अभी अभी खाका ने अपना तीसरा ओवर किया पूरा। आयबन खाका ने 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए और डी क्लार्क अपने दूसरे ओवर के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और उसे हल्का सा दिशा दिया और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: I just suspect that ball probably slipped out of the clerk's hand. Have a look at that as we see that again. And but good scoring opportunity. And going after that, Rajisha goes, gets the outside edge down to the third mid boundary for 4. Good start to the over from India's perspective. 126 for 5. De Klerk this time. This is a much better delivery on the off and middle stumps. And that's been driven down to orthodox mid wicket for a single. And Malaba, the fielder on that occasion. The first ball of that over was she probably went for the yorker on that occasion, but that ball slipped from her palm, I get the feeling, the more we see it again and again. Run rate for India now is 7.8. De Klerk after the boundary coming back just a single, readjusting her field. 127 for 5 now. 22 is Deepti Sharma. She's the strike of De Klerk over the wicket. De Klerk close to the stumps. Outside the leg stump, goes for the sweep, but no pace on that one. The slow ball, and just goes gently lobbing across on the onside for one more to India. One more to Deepti Sharma. India now 128 for 5.
0: Bharat 128 run, 5 khiladi ke nuksan par. Deepti Sharma khel rahi hai 23 ke apne vyaktigat yog par. Aur Richa Ghosh, jo abhi abhi aayi hai, unhone pehli gend par chauka lagaya. 6 ke apne vyaktigat yog par ballebazi karti hui. 16.3 overs ke baad bhartiya team ne 128 run banaye. Ye gend off stump ke bahar. Cut karna chahti thi, kamyab nahi hui. Aur wicket ke piche khadi jo wicket keeper hai, unhone use mustaidi se gather kiya. Bina kisi nuksan ke aur bina kisi score ke.
1: Kyunki aapko they're not picking the slow one.
0: Yeah.
1: That's the important factor over there. It's every delivery, one after one, cutting pace on the ball. And once again, Richard Ghosh was trying to place it on the offside. Ball coming so slowly in the air that the ball is going through. This is good bowling. After the first 4, coming back well. De Klerk this time, and Richard Ghosh goes after it and pulls it to wide long on. Just for a single, once again doesn't get it from the meat of the blade because she couldn't get under the ball. So slowly does the ball come. And also it's an interesting thing to think about. India 129. Now this wicket is not as conducive as probably one thought. The ball is coming slower off the wicket, much slower than one anticipated. It could be that even a 160 score could be good. De Klerk for the last time in the over, then slipped round the corner to bad ball outside the leg stump. Down to the square leg boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, गेंद को सिर्फ उन्होंने दिशा भर दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई। और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 133 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। और दीप्ति शर्मा धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी से मुस्तैदी से 27 के अपने व्यक्तिगत योग पर पहुंचती हुई। बाकी बचे 3 ओवर में भारतीय बल्लेबाज अच्छा रन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद उशान उद्दीन साहब ने बताया कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने इसी साल अप्रैल में जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम गई थी, भारत को 65 रन की एक साझेदारी 6 विकेट के लिए दी थी। जोहानसबर्ग में यह मैच खेला गया था और भारत हालांकि इस सीरीज में हार गई थी। अगली गेंद ऋचा शर्मा ने उसे मिड विकेट की तरफ खेला और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता। नए ओवर की पहली गेंद थी ये।

0: मलाबा के ने ये गेंद डाली थी। मलाबा ने अभी तक 3.1 ओवर में 29 रन दिए हैं बिना किसी विकेट के। भारत का स्कोर पहुंचा हुआ है 134 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का ये स्कोर है। साउथ अफ्रीका ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है जिसमें कैप ने 3, इस्माइल ने 4, ट्रायन ने 2, मलाबा अपना चौथा ओवर डालती हुई लेफ्ट आर्म ऋचा घोष को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड का इशारा, पहला वाइड इस मैच का साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने डाला है 17.1 ओवर्स के बाद। ये पहला एक्स्ट्रा रन अर्जित किया है साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने। अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन पर, इस गेंद को बहुत ही मुस्तैदी से फील्ड किया गया लेकिन तब तक पर्याप्त समय था ऋचा शर्मा और ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के पास 2 रन चुराने के लिए। और छठे विकेट की भागीदारी में अभी तक 21 रन अर्जित कर चुकी हैं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। भारत का स्कोर 137 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.2 ओवर्स के बाद। मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर और उठाकर मारने की कोशिश करी थी, लेग के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ आउट होकर वापस जाती हुई दीप्ति शर्मा जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और उसे उठाकर मारना चाहती थी। अच्छा कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैंप द्वारा। अच्छी फील्डर है, अच्छी गेंदबाज है और अच्छी बल्लेबाज भी है और भारत ने अपना छठा विकेट खोया दीप्ति शर्मा के रूप में जिन्होंने 29 रन बनाए 21 गेंदों का सामना किया और इन 29 रनों में शानदार 3 चौके भी शामिल थे और ये विकेट उन्होंने बॉलर को गिफ्ट के रूप में दिया। हालांकि वो स्कोर को थोड़ा तेजी से बढ़ाना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब हुई और एक बहुत ही बेहतरीन कैप जो कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैप के द्वारा जिसकी बदौलत भारत ने अपना छठा विकेट किया खोया। 137 रन भारत ने अभी तक बनाए हैं 17.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। ऋचा घोष के कंधों पे और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगले 2.3 ओवर्स में भारत कितना स्कोर खड़ा कर सकता है भारत इस मैच में। अगली गेंद, आहा, गेंद स्पिन लेती हुई, आप ये देखिए टप्पा डलने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर निकली और अनुदिति उसको मारना चाहती थी पूरी तरह से बीट हुई। खुशकिस्मत नहीं गेंद ने बल्ले का कोई बाहरी किनारा नहीं लिया और नुकसान ना हो सका। मलावा अपने ओवर की 5वीं गेंद के साथ, अच्छी गेंद ऑफ और मिडल पर और उसे हल्का सा पुश भर किया। ऋचा घोष ने 1 रन चुराया और अरुणदिति ने अपना खाता खोला और ऋचा घोष अब सामने मलाबा के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे। 17.5 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर है 138 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद, ऋचा घोष को जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रही। मिड ऑन पर खड़े फील्डर के सीधा हाथों में बिना किसी स्कोर के बिना किसी नुकसान के और 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर पहुंचा है 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी जो बल्लेबाज आउट होकर गई हैं दीप्ति शर्मा, एक अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, 29 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई थी, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था आउट होने से पहले और इन 29 रनों में 3 चौके उनके बल्ले से निकले थी। दीप्ति शर्मा कॉट मैरिजॉन कैप बोल मलाबा 29 रन, ऋचा घोष खेल रही है 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर। हालांकि उनके बल्ले से अभी तक कोई जोरदार स्ट्रोक नहीं आया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं और अगले 2 ओवर में वो स्ट्रोक्स क्या हमें देखने को मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खाका अपने ओवर के साथ तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर।
1: Hi Bugga Khakas, that's a fresh over right arm over the wicket and right to the block hole dug out by Arundhati Reddy there for a single, but this is what India want. They want Richa Ghosh on as much strike as possible. She's the one that can do damage to the South African bowling over here. Khaka, so far 1-18 in 2 overs prior to this one. And Richa Ghosh now. Aya Bugga Khaka over the wicket.

0: Richa Ghosh. Once again, goes for the block hole, and that's been driven down to long off for a single. So just the two singles so far. Good from South Africa's perspective. 18.2 overs. They bowled very disciplined manner right throughout. Just the one wide. And we have only 10 deliveries remaining in this innings of 20 overs. That tells you a story in itself. No balls, no wides. Here's Ayabonga Kaka. This time reach a goal to Arundhati Reddy, who makes room for that. But Kaka thinks well, follows the batter on that occasion, bowls right on the pads, and Arundhati Reddy can do no more than dig it out for another single. Gets the nod from her captain, does Kaka. There, Wolfart telling Kaka, well bowled, because she followed the batter and didn't give any room to Reddy, who was trying to go inside out on that one. Here's Ayabonga Kaka to Richa Ghosh, who comes down the wicket, and she once again follows. Has she found the gap? A lovely stop there, right on the mid-wicket boundary. But I just reckon they'll probably get a couple for that. Lovely fielding once again by the South Africans. That is Chloe Tryon there, who dived right across and prevented what could have been a boundary. So another two saved over there. They would have saved at least about 8 or 10 runs by good fielding. Around 8 for sure in this innings, which now has got another 8 deliveries left. Yes, Ayabonga Kaka this time. Richa Ghosh once again in the path. This will go down to the square leg boundary for 4. Bad ball.
1: Richa Ghosh ke balle se ye nikla hua choka, जिससे स्कोर भारत का पहुंचा है 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. और एक अच्छा शॉट था, उसे सिर्फ दिशा भर दी और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए. बहुत देर के बाद ये एक चौका भारतीय बल्लेबाजों के हाथ से आया है. हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग पर लेग पर खड़ी फील्डर के द्वारा, लेकिन नाकामयाब रही और भारत का स्कोर पहुंचा 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 18.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद. लेग स्टंप के बाहर गेंद, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर वाइड के रूप में 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: This is what the pressure of a boundary can do, even to an experienced campaigner like Kaka. And also the initial movement of Richa Ghosh, trying to give herself a little bit of room. Kaka trying to follow the batter. And on this occasion, Richa Ghosh not moving as much and a bit premeditated. Kaka over there thinking that she'd probably move more to the leg side, and that's why it ended up being 4 wides. Costly runs. Kaka this time to Richa Ghosh, this time tries to hit the tram lines. Wide of the off stump, gets it perfect. That's a dot ball, but an expensive over there from Ayabonga Kaka. 13 came of that, and the end of 19 overs. India 152 for 6. We'll have to wait and watch whom the ball is given to for the last over. Definitely, I believe it will be Marizan Kapp, because she's bowled so well. The last over will be bowled in Marizan Kapp.
1: भारत का स्कोर इस समय 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. भारत ने पहले 50 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए, दूसरे 50 रन यानी कि 51 से 100 के बीच में 51 बॉलों में उन्होंने ये 50 रन अपने बनाए, और 101 से 150 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 30 गेंदों का इस्तेमाल किया तीसरे 50 रन को पार करने के लिए. और भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. ऋचा घोष खेल रही है 15 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर, और अरुंधति खेल रही है 3 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर. भारत का रन रेट है 8, और मैरिजन कैप अपने आखिरी ओवर के साथ, पहले 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए थे 1 खिलाड़ी के नुकसान पर, और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. लेकिन बॉलिंग मार्क पर आकर शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई है, कुछ दिक्कत उन्हें महसूस हुई है, इसलिए वो वापस दोबारा से अपने बॉलिंग मार्क पर जाती हुई. मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए. शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन. ट्रायन ने 2 ओवर में 23 रन. मिलावा ने 4 ओवर में 33 रन. आयबोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन. और नदीन डिक्लार्क ने 2 ओवर में 16 रन. अगली गेंद, और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन बल्लेबाजों ने चुराया, और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अभी तक 153 रन अर्जित किए हैं 6 खिलाड़ी के नुकसान पर. ऋचा घोष अब सामना करती हुई मैरिजन कैप के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ मुदिता हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्थरा गणेशन। और आप जानते ही हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है। एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कंटिन्यू स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए हैं, एंड उस पे हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी।
1: हमें अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग की साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं तो वो भी हम कर सकते थे। उसको माइंड जो भी बैटर आ रहा था, जेमिमा भी आई तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है। आपके चेहरे में स्माइल कम होगी पर 159 अच्छा स्कोर होता मुदिता
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई हैं वो सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट पे जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वगैरह कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर। पेस होगा तभी आप उसको शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस नहीं है, फ्लाइटेड बॉलें उनको आप मारोगे तो फाइन लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते 3 ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारे तभी मैच में कुछ फाइट।
0: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेज टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 इन 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 इन 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट something which I feel did the damage for the Indian innings were the 40 dot balls, almost 40 dot balls that the Indians played.
4: I think the dot balls had a dual effect. One, of course, they kept the scoring low, and two, those dot balls were the ones that forced Indian players to go for shots which otherwise perhaps they would not have done. Like Vaishali said, there were no partnerships, and that was also because every couple of dot balls or every 3 or 4 dot balls meant they tried to go for a big shot without realizing that just swinging your bat does not bring you runs, especially when you're up against players like Cap and Ismail, who have a ton of experience between them. They know exactly what pace to bowl and when to hold themselves back. It's not always going all out that pays out, and that is where I said that it

0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन,

0: एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय

बंधु को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topper. Today's win also marked the return to the Pro League next season. Lalrim Siami was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed and over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट का आइए सुनते हैं मैनचेस्टर से आंखों देखा हाल।
2: हरमनप्रीत कौर ने अपनाई थी, उसमें अभी तक उनको पूरी कामयाबी मिलती हुई। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, शेफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी और श्री चरनी, जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई। लॉरा वॉल्फर्ट के रूप में अभी अभी उनको कॉटन बोल्ड किया, 20 रन बनाए लॉरा वॉल्फर्ट ने अपने इस बल्लेबाजी में और वापस जाती हुई। तस्मीन ब्रिज खेल रही है 5 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 11 गेंदे वो खेल चुकी हैं इन 5 रनों के लिए और 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन का पीछा करती हुई साउथ अफ्रीका की टीम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में ये एक अहम मैच ग्रुप ए का खेला जा रहा है। हालांकि ग्रुप बी की जहां तक हम बात करें तो लगभग 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज वेस्टइंडीज ने एक अहम मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ और उन्होंने भी अपने 6 अंक अर्जित कर लिए। इससे पहले इंग्लैंड 6 अंक अर्जित करके सूची में सबसे ऊपर है और ग्रुप बी जो अभी तक पूरा खुला हुआ है उसका एक आज बहुत बड़ा मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर, जिसमें 159 रन का पीछा कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम और ट्रैक्शन अभी टीम पर आती हुई।
3: डक्स एंड देन दे नीड अ बिग पार्टनरशिप, टैस्मिन ब्रिज हैजंट रियली गॉट इनटू द नॉर्मल ग्रूव दैट शी डज, बट गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स। श्री चांदनी रन द विकेट once again on the leg and middle, gentle roll of the wrists from Dirksen, and on the onside no runs result, Now Sri Charney bowls wicket to wicket, doesn't give the ball much air, and really also changes the line and length of every delivery. The next one is well tossed up, and she's bowled! Dixon is clean bowled! A brilliant delivery, as I said, well tossed up. Dixon's eyes lit up. She said, let me go after it. Took it over, completely missed. And that's wicket number two for South Africa.
4: ये होता है जी जाल में फंसाना, इसी बोलते हैं मछली को जाल में फंसाना। फ्लाइटेड गेंद और उठाकर मारने की कोशिश करी, गेंद में स्पिन आई, जिसके लिए हरमनप्रीत ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय जो लिया था वो बिल्कुल सामने झलकता हुआ और बॉल ने स्पिन किया और ये एक बड़ी मछली एंड्री ड्रैक्सन के रूप में फंसी इस स्पिन गेंदबाजी की श्री चन्नी की, और शून्य पर आउट होकर वापस जाती हुई और पावर प्ले में ये दूसरी विकेट अर्जित करी है श्री चन्नी ने अपने दूसरे ही ओवर में। दो बल्लेबाज जो अभी तक आउट होकर वापस गए हैं, वॉलफाट जो श्री चन्नी की शिकार बनी, खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर उसे कैच किया, और एंड्री ड्रक्सन जो कि शून्य पर क्लीन बोल्ड बोल्ड बाय श्री चन्नी और एक बड़ी मछली को फिर से फंसाया अपने जाल में।
3: गिव द बॉल मोर एयर, allowed to give the surface, the ball turns. Fundamentals, we saw that in that delivery. Sri Chandni gave the ball air. Henry Dirksen's eyes lit up. She said, let me go off it. Tonk it over the bowler's head. The ball gripped the surface, turned and hit the top of off. Sri Chandni, this time once again giving the ball more air to the new batsman Marizan Kapp, played back along the wicket. Excellent delivery in the previous one. What a brilliant, it's a dream ball of a left arm orthodox bowler. Two wickets, no run so far in this over. Sri Chandni to Marizan Kapp, played straight to mid off. A maiden double wicket by Sri Chandni there. What an over, and the power play ends. South Africa struggling, 25 for 2. Now need to score at close to 9.6 from here on. Chasing 159.
4: भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये जो अहम मैच खेला जा रहा उल्ट्रा फिट पर, पावर प्ले में भारत ने 59 रन बनाए थे दो खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले 6 ओवर में भारत ने 59 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने पहले अपने पावर प्ले में यानी कि पहले 6 ओवर्स में 25 रन बनाए दो विकेट नुकसान पर। भारत ने 13 डॉट बॉल्स खेली थी और साउथ अफ्रीका ने इस दौरान पहले पावर अपने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 23 डॉट बॉल्स खेली हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय गेंदबाज हैं, खासतौर पर जो भारतीय स्पिनर हैं, जिसकी वजह से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सफल होता दिखाई दे रहा है। 6 ओवर में 25 रन, दो खिलाड़ी नुकसान और 23 डॉट बॉल्स।
3: वन मोर चेंज द डिबिडन प्रेमा रावत नाउ आउटसाइड द लेग स्टंप एंड दैट्स बीन पुल्ड अवे अराउंड द कॉर्नर विल बी कट ऑफ बाय अरुंधति रेड्डी। अ डाइविंग एफर्ट एंड दे थ्रू फॉर टू। ब्रिट्स गोज अप टू 7 विद दैट। 132 नीडेड फ्रॉम 83 डिलीवरीज। This is getting to be tougher. Required run rate around 9.5, and they've lost Laura Wolfart on so much, on whom so much depends, and also the wicket of Dirksen. Prema Rawat once again outside the leg stump, that's been swept around the corner, ricochets. A diving effort there by Smriti Mandhana, and they go through for one, they go through for two, and also good running between the wickets by the South Africans, getting three. They convert two into three over there, so that takes South Africa into their 30s now. 30 for two, and Tasman Brits is 10. Tasman Brits realizes now that she has to be the aggressor of the two, trying to take the attack to the Debutan, knowing that there'll be nerves for Prema Rawat, and this is a good opportunity to get up the scoring rate, if not boundaries, at least get twos and convert twos to threes. Five runs in the first two deliveries of Prema Rawat. 129 needed for South Africa of 82 deliveries from here on. So the run rate, as I said, is 9.44. The next one is turned round the corner for a single. So six runs in the first three deliveries. And this is good thinking by the Indian captain, Harmanpreet Kaur. rotating her bowlers, we

0: Maldives seen 5 bowlers in operation so far, and this is just the 7th over.
1: साउथ अफ्रीका का स्कोर 31 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. प्रेमा अपने ओवर की अगली गेंद और हल्का सा उसे पुश भर किया ब्रिट्स ने. इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी के नुकसान पर. आउट होने वाले प्लेयर वॉल्फार्ट 20 रन बनाकर आउट हुई और डर्कसन ने बगैर स्कोरर्स को तंग किए हुए, जैसे कि हमारे रावत साहब हमें बता रहे हैं कि ये स्कोर अब रन रेट पहुंच चुका है 9.53 का. अगली गेंद और उसे कट करने की कोशिश, लेकिन स्क्वायर पॉइंट पर खड़ी फील्डर दीप्ति शर्मा ने उसे मुस्तैदी से फील्ड किया. वापस भेजा गया गेंद को प्रेमा रावत के हाथ में. प्रेमा रावत अपने ओवर की आखिरी गेंद ऑफ साइड फील्ड, एक पैक फील्ड इस समय, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं हुआ और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रहा 32 खेल पर 2 साउथ अफ्रीका. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 13 ओवर जो बचे हुए हैं, उन 13 ओवर्स में 127 और रन चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका को 9.77 की औसत से. अभी जो स्कोर बन रहे हैं वो 4.57 की औसत से बन रहे हैं. भारत ने अभी तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शिफाली वर्मा ने 2 ओवर किए हैं, नंदनी शर्मा ने 1, अरुंधति रेड्डी ने भी 1 ओवर किया है, प्रेमा रावत ने अपना पहला ओवर अभी विस्मात किया और श्री चरनी ने अपने 2 ओवर में 1 मेडन 2 रन और 2 बहुमूल्य विकेट्स अपनी टीम के लिए अर्जित की हैं. वॉल्फार्ट को 20 पर कॉटन बोल्ड किया और ड्रेक्सन को अपनी ही गेंद में क्लीन बोल्ड किया
0: 32 for 2 एंड द एक्सपीरियंस दीप्ति शर्मा कम्स इन. ऑल द ड्रामा हैज हैपेंड बिफोर दीप्ति शर्मा कम्स इन, दैट टेल्स यू. And the reverse sweep comes out from Tasman Brits. That will carry down to the boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: और 14 गेंदों के बाद ब्रिट्स के बल्ले से ये चौका निकला है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 7.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद. दीप्ति शर्मा छठे बॉलर के रूप में कप्तान हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ब्रिट्स तैयार हैं गेंदबाजी का सामना करने के लिए और उसे हल्का सा पुश किया और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने के लिए. हालांकि डायरेक्ट हिट लगी, हाथ उठाया जरूर गया था, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया क्योंकि बल्लेबाज अपनी छोर पर अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे.
0: शॉर्ट लेंथ दैट वाज पुल्ड अवे डाउन टू शॉर्ट फाइन लेग. हाफ हार्टेड वाज रिचर्ड घोष एज द थ्रो केम इन टू द स्ट्राइकर्स एंड डायरेक्ट हिट बट नो हार्म फॉर साउथ अफ्रीका. 5 कमिंग ऑफ द फर्स्ट टू डिलीवरीज. दीप्ति शर्मा वंस अगेन डाउन द लेग साइड टू मारिजान कप दिस टाइम who wants to play the sweep once again. So slow was the ball off the wicket that Kapp almost goes through with it and then the ball comes after that. In fact, takes the reverse of the bat on its way back. Deepti Sharma this time, Kapp, and once again that's miscued. Will go down to long off but not exactly as Kapp would have probably wanted to. The ball was in the air for a fair length of time.
1: मार्जन कैप ने हालांकि इसको उठाकर मारने की कोशिश करी थी लेकिन पूरी तरह नाकामयाब रही. गेंद दीप्ति शर्मा से थोड़ी सी दूर थी इसलिए वो उसे लपक नहीं पाई. अपने अगले बॉल के साथ खुद फील्ड किया. अच्छी गेंद बिल्कुल सी थी ताकि बैट्समैन को मौका ही ना मिल सके और इस समय साउथ अफ्रीका 38 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 7.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद अपने ओवर की आखिरी गेंद और उसे उठाकर मारने की कोशिश की गई. जी हाँ, छका दिया उन्होंने फील्डर को. हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलकर पीछे जाती हुई और पर्याप्त समय था 2 रन अपने बल्ले के साथ अपनी टीम के लिए जोड़ने का. ब्रिट्स को ब्रिट्स पहुंची 18 पर. कैप खेल रही है 2 पर और साउथ अफ्रीका 8 ओवर्स की समाप्ति पर 40 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 5 रन प्रति ओवर की औसत से गेंद बल्लेबाजी हो रही है

0: पर 9.92 रिक्वायर्ड रेंट बढ़कर पहुंचता हुआ.
1: Yeah, South Africa clearly realizing that they need to do something different because we saw twice an attempt in that over of Deepti Sharma to go for the reverse sweep. The required run rate is 9.92, which means that almost 10 and over. So even if they score at a 6 or 7 and over, this run rate will keep creeping up. And when it goes beyond 12 and over, it gets to be very, very difficult, even if you have some big batters. So South Africa from here on will certainly want to ensure they don't keep the run rate going up too much. The next first ball of a fresh over from Arundhati Reddy. A run that off stump, just a shade outside off, played into the covers, and a dot ball once again. This is excellent thinking by Harmanpreet Kaur, rotating the bowlers beautifully, realizing that South Africa under pressure, now bringing in Arundhati Reddy by way of pace.
0: Arundhati Reddy ne apna pehla over mein 9 run diye the aur apne dusre over ke sath achhi gendbazi kar rahi hain. Pehli over dot ball thi aur dusri gend jo thi usme ek run churaya, ball ko long on par field kiya gaya aur cap ke score pahuncha 3 par aur wickets khel rahi hain 18 par. Ek साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं दोनों बल्लेबाज, काफ़ी एक्सपीरियंस है दोनों के पास और साउथ अफ्रीका की नज़रें इन दोनों बल्लेबाजों पे होंगी ताकि इस गेम को, इस पार्टनरशिप को कुछ लंबा किया जाए.
1: Arundhati Reddy to Tasman Press from close to the stumps outside the off stump, driven into the covers, a little bit of a ricochet gives the opportunity for the batters to go across for a single, and that single will take South Africa up to 42 for 2. Now in terms of number of runs and balls, 117 needed of 69 deliveries. The equation is getting to be tougher now, close to 10.2 the required run rate for South Africa. As here is Arundhati Reddy, converted that into full toss, drilled down to wide long on. They go through for one, want a single, which is not there really. And they have to be content with just a single. Prema Rawat, the debutant, the fielder on that occasion. 116 needed from 68 deliveries. Now the last delivery from Arundhati Reddy, slower through the end, just 97 kilometers per hour, giving no pace on the ball at all to the batters. Here is Arundhati Reddy into Tasman Bint, this time shorter length, and just the one will result. That's played on the onside. They want a single, which is not there.
0: अभी तक इस ओवर में चार सिंगल्स आए हैं और श्री चन्नी ने जो अपने पहले दो ओवर किए थे उन्होंने दो रन देके दो विकेट्स जो अर्जित करी थी, उसका प्रेशर अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर दिखती हुई है. कैप ने अभी तक 10 रन, 4 रन बनाए हैं 10 गेंदे खेलने के बाद और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही हैं अगली बॉल और मारने की कोशिश, लेकिन फिर नाकामयाब रही. स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपने अपने छोर बदलने का. ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका पर का 45 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से.
1: 10.36, 10.4 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25. So these two have added 45 for the third wicket. So this is the biggest partnership so far. They've got to lick in these two, Kapp and Tasman Blitz. But they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now. So every over where you score less than 10 runs are over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat. That's played over the infield on the offside down to the extra cover boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: मैरिजन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था. थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया. इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी. ये दोनों में सक्षम है और इसका आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मैरिजन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करती हैं. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है 4 रन

0: आभा का चौका।
1: अंपायर की तरफ से इशारा है, as you can see at the boundary at backward square leg, and it was airborne for a fair length of time, and magnificent attempt there, but just eluding. Oh, that just took the fingertips and went over the boundary for a six. But one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So, but from South Africa's perspective, 10 runs in the first two overs. And this is what we were discussing. They'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is, that's once again down the leg side. And she says, was it that a wide? It is a wide.
2: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56 पर 2, 9.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए, और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए, भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए, और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने का, और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं, और इसमें एक वाइड है 57 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, 63 बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए। अगली गेंद आगे निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया।
1: 32 of 25 deliveries this partnership, so they're getting into a groove, a few overs like this, and you know, these two have the ability. Here's the last delivery of Prema Rawat, just a trifle short, that's been pulled away down to mid-wicket, halfway down to the boundary, and before the return can come, they're through for a single, and the three boundary riders are deep square leg, deep mid-wicket and long on, or on the onside. And should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there. As here is Prema Rawat, the last time in the over, wide of the off stump, waits for it, does by his hand cap, steers it down to the fielder inside the 30 yard. That is Deepthi Sharma, direct hit. Richa Ghosh goes up. Will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs, and at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159 for 2, 100 needed in the remaining 10.
2: 10 ओवर में 100 रन चाहिए, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में, और दोनों बल्लेबाज मैरिजोना कप 17 पर खेल रही हैं, और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है, और मैरिजोना कप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं, 59 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए हैं, नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चन्नी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट। नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, कवर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं। मार्जन कैप खेल रही है 18 पर। ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का, जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है। नंदनी शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर। एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी और उनको फील्ड किया गया, वापस थ्रो किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए। 61 पर स्कोर पहुंचा।
1: Yes, I got the feeling that she wanted to play it over long off, did Brits, and the ball came slower off the wicket.

0: that's why it went over the bowlers at in the air, but well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far. 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right to the block hold. Well bowled. Slower through the air. And Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richa Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball. Right to the block hold there. Very well bowled by Nandini Sharma. And she's happy with it. The wicketkeeper is happy with it. Just the two runs in the first three deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp. And this time, she wants to go through with this stroke. And once again, very, very well bowled. So this is getting to be a very good over. And Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
1: Score 61 par 61 run do khiladi ke nuksan par 10.4 over ki gendbazi ho chuki hai aur is over mein ek bahut hi ahem jo muqabla hai wo dekhne ko mil raha hai Marizan Kapp aur Nandini ke beech mein leg stump ke bahar usse scoop kiya long leg boundary ke bahar 4 run
2: ye laga abha ka chauka.
0: This time the experience, Marizan Kapp getting better of Nandini Sharma. Picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30-yard circle at fine leg. Well over her, soaring over her down to the fine leg boundary for 4. So 6 runs in this over so far. Remember, they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well? Kapp will lead the boundary. Last ball coming up, and Kapp sweeps it around the corner. Will she get it down to the back of square leg boundary? Will be cut off beautifully, and they go through for 2. So 8 runs in this over from Nandini Sharma, and 11 overs bowled. South Africa chasing 159.67 for 2.
1: 67 run do khiladi ke nuksan par. Marizan Kapp khel rahi hai 24 ke apne vyaktigat yog par aur Tasmin Brits खेल रही हैं 22 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट होने वाले दो खिलाड़ी लॉरा वॉलफार्ट 20 रन बनाकर आउट हुए थे और एनरी डक्सन ने स्कोरर्स को तकलीफ नहीं दी थी शून्य पर आउट होकर गई थी दोनों विकेट्स 25 के स्कोर पर गिनी थी और उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है करीब-करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहती थी ब्रिट्स नाकामयाब हुई गेंद उनके शरीर पर लगी कोई नुकसान नहीं कोई स्कोर नहीं स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए
0: डाउन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा हॉइस्ट इट हार्ड एन आई फॉर अ 6 ओवर द बॉलर्स हेड
2: ये लगा आभा का छक्का
1: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाकर जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा यह छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर अगली गेंद मारना चाहती थी और यह अपील आउट अंपायर की तरफ से इशारा आउट का लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या यह गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है
0: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट द अंपायर गिव हर आउट शी वेंट अप इमीडिएटली इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वाज डेड स्ट्रेट सो द ओनली थिंग इज शी फील शी इज गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट As the third umpire is having a good look at that, was there an inside edge? Onto that is what the third umpire will have a look at. And that will tell us whether there was bat onto that. And it does appear that probably there was bat onto that. And the umpire will have to reverse the decision.

0: very clearly, Aspen Brits knew that there was bat onto that and she got it spot on. 86 needed of 51. Six runs in three deliveries from Deepthi Sharma so far. And this is going to be a very interesting contest because now the South Africans will want to up it. It's around 10 runs and over. As we keep saying, they don't want to take it too high. Next delivery from Deepthi Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary. And they get a couple for that. Now, what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery. And good stop there, right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries. Marizan Cup getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole, drilled away down to long on. And they go through for one. With that single, 76 for 2, 83 needed of 49.
1: 11.5 overs ki jo gendbazi bharti hai, gendbazo ne kare, usme 76 run bane hai. 49 balon mein 83 run aur chahiye South Africa ko is match ko jeetne ke liye aur Bharat ko chahiye 8 wickets is match ko jeetne ke liye. Halanki is over mein ek appeal thi jise wapis kiya gaya agli gend. Halka sa push bhar kiya gaya. Long on par जमीमा के पास जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. मैरिजन कप खेल रही हैं 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर. 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है. इस 25 रनों में दो चौके और एक छक्का शामिल है और तस्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं. 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं. 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं. एक चौका और एक छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन. साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है और 10.25 की औसत चाहिए. अगली गेंद श्री चरनी की अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने. एक बार फिर से अपने जो मेन बॉलर है श्री चरनी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है. सिर्फ उनकी मंशा ये है कि विकेट हासिल करी जाए. अगली गेंद और उसको उठाकर मारा है और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे. गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई. एक अच्छी फील्डिंग का मुजहरा. राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी. दो रन चुराए बल्लेबाजों ने. एक अच्छा प्रयास जरूर था लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो. श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद सामने उनके मार्जन का और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन.
0: वेल टॉस अप बाय श्री चरनी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप.
1: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी और अगले ही गेंद पे उन्होंने चौका जड़ा जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात. और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर और साउथ अफ्रीका 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर. बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट. दो रन चुराए बल्लेबाजों ने. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छे से संभाल के रखा और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर.
0: दिस इज व्हाट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट वेरी वेल ड्रैग्ड इन by Tasman Brits over there. And now 85 for 2, 74 to 44. Last ball, penultimate ball of the over coming up down the leg side. That's been lofted over fine legs and down to the fine leg boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: मैडिसन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई, जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था, उसके बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन और श्रीलंका साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। शिचनी अपने ओवर की आखिरी गेंद और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर इस सिंगल के साथ और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को लपका नहीं गया और जीवनदान मिला मैरिसन कप को और मैरिसन कप ने उस जीवन दान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया। 2 चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए और स्कोर भर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
0: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका 65 कैप इज 38 टैस्पन ब्रिट्स इज 31 द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.9 ऑलमोस्ट Now, 7 overs remain. If these two stay there for another 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or 2 if possible over here because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Brits. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shree Chandni was expensive. She bowled so well in her first 2 overs. And in the last over, we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42. And one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in. This time to Marizan Cup, short in length and that's been hit away into the covers and that's well fielded by Deepti Sharma. No runs or dot ball. Every dot ball will matter. Every boundary will matter. And every good fielding effort will matter. Indians have said four to six runs already. Shefali Verma short in length and that's played past Midon. Inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Karp is 31. Brits is 31. Karp is 39. Partnership is 66. 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just 2 runs of 3 deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense because next 2 or 3 overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more air. Drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that punt. She's holding it back. And after quite 3 or 4 overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
1: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए। लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का हल्का सा मैरिसन कप की तरफ से किया गया, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, 2 चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने 2 चौके लगाए थे और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई। मैरिसन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर। शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास एक रन के लिए पर्याप्त समय था। 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार है साउथ अफ्रीका को। इस मैच को जीतने के लिए भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं।

0: अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शफाली वर्मा ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए हैं। नंदनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर, श्री चन्नी ने 3 ओवर किए हैं। प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं जो उनका पहला मैच है, और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं। टर्मिन ब्रिट्स और मैरिसन कप ने दोनों के बीच में ये चौथीवा अर्धशतकीय साझेदारी है। इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है।
1: सिक्स ओवर्स लेफ्ट नाउ इन दिस इनिंग्स एंड यू नो श्री चन्नी हैज गॉट वन ओवर लेफ्ट, शी विल डेफिनेटली बोल दैट। Shefali Verma has got one, she'll bowl that. Now, after that, 4 overs. Deepti Sharma has got 2 overs left, definitely she'll bowl that. So, what is interesting to see, the remaining 2 overs out of the 6, after Shefali bowls a 1 over, Sri Chandi bowls 1, Deepti bowls 2, 2 more will remain. And Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the 3 bowlers that we've seen apart from Shefali, Sri Chandi and Deepti, who will get the remaining 2 overs, may not be the debutant, Prema Rawat. She's been expensive. Can't blame her. It's her first game. It could probably be 2 overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining 6 overs could be bowled.
0: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए।
1: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर एंड एज वी हैव टू वेट एंड वॉच हु एक्चुअली स्टार्ट्स ऑफ द बॉलिंग ऑपरेशंस first for the first ball of a fresh over, but from India's perspective we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So 6 overs remaining now and 10.67 the required run rate, and this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl 1 over. She's got the ball in her hand, and South Africa now 95 for 2, required run rate 10.67 from here on. From close to the sums, full toss, that's been clobbered away, but there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid-wicket, just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one were to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win here, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for 4.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया, और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद। साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर, और दूसरे 50 रन हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए। इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफ़ी तेज हो रही है। अरुंधति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: बैड बॉल फ्रॉम Arundhati Reddy डाउन द लेग साइड, एंड ऑल दैट द बैटर हैड टू डू इज हेल्प इट ऑन इट्स वे, व्हिच शी डिड सो ब्यूटीफुली। मरिजन कप जस्ट लॉफ्टिंग इट नॉनचैलेंटली डाउन टू द फाइनल लेग बाउंड्री।

0: for four. Turning out to be expensive. This over from Aditya Thireddy. 54 of 32 now. 14.4 overs. 5 points to go after this. Partnership is now worth 80. And the required run rate just a touch over 10. 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. Aditya Thireddy. This time to Marizan Kapu, picks it up from outside the off stump and deposits it down to the mid-wicket boundary for four more.
1: ये लगा आभा का चौका
2: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा. 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया. इन 50 रनों में 6 चौके शामिल हैं और एक खूबसूरत छक्का इस ओवर में. अनुदिति रेड्डी के ओवर में, इस ओवर में अभी तक वो 3 चौके जमा चुकी हैं, 3 चौके आ चुके हैं और मैरिजन कप दिखाती हुई अपने बल्लेबाजी का जौहर और क्यों उन्हें विश्व का सर्वोत्तम ऑलराउंडर माना जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है. आज साउथ अफ्रीका के लिए एक अहम पारी खेलती हुई, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे हल्का सा पुश भर किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बड़ी मुस्तैदी से 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में. मैरिजन कप की ये 6वीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये 6वीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए जो रन रेट एकदम एक समय बढ़कर 10.9 तक चल गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है. यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए.
0: Yes, indeed. This partnership is now taking the match down to the wire. They are making a fight of it. 111 for 2. Kapp is 52. Tasman Brits is 37. This partnership 86. And that's come at a very good run rate as well, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Aditya Reddy was 16 runs. Very, very expensive. The most expensive of this inning so far. Deepti Sharma has the ball in hand. 48 of 30 needed. From outside the off stump, she wants a pummel, it does Brits. And the ball ricocheting on the onside for just a one. Should be leg byes. And the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma. Some thoughts being exchanged because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa manage to get a couple of more good overs, they can take it through. But if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her. Some readjustments being made in the field. One thing is get the field in place. The other is break the momentum. Remember, South Africa have got 2 good overs. So one way is to take your time and break the momentum. The momentum that's been developed now by Marizan Kapp and Tasman Brits. That's a good idea as well.
2: 112 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार. राउंड द स्टंप से ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ. डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर. 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं आंकड़ों के हिसाब से. अगली गेंद और बहुत तेज शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर 2 रनों में तब्दील किया जमीमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिजन कप ने अभी तक बनाई है। 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ। आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं, और इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। स्कोर 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.3 ओवर्स में 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए, और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके।
0: 44/27 comes down the wicket once again. The Tasman Brits drives it in a controlled manner to long on. 116 for two, fielded there by Jemima Rodrigues. And so this over so far, no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for two, 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket, and once again bowled very close to the tab lines. Have been driven, will be cut off by Shefali Verma. Wide of long off inside the boundary, they go through for a couple. So this is a good over, just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10. So can she end it well, Deepti Sharma? Not concede a boundary. A single or two will do, because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Madison Karp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for four.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: मैरिजन कप के बल्ले से ये निकला बेहतरीन शॉट कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन। फुल टॉस गेंद थी, न्योता दिया गया था मैरिजन कप को शॉट खेलने के लिए, और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की, और साथ में उनका साथ दे रही है ब्रिट्स, जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में, और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है। मैरिजन कप जो अभी तक खेल रही है 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। 155.26 की औसत से ये बल्लेबाजी करेंगे। 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मैच पर, जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है। अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए, और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए, ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए।
0: शी चंडी हैज गॉट वन ओवर, शी इज बॉल 3 for 15 विद टू विकेट्स, सो सर्टेनली शी विल बॉल वन ओवर। Four overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14, so she'll bowl one over. Those will be two overs for sure. Another two overs. Deepti Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of three. But she's got all the experience, and she bowls in at the death for India. So she'll probably get one. And then there's one over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy, and Prema Rawat. So Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Karp and Brits together 97 this partnership, close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for two now. Indians have also bowled in a disciplined manner so far, just the three extras, and of which two have been leg by, so just the one wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the one wide. India also so far in 16 overs, just the one wide ball. First ball of Shefali on Buzz over is lofted hard and high, taken there right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Tasman Brits goes. A crucial wicket एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन।
2: 97 रन की ये भागीदारी शेफाली वर्मा ने अपने हाथों से तोड़ी और

0: एक अच्छा कैच केयर लेग बाउंड्री के ऊपर और ब्रिट्स आउट होकर वापस जाती हुई 40 रन का उनका योगदान रहा इस 97 रन की जो भागीदारी थी। हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब रही और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्री चरनी द्वारा और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई। इन 40 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्री चरनी के हाथों कैच हुई। शिफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी। 122 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शिफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई और श्री चरनी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका और अब नए बल्लेबाज नादीन डी क्लार्क क्रीज पर जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं शिफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए। अच्छी गेंद एकदम यॉर्कर और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई बिना किसी स्कोर के बिना किसी नुकसान के।
1: राइट टू द ब्लॉक और शिफाली वर्मा शी स्टार्टेड वेरी वेल इनटू नादीन डी क्लार्क वंस अगेन अ गुड बॉल शी कैन ओनली टर्न इट राउंड द कॉर्नर। नादीन डी क्लार्क इन सच सिचुएशंस कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस बट शी इज नॉट बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग आफ्टर द बॉलिंग शी जस्ट फेल्ड टू डिलीवरीज बट बोथ दोज हैव बीन बोल्ड ब्यूटिफुली by Shefali Verma, the first one right in the block hold, the other one also almost close out there, not allowing Nadine de Klerk to get right under it. 16.3 overs, 123 for 3, 36 now needed of 21, the required run rate is 10.3 now, gone above 10 and over. Shefali Verma short in length, that's stalked over the bowler's head. That'll go one bounce to the side screen for four. The umpire having a look at that, she probably wants to see whether she's got the distance on that. Is it six or four? So we'll wait for the final decision of six runs.
2: ये लगा आभा का छक्का
0: और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 129 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कप एक बेहतरीन पारी खेलती हुई अगली बॉल और उसे उठाकर मारने की कोशिश और यह कैच छूट गया उनके हाथ से। हालांकि कोशिश जरूर करी गई थी लेकिन एक आसान सा कैच निकलता हुआ हाथ से आज फील्डिंग में वो जान वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देगी। ये एक सीधा कैच था रेगुलेशन कैच नाकामयाब रहे फील्डर और अगली गेंद उसे हल्का सा पुश भर किया कवर्स की तरफ कोई स्कोर नहीं मार्जन कैप 66 पर दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ और ये कितना कीमती साबित होगा इस मैच के कंटेस्ट को देखते हुए क्या साउथ अफ्रीका इस छूटे हुए कैच की बदौलत इस मैच को जीतेगी और क्या भारत वापसी करने की कोशिश करेगा। ये कैच आराम से उनके हाथ में आया था लेकिन छटक कर बाहर जाता हुआ।
1: Marzan cap dropped on 25 and 65 on both occasions by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. So a bit of an irony there. But the first one, I would say, was a very good effort by Radha Yadav. The second one certainly should have been taken. Shree Charni now, this time to cap, and cap has drilled it down to long after Shefali Verma for a run. This is going to be a very crucial over because Shree Charni has bowled so well prior to this, just 15 runs, you know, three overs and two wickets. So this will be a crucial over. 28 needed of 17. If they get good number of runs in this over, then they could push it through South Africa. Round the wicket now. Shree Charni. That's fetched from outside off and slower through the air. The bat went through first. The ball followed after that. And should be leg byes there as it ricochets down to the offside to point. Yes, leg by signal by the umpire. And Marzan Kapp is 67 or 41, 133 for three now. Two deliveries in his over gone. Charni from round the wicket. A touch short to land, then they'll go off for the peel. Richard Gales goes off for a stumping. We'll have to wait and watch. What's the final decision? No, I think very clearly the umpire says, no, I've got the verdict. And it's 26 of 15 needed then.
0: 133 team khiladi ke nuksan par Marzen cap 67 par khel rahi hai aur Nadeem Declark jo abhi abhi aayi hai unhone 5 gendon ka samna kiya hai abhi tak 1 run banaya puri tarah se chhakaya tha is ball par Shi Charni ne aur apne is over ki agli gend aur ise inside out mara hai covers boundary ke bahar 4 run ke liye
2: ye laga abha ka chauka.
1: Beautifully played, a boundary coming at a very crucial stage, inside out, over the infield, pummeled away, down to the cover boundary for four, and they get four runs at a crucial stage to the South Africans, 22 of 14 needed, Shi Charni to De Klerk now, this time she's bowled it, clean bowled, she was trying to play the scoop, fetch it from outside off, over fine leg, and the ball coming much slower off the wicket and going and disturbing the furniture. Once again, Shi Charni gets India a crucial wicket, and that's the dangerous Nadeem De Klerk. South Africa now 137 for 4.
0: 137 4 run, 4 khiladi ke out hone pe baad aur abhi abhi out hokar gayi hain Nadeem De Klerk jo use scoop marna chahti thi gend wicket to wicket kar di thi Shi Charni aur uska fayda unhe mila bold kiya gaya 7 gende kheli thi halanki pichli ball pe unhone behtareen cover drive mara tha inside out nikal kar 4 run ke liye lekin Shi Charni ne apni line ko seedha rakha wicket to wicket jo cricket ke basics hai usko follow kiya aur natija ek achhi wicket unke naam par aati hui ab Trent Chloe Trent wicket par aati hui agle ballebaz ke roop mein aur Marzen Cup ek chhor sambhale hue 67 ke apne score par 41 gendon unhone abhi tak kheli hain 13 ballon mein 22 run chahiye aur Shi Charni apne chauthe over ki aakhri gend ke sath bowling mark par aur samne Trent taiyar agli gend off stump ke bahar aur ek acha shot unke balle se nikalta hua cover boundary ke bahar 4 run.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Went outside the off stump for a change by Shi Charni and Chloe Trine rocking onto that back foot, punching it through that arc on the offside, through to the cover boundary for four. Once again, they managed to get a boundary of the last ball, a very crucial boundary in the context of the game. Now, two overs remaining and required run rate is under 10 back. It's 9 runs per over. What is needed is 18 of 12 deliveries. Now they will fancy themselves as well, the South Africans. Cap is on strike. She's 67 of 41. This will be a very important over. Shefali is done. Shi Charni is done. Deepti has got one over left. Deepti Sharma, in all probability, 18 of 12. Now Deepti Sharma has got loads and loads of experience in these kind of situations. In the death overs, she generally bowls. But I tell you what, at the other end is Marzen Cup, who's also got loads and loads of experience. And she knows how to hold her nerve in these kind of situations. She's firmly entrenched there, 67 of 41. And here is Deepti Sharma. From out of the stump, now this time it's pummeled away down to backward square leg, straight to Prema Rawat for a single, 17 of 11. India won't mind the singles. What they don't want is boundaries. From South Africa's perspective, couple of boundaries here and they'll be in the driver's seat. What India will want Deepti Sharma to do is, can she get two or three good balls here? Give just the one, maybe two, not the boundaries, not the over boundary. Deepti Sharma, this time Chloe Trine, that's a good ball, kept low after pitching, and she's pulled it away once again to Jemima Rodrigues. So just the two singles and two deliveries.
0: Deepti Sharma, apna pura ka pura jo experience hai unke paas, jo tajurba hai, wo usko jhokti hui aur koshish ye kar rahi hai ki is over mein koi loose ball na kari jaye, koi aisi ball na di jaye jisse aaram se koi stroke lage aur char run mile, aur unka sabse bada focus rahega Madison Cup. Ye gend aur use utha ke mara Madison Cup ne. सीमा रेखा के बाहर 6 रन.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: गिवन द बॉल अ लॉट ऑफ एयर इन द स्लॉट इन द आर्क इट वेंट आउट ऑफ द पार्क दैट्स व्हाट मैडिसन कैप से 67 मीटर बाउंड्री एंड आई टेल यू व्हाट वन ऑफ द फाइनेस्ट ओल्ड रनर्स विमेंस क्रिकेट हैज एवर सीन इज taking us South Africa within a couple of strokes of victory. 10 needed of 9. Couple of boundaries from here. 1-6 will take South Africa home. What an innings this has been by Marizan Kapp. 74. And that ball from Deepti Sharma, a lot of air. She fetched it in the slot as well, as I said. And hard and high, bent over mid-wicket for a 6. Now the Indians, a lot of discussions happening, because they know that this is within South Africa's grasp. 10 needed of 9. And Marizan Kapp is on strike, more importantly. Deepti Sharma to Marizan Kapp on the leg stump. She once again pummeled it. This time it will be cut off by Jemima Rodrigues on the mid-wicket boundary. So 9 needed of 8.
0: 150 run, 4 khiladi ke nuksan par, 18.4 overs ke baad. आखिरी 50 रन 26 गेंदों में साउथ अफ्रीका ने बनाए. पहले 50 56 गेंदों में, फिर 50 30 गेंदों में और आखिरी 50 26 गेंदों में बनाए हैं साउथ अफ्रीका में. और इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो मैडिसन कप का है, जो इस समय 75 रन पर खेल रही है 44 गेंदों का सामना करते हुए. दीप्ति शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद, ऑफ स्टंप पे बाहर उसको निकलकर लेग स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की, कामयाब हुई. एक रन चुनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अब सामना करेंगी मैडिसन कप इस ओवर की आखिरी गेंद का. 151 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को ग्रुप ए के इस तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए. लेग स्टंप के बाहर गए और उसे उठा के मारा है 6 रन. मैडिसन कप के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: Marizan Kapp, what an innings have you played over here? 81 not out of 45 deliveries and 7 fours, 4 sixes. What an innings in such a crucial game. Holds her nerve. That went soaring over mid-wicket for 6. And now South Africa, just 2 needed of the last over. And this must be South Africa's game without any doubt. 81 of 45. Marizan Kapp has played like a champion that she's been. And the South African dressing room now wears a very happy look. This was a crucial game for them. And boy, oh boy, have they now taken it to victory. On the doorstep of victory over here, literally. 2 of 6. This is South Africa's game for sure. Glory triumph. Will take strike to the first ball of the last over. And the first ball of the last over, that's been steered away to the vacant slip region. Might well carry down to the third mid boundary for 4. South Africa win. Laura Moussa is a happy captain. This is a magnificent win for South Africa. And South Africa have won this crucial game, beating India by 6 wickets at Old Trafford, Manchester. A magnificent victory in a crucial game in the ICC Women's T20 Cricket World Cup. So South Africa will win by 6 wickets. And please stay back for our sponsor special program, Player of the Match.
0: 158 रन, 7 खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने बनाए थे पहले अपने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए, और पीछा करते हुए 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर मैडिसन कप ने बनाए 81 रन और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये 2 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए.

0: और इसके साथ एक बेहद रोमांचक मुकाबले का हुआ है अंत। भारत को साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से मात दी है और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी राह खुली रखी है। मैं हूं मुदिता, मेरे साथ है मेरे को होस्ट मुनीश जॉली और एक्सपर्ट्स पैनल में हैं रविंदर सिंह, वैशाली माथुर और उत्तरा गणेशन। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मुनीश,
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और क्रिकेट इसी को कहते हैं, उलट पलट इधर उधर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है वैशाली, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आई नो यू आर अपसेट कि इंडिया हार गई, बट क्रिकेट यही है, दिलचस्प था मैच।
2: बिल्कुल, लेकिन फील्डिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुई है, बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई है। जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो कैचेस अगर हम ले लेते तो ये मैच हमारे नाम जरूर हो सकता था। लेकिन वही कहते हैं ना, डिफरेंस सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो फील्डिंग करता है। साउथ अफ्रीका की अगर हम फील्डिंग की बात करें तो वो लाख गुना बेटर थी एज कम्पेयर टू आर फील्डिंग।
1: आपको लगता है कि उत्तरा, यू नो, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री वंस अगेन, वी थॉट दैट इट्स गोना बी एन इजी मील फॉर द इंडियन प्लेयर्स वंस दे गॉट द फर्स्ट 2 विकेट्स, बट देन द वे साउथ अफ्रीका केम बैक, इट्स दैट रिदम दैट दे आर इन, यू नो।
3: Exactly, and like we spoke, उनका इस टूर्नामेंट में अभी तक पहले दो मैच में the middle order was not doing really well, but like I said, India should take someone like a Cap or a Nadine de Klerk at their own risk to take them lightly, and Marizanne Cap today proved why she is considered not just dangerous but also one of the most respected players over the years. The way she handled the innings, the way she managed to keep the runs coming despite the fact ke dusre end pe wickets gir rahe the, and it didn't look like Cap was bothered with what was happening. Chahe unke baki players out ho rahe the, chahe Indian team ko success mil rahi thi, catches drop ho rahe the ya catches liye ja rahe the, Marizanne Cap was playing her own game and she was in a zone. Jaisa sports mein aksar kaha jata hai ki aap zone mein hote ho apne, aur us waqt fir aapko wahan se hilana kisi ke liye bhi possible nahi hota, and it looked like Marizanne Cap was in her own zone. She was playing her own game and she was completely unbothered by whatever was happening around her, and we saw the difference that it made to the final scoreline.
0: Yes, we have seen the difference. Ravinder, Marizanne Cap का अनुभव तो आज काम आया ही, लेकिन ताजमन ब्रिज की साउथ अफ्रीकन टीम में वापसी वो भी एक बड़ा निर्णायक डिसीजन साबित हुआ है आज के मैच का।
4: बिल्कुल, देखिए ये तो कहते हैं क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का हो गया। पहले सब लॉरा डैक्सन और क्लर्क की बारे बारे कर रहे थे जिन्होंने पहले रन किए, लेकिन ये दोनों तो, इन दोनों पर किसी का ध्यान ही नहीं था और इन दोनों ने पूरे मैच को पलट के दिखा दिया। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम खुद जिम्मेदार है। पहले तो 160 रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरह 2 विकेट्स ली इन्होंने पावर प्ले में, मैच में वापस आ गए। 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे इनको, लेकिन सही कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कहीं प्रेशर में आ रहे हैं या मैच हमारे हाथ में आ रहा है। हमारे हाथ से बल्कि मैच हर ओवर में निकलता ही जा रहा था, और 6-7 ओवर तक तो वो लोग 10-10 रन के आराम से रन रेट उन्होंने मेंटेन कर रखी थी। और जिस प्रोफेशनल तरीके से कैप ने जो बैटिंग करी है, और खासकर जो कैचेस, जो 2-3 कैचेस छोड़े हैं, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है जब राधा यादव जब इंजर्ड थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर था जो बता रहे हैं, वो उसके बाद उसको फील्डिंग करने भेजा जा रहा है, जो कैच ही नहीं पकड़ पा रही, जब इतनी मोटी उन्होंने बैंडेज लगा रखी है। तो और 4 फील्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, कोचिज में 3 फील्डर्स क्या कर रहे थे, कोचिज उनको भेजना चाहिए था, जो अनफिट प्लेयर है जो फील्ड नहीं कर सकता कैसे कैच पकड़ेगा उसको। बहुत ही निराशाजनक ये हार लग रही
1: है। I think सबके मन में सवाल है कि कौन है प्लेयर ऑफ द मैच, आइए जानते हैं।
5: इंडियन इंटरनेशनल वेद कृष्णमूर्ति 2 for 27 in 4 overs and an outstanding 81 not out of 45 deliveries, 7 fours and 4 mighty sixes. Congratulations Marizanne, what are your immediate emotions?
6: Oh, first of all, thank you Jesus Christ. That wasn't me. It was a tough game. Playing India is always extremely tough, and I'm very proud of the team for coming back this game the way we did.
5: I have no doubt Laura's going to talk about the team. I know you don't like the limelight, but I'm going to have to put the spotlight on you. You came in with the team in early trouble, a very challenging power play. What was your approach as you came in?
6: Oh, I was just praying, to be honest. No, I seem to do a little bit better when I'm in earlier. I struggled, really struggled those first 10-15 balls, and eventually got my timing and then you know, just put my head down and I felt like that partnership with Tez set it up beautifully for us.
3: Yeah, I was going to talk about that partnership because you had to do some hard work, didn't you? Hit the ball hard, run those ones, turn ones into twos. At one stage, did you think, what am I doing and how am I getting across the line? Because it was tough out there.
6: Yeah, look, we said it's a tough place to bat, actually, because you can't let it get away from you too far, but you can also not lose more wickets. So we just said if we don't let it go past 10 runs and over, we'll definitely, we've got the big hitters back end that can clear the boundary. And yeah, we just put our heads down, and as soon as we look to be a bit more positive, it works for us.
3: Let's go to the bowling effort. India came out guns blazing. How tough was it to absorb the pressure in those opening overs?
6: Yeah, we know they always do, especially this wicket. It was a little bit flat with the ball. You're always nervous when you come up against an Indian team. I mean, they've got some wonderful players, but I feel like the way we brought it back, that probably saved us today.
3: Must-win game today, and it's a hard pressure environment. It almost felt like a home game for India. How did you keep your calm out there?
6: Again, just by praying, but I seem to like the Indian fans. It feels like they're shouting my name, so don't mind the crowd too much.
3: Congratulations, our player of the match today, Marizan Kapp.
6: Thank you.
1: Marizan Kapp, वहाँ पे बनी है player of the match, और क्यों नहीं, 81 बनाए 45 बॉलों में और 7 चौके और साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो 52 रन की जो उन्होंने 51 रन की पारी में से 52 रन जो थे वो बड़े शॉट्स के साथ थे. एंड शी केप्ट ऑन सेइंग वैशाली थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट. स्पिरिचुअल लग रही हैं थोड़ा सा, ज़्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं स्पिरिचुअल.
2: वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गेम खेलते हैं एंड आपकी फैमिली कैसा बैकग्राउंड है. एंड उसके साथ मैं ये और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका का आप बैटिंग लाइनअप तो देखा ही है हमने, उसके साथ उनकी जितनी बॉल्स उन्होंने खेली है उससे ज़्यादा उनकी स्कोर्स है, आप ये देखिए. और हम वही अगर हम इंडिया टीम की बात करें, एक शेफाली वर्मा को छोड़ के जितनी बॉल्स उन्होंने खेली उससे उसी के अराउंड में उनके रन्स हैं. तो ये एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता वो यही डिफरेंस है.
7: जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है. उतरा लॉरा और डर्क सिंह के आउट होने के बाद टास्मन ब्रेड्स और कैप ने जिस तरह संभाला पारी को, भारतीय मिडिल ऑर्डर वो नहीं कर पाया. क्या वही सबसे बड़ा फ़र्क था आज दोनों टीम्स के बीच में?
3: मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वो स्मार्टर, दे प्लेड अ मच स्मार्टर गेम आउट देयर. दोनों इनिंग्स में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तब भी उनको बहुत क्लियरली पता था कि किस एरियाज को टारगेट करना है, किस प्लेयर्स को टारगेट करना है और क्या गेम खेलनी है. हमने टॉस के टाइम पे भी सुना, बहुत क्लियर थे कि तास्मिन ब्रिड्स क्यों टीम में वापस आई हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की स्ट्रेंथ इनकी स्पिन बॉलिंग है एंड उनको ऐसा एक सीनियर प्लेयर चाहिए था जो स्पिन अच्छा खेल सके. तो उनको बहुत क्लियरली वो पूरा होमवर्क करके आए थे किन प्लेयर्स को टारगेट करना है. उन्हें ये पता था कि अगर इंडियन टीम में अगर हम स्मृति को छोड़ दें तो ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा क्रैम्प करेंगे रन्स के लिए तो वो फ्रस्ट्रेट होके बड़ा शॉट खेलने जाएंगे. वो नहीं, पेशेंस लेवल नहीं है उतना कि आप बैठें, बॉलिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, टाइम लें. T20 हालांकि बहुत छोटा फॉर्मेट है लेकिन टाइम इसमें भी होता है अपने आप को सेटल करने का. लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर आप उनको नहीं देंगे, डॉट बॉल्स देंगे, तो वो जाएंगे बड़े शॉट के लिए, जो हुआ. और हमने देखा कि वो नहीं खेल पाए उस तरह से. जब वो बैटिंग करने आए तो उनको बहुत क्लियर था, एक तो टास्मिन ब्रिड्स को उन्होंने इंक्लूड किया, वो हमने डिफरेंस देखा उन्होंने उनकी और कैप की जो पार्टनरशिप थी. उसके बाद हर एक ओवर में जैसा कि कैप ने बोला कि बहुत क्लियर थे कि हमको 10 से ऊपर नहीं जाने देना है रिक्वायर्ड रन रेट किसी भी हाल में. अगर आपके एक ओवर में रन नहीं आते हैं तो आप अगले में दो चौके मार के उसको बराबर कर दो, बट 10 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे टारगेट. तो चाहे वो पहला ओवर हो या दूसरा हो या दसवां ओवर हो, उनकी स्ट्रेटेजी पूरे 40 ओवर के लिए बहुत क्लियर थी, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम लैक कर गई बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से हो, चाहे वो किस तरह की बॉल किस प्लेयर को करानी है उस पर हो। तो मुझे लगता है वही डिफरेंस था कि आपकी प्लानिंग, होमवर्क और स्मार्ट प्ले कितना ज़्यादा है, और वो साउथ अफ्रीका का हमसे बहुत बेटर था।
1: राइट देन, आप सुन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, रविंद्र सिंह हैं, वैशाली माथुर हैं, उथरा गणेशन हैं। रविंद्र सिंह जी, मुझे ना कुछ साल पीछे जाने का मन कर रहा है, पन्ने पलट रहा हूँ कुछ। 1983 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पे हुआ था 22 जून को, आज 21 जून है। चेज करके भारत ने वो मैच जीता था। बहुत सारी बातें आज भी हम कर सकते हैं, टॉस जीत के आपने चेज क्यों नहीं किया, जब एक ट्रेडिशन है ओल्ड ट्राफर्ड में। बहुत सारी बातें और हम जानना भी चाहेंगे, श्रीलंका पाटिल नहीं है, क्या वो एक वजह थी, राधा आई उनका इंजर्ड था हाथ। अब जब हम बात करते हैं प्रेमा रावत की, वो ज़्यादा ओवर क्यों नहीं डाल पाई, लेकिन आपको क्या लगा जब 159 टारगेट दिया गया और हमने पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा दी, तब आप क्या सोच रहे थे और अब क्या हुआ?
4: देखिए, हारने के बाद बहुत कारण बन जाते हैं। अब अगर वही यही टीम इंडिया जीत रही होती तो सब कुछ अच्छा हो चुका होता। श्री चन्नी ने अच्छे 2 विकेट निकाल दिए, वो तीन प्लेयर थे वो कंसिस्टेंट चल नहीं रहे थे, उन तीनों को आपने आउट भी कर लिया, लेकिन ये 2 प्लेयर निकल के आ गए। देखिए, स्टार्टिंग से अब शुरू करेंगे तो पहली तो टॉस के बाद सबको लगा ही था कि शायद चेज करना चाहिए था, क्योंकि इस ग्राउंड में चेज हमेशा अच्छा होता है। चलिए, आपने बैटिंग करी, 160 रन बनाए, लेकिन फिर आप वापस आ गए गेम में। 5 ओवर के बाद आप गेम में वापस आ गए। मुझे जो लगता है टर्निंग पॉइंट इसका सिर्फ राधा यादव के जो कैचेस थे, जो वो अंदर फील्डिंग करने गई और उसको भेजने का, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट है जिसने राधा को भेजा अंदर, जबकि उनके हाथ में बैंडेज था, कैच वो कैसे पकड़ पाएंगे मुझे लगता नहीं, ग्रिप कर पाएंगी। उसके बदले अगर कोई और फील्डर होता तो मुझे लगता है डिफरेंट मैच होता। मैच इंडिया ने अपने हाथ में कर भी लिया था, जो भी जैसे भी जब बैट्समैन के कुछ भी 160 रन में मैच आ सकता था, लेकिन सिर्फ फील्डिंग की और कैचेस की वजह से ये मैच निकले।
1: और हम अपने श्रोताओं को बहुत जल्दी से बताना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के लिए ये T20 क्रिकेट में उनकी बेस्ट चेज थी और एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और खास तौर से जब हम T20 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो T20 के इतिहास में ये तीसरी सबसे सफल चेज थी 159 रनों की।
7: जी बिल्कुल, और ये पहली बार था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे। वैशाली, अभी हम बात कर रहे थे पावर प्ले के में जो चरणी ने जो ब्रेक थ्रू दिलाया, हमें छठे ओवर में 2 विकेट थे हमारे पास, गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के, 25 पर था स्कोर, लेकिन बाद में भारतीय टीम उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। कहाँ गलती हुई बाकी बॉलर्स से?
2: श्री चरणी ने काफ़ी बेटर बॉलिंग करी और बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन उसके बाद जब प्रेमा आई थी वहाँ पर प्रेमा ने भी एक कैच उठवाया था कैप का, एंड वहाँ पर नंदिनी शर्मा ने एक कैच ड्रॉप करी थी जो इजीली हो सकती है इस, अगर आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं तो ये कैचेस आप ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैचेस नहीं होंगी तो आप विन कैसे करोगे मैचेस के लिए? एंड उसके बाद जैसा सर ने बोला कि राधा यादव की कैचेस 2 ड्रॉप हुई, उन्होंने जो ड्रॉप करी हैं कैचेस, अगर उन्होंने एक ड्रॉप कर दी तो उनको सामने नहीं लगाना चाहिए था, उनको कहीं और यूज करके वहां उनकी जगह पे किसी और फील्डर को यूज करना चाहिए।
1: मैं आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा, इससे पहले कि कप्तान के जो हम व्यूज हैं वो सुने, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि चोट लगी एक प्लेयर को, फ्रैक्चर्ड हाथ, और फिर आपने एक बहुत टफ एक प्लेस दे दी उनको कि आप यहां फील्डिंग कीजिए?
2: ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते।
1: चलिए, अब समझ आ रहा है कि हरमनप्रीत कौर तैयार हैं अपने व्यूज शेयर करने के लिए।
8: Pretty much all the way through. Well, I think we got a couple of chances in between, but unfortunately we didn't able to take those chances. But I think still we have 2 matches to go, and this is the time to stay positive and think about those matches.
9: At the halfway stage, should you back yourselves, especially with the spinners that you have?
8: Yeah, definitely. I think Shree Chani and Shefali bowled really well. They were creating chances, but unfortunately other bowler didn't support them.
9: It's hard to pinpoint 1 or 2 moments, but I guess that old cliche comes into play in a situation like this that catches when you matches.
8: Yeah, definitely. I think we always talk about, you know, we have to take opportunities at this level, but unfortunately we were not lucky enough today, but I think still we have another 2 games, and now this is the time to think about those games.
9: Someone who's had so much experience, how do you try and pick your side up now for the next match?
8: The next match, I think still we have 2 2-3 more days, and we'll sit and rethink what we have to do, and accordingly we'll pick the 11s.
9: And just a word on the opposition and the way Marizanne Kapp came out there in that second innings. I mean, she looked fiercely determined.
8: Yeah, she was brilliant today. She took the game away from us, but again, I think she gave us two crucial chances, but unfortunately we didn't take that. But I think at this level, when you miss those chances, nobody's going to, you know, give you anything easily. And I think those were the crucial moment, and they took the game away from us.
9: You used your spinners a lot in that second innings. Did you feel like that was going to be the key on this wicket?
8: Yeah, definitely. If you are bowling, you know, spin, a ball was a little bit turning. If you, you know, you use your fingers really well. And I think Shefali and Shrishani did really well. And other spinners need to think about, like, how we have to bowl, especially on these kind of wickets.
9: Away from the team performance, a milestone moment for you today, 200 T20 internationals. You've seen everything this game has to offer. Just talk us through, you know, how women's cricket has progressed over that time. And I know you're finding yourself in a situation here where you have to think about being in the World Cup, but, you know, what have you learned from being able to play this game?
8: A lot of learning, a lot of, you know, positive moments, a lot of these kind of moments where, you know, I have to stay strong and stay positive and keep thinking about the game. This is what game has taught me, and I think this is now this is the time to stay positive and keep thinking what, you know, need to do in the upcoming games. And I think this is the time for me to, you know, talk to my teammates, give them strength, give them positive talks, and hopefully, you know, we'll come up as a group really well in the next two games.
9: Well, you've bounced back before. All the best in that next match.
8: Thank you.
9: Harmanpreet Kaur, the India captain, as I can bring in Laura Wolfart, runner-up of the 50-over World Cup. I remember speaking to you post-match, and, you know, there was absolute devastation on the back of that. You finally get to avenge that defeat. Just how is your heart at the moment?
10: Yeah, what a finish, what a game. I think we were very stressed up on the bench there. I think to win from the position that we were in was absolutely incredible, and it's probably one of the best knocks I've seen under so much pressure. And to do it against the side that we lost the final to as well is pretty special.
9: She just seemed so fiercely determined out there today, Marizanne Kapp, her ninth edition of the T20 World Cup. She did not want to give India an inch, but there was a bit of luck there on the way. How was your heart after those moments? And just talk us through Marizanne Kapp as a competitor.
10: Yeah, I think she's probably the biggest big match player that I've ever seen. I'm really glad she's on my team. It seems like whenever there's something on the line or we're playing a World Cup, she finds a way to bring out her best cricket. Actually, I think she wasn't actually feeling that great today, but I hope she doesn't feel great every day if she's going to play like this. So it was absolutely incredible. I think she's two players in one. The way that she bowled as well was awesome. The way that she bowled in the previous game, and now to play a knock like this is incredible. She just has that competitive nature, I guess, and it just brings out the best in her.
9: Spin has been a challenge for your team in the last couple of games here in this World Cup. What was talked about in terms of your approach, especially after that power play where it looked quite difficult?
10: Yeah, didn't get off to the best start. I think we would have liked to get ahead of it a bit early. But yeah, I think in a game like this, we actually wanted to get ahead of the rate early because we knew the slow spin would be difficult later. We left a bit too much to do for the back end, but took something special to get it done, thankfully. But I think we can definitely be a bit better, just even if it's not there in the power play, just getting off strike.
9: And when it came to that first innings, you were able to restrict India, because every time they looked to get going and push that 170 plus mark, you were able to get back into the match. How proud are you of the way the bowlers rallied and everyone contributed?
10: Yeah, that was huge. I think after that power play, they got 50-odd. It looked like they were absolutely flying. I think the way that they started, the first two overs, they pretty much smashed. So to be able to come back like that, I think our bowlers in the middle were excellent. Used our change up pretty well. And I think we just didn't leave the stumps and didn't give them much to work with, and we're able to keep the big hitters quiet at the end there, which was pretty big too. So I think if you told us 160, we definitely would have taken it pre-match, but yeah, happy we got over the line.
9: And just lastly, what does a win like this do for the confidence of the side for the rest of the tournament?
10: Yeah, it's huge. I think if we lose this game, we're almost out of the competition, so just to be able to stay in it, got two more big games, and yeah, a couple of other things could still go wrong, but I think just knowing that we've got this one behind us, it was probably one of the big games leading into this tournament for us.
9: Well done once again, and all the best in your next match.
1: सो यहाँ पे हमने दोनों कप्तानों को सुना, दो अलग अलग भाव, और आज शायद हरमनप्रीत कौर अपना 200वां T20 इंटरनेशनल जो खेल रही थी शायद जीत के साथ दर्ज करना चाह रही होंगी, लेकिन 45 बॉलों में 81 रन बना के मारिजन कैप प्लेयर ऑफ द मैच बनी। लेकिन साथ ही साथ तजमीन ब्रिज को भी नहीं भूलना चाहिए, 36 गेंदों में 40 नाबाद और वो 97 रनों की जो साझेदारी हुई। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस हार के बावजूद भारतीय महिला टीम अपने पूल में दूसरे स्थान पर ही है, क्योंकि भारत का NRR यानी नेट रन रेट प्लस 2.511 है और साउथ अफ्रीका ये जीती जरूर है 4 पॉइंट्स के साथ, लेकिन नंबर 3 पर है क्योंकि उनका नेट रन रेट है -0.546। बांग्लादेश है चौथे स्थान पर और इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश तीनों के पास 4 पॉइंट्स है, लेकिन सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस 3 जीत 6 पॉइंट्स के साथ। मेरा नाम है मुनीश जौली, मुदिता मेरे साथ हैं मौजूद। मुदिता, थोड़ा सा अपसेट तो हम भी हैं लेकिन एक बहुत अच्छा मुकाबला हमने देखा।
7: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला देखा, तो बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है। और अगर आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, नंबर्स हैं 2342-1083 और 2342-1085। इनके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूलें। वैशाली, आज जो है श्रेयंका पाटिल की कमी क्या भारतीय टीम को खली आज?
2: जी बिल्कुल, मैं थोड़ी बहुत तो खली होगी क्योंकि उसके अलावा हमें लगता है कि जो हमारे श्रेयंका पाटिल, अगर आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप पॉइंट स्ट्रॉन्ग उतना ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में आपके पास उनका बैकअप नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहना भी गलत है कि उनकी कमी खल गई, ऐसा हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था जिसमें प्रतिकल रावल भी ऐसे ही उनको इंजरी हुई थी एंड उनकी जगह पे शेफाली वर्मा आई थी एंड वहाँ पे वो जो बैकअप था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसी तरीके का बैकअप ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो बैकअप ढूंढा है। प्रेमा ने बॉलिंग बहुत बुरी नहीं करी है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है और उसके साथ उन्होंने कैचेस भी बैटर को चांसेस देने का बहुत मौका दिया है कि वो उनको कैचेस मिले, लेकिन वो ग्रैब इंडिया टीम के फील्डर्स ने नहीं किया है। ये सबसे एक निराशाजनक चीज़ हमने जो देखी है, ये गलत है तरीके से ये देखा गया है कि यहाँ पर फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है हमने। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, जो हमारी दीप्ति शर्मा का इतना 15 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस ले एज अ प्लेयर उनके पास है, तो उन्होंने उस तरह की वो बॉल डाली नहीं आज, जैसे उन्होंने फर्स्ट मैच में डाला था जो 5 विकेट अपने नाम की थी, उस तरह का बॉलिंग आज दिखा नहीं दी थी शर्मा की तरफ से।
1: आई थिंक उस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आपने बैकअप की बात की ना, मेरे पास दो बैकअप हैं।
2: जी।
1: एक तो ये कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से भारत ग्रुप गेम्स में हारा था फिर फाइनल में जीता था, पहला बैकअप। दूसरा हमारे कॉलर्स हैं, दूसरे बैकअप उनके पास चलते हैं। हेलो, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, जी वो लोग सुन रहे हैं आपको, पूछिए।

0: पे हम बहुत डिस्कशन देते हैं कि फील्डिंग बहुत जबरदस्त है, ठीक है जबरदस्त है, बट जो जो फ्रंट लाइन मैचेस रहते हैं तो हम उस पर अमल कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं।
1: ये हमारे बैकअप थे, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज गॉट एन आइडिया। रविंदर जी आप आंसर करना चाहेंगे? सबसे पहले कह रहे हैं स्मृति अगर आउट हो जाए पहले तो पूरी टीम आउट हो जाएगी क्या?
2: देखिए बैकअप आपके पास कुछ भी नहीं है, 15 की टीम आपकी पास गई है, उसके बाद जो बाहर बैठे हुए आप देखिए कौन कौन है, क्रांति गौड़ बाहर बैठी हुई है, राधा यारा बाहर बैठी हुई है और रेनको सिंह भी बाहर बैठी, तीनों फास्ट मीडियम पेसर्स हैं। आपके पास बैट्समैन की कोई भी एक तरह का, अगर एक भी बैट्समैन नहीं फ्लॉप होता तो आपको बाहर से लाना पड़ता है, यही हाल उसका हुआ। तीनों आपका कोई बैकअप नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, वर्ल्ड कप में भी बताया उन्होंने, जब भी हमारे पास 15 में से बाहर के प्लेयर को लेके हमें लेके आना पड़ता है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि अगर एक भी बैट्समैन फेल होता है उसके बाद दूसरा बैट्समैन कौन आएगा, आप लेके चलते हैं कि ये हमारे ये हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही खेलेंगे चाहे वो कुछ भी परफॉर्म करे, तो ये तो राम भरोसा चल रहा है आपका। और अगर आपको यही इसी चक्कर में राधा यादव जो इंजर्ड है फिर भी आप उसको फील्डिंग कराने के लिए भेज लीजिए, बड़ा हैरानी की बात लगी
1: मुझे तो, लग रहा है कि राधा यादव का नंबर लेके ना मुझे पाजी को देना चाहिए। और ये पाजी आपके नहीं, मेरे ख्याल से सभी के मन में ये सवाल है। एंड दी कॉलर ऑफ कोर्स उत्तरा जस्ट आस्क्ड यू नो द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, दे सेड दैट यू नो यू कंपेयरिंग विद साउथ अफ्रीका बट वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज वन ऑफ द मोस्ट प्रो साइड्स इन द वर्ल्ड नाउ, वेदर इट्स वुमेन और मेन क्रिकेट बोथ। यू थिंक दैट वॉज वन ऑफ द मेजर फ्लॉज, समबडी हु इज इंजर्ड हर फिंगर एंड यू गेट हर इन and you place her at the most crucial places?
3: I think the key word is we consider ourselves to be pro. There's a thin line between considering yourself something and actually being something. And consider karna bahut aasan hota hai. होना आपको ग्राउंड पे ही दिखाना पड़ता है, वो बाहर से बात करके नहीं होता है। ऑन पेपर स्मृति हर मैच में सेंचुरी मार सकती है, ऑन पेपर हरमनप्रीत हर मैच जीत सकती है, बट आपको वो चीज़ वहाँ पे करनी पड़ती है। और जैसा सर ने कहा आई कम्प्लीटली एग्री, एक 15 या 16 का जब स्क्वाड अनाउंस होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर आपके जो प्लेइंग पहले 11 हैं उनमें से आपको चेंज करना पड़े किसी भी वजह से, चाहे वो कंडीशंस की वजह से हो या इंजरी की वजह से हो या ऑपोजिशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन देखना हो, तो जो बाकी के 4 या 5 हैं रिजर्व में आपके, उनमें से आप उनमें से आप खिला सकें। अगर आपको हर इंजरी पे एक बाहर बैठा हुआ प्लेयर या किसी को फ्लाई इन कराना पड़े या हेलीकॉप्टर इन कराना पड़े, तो जो आपकी साथ में रिजर्व जा रही है वो किस लिए जा रही है? आई एम श्योर वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आप 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं टीम में।
1: बट यू नो वॉट आई एम सॉरी बट यहाँ मुदिता ने एक सवाल पूछना है। मुदिता मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि यू नो ये तो सब हल्की बातें हो रही है, टफ बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि राधा यादव के लिए उसके करियर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा कि आप एक फ्रैक्चर्ड फिंगर लेके खेल रहे हो और कोई ऐसा शॉट आ जाए आप उसको और इंजर कर दो अपनी फिंगर को, स्पेशली जब आपने श्रृंखला पाटिल को खो दिया तो वो और घातक हो जाएगा भारतीय टीम के?
4: बिल्कुल, और राधा यादव जैसी फील्डर, शी इज एन एक्सलेंट फील्डर, हमने कई मैचेस में उनका प्रदर्शन देखा है, कई बार वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आई हैं फील्ड पर और बहुत शानदार फील्डिंग उन्होंने करके दिखाई है। पर हाँ, फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ हम किसी खिलाड़ी को अगर ग्राउंड पर खड़ा कर रहे हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो कैचेस ले लेगा या बॉल्स रोक लेगा, तो ये शायद उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय है। अगले खिलाड़ी पे हम आना चाहेंगे वैशाली, शेफाली वर्मा, आज पहला ओवर उनसे कराया गया है और अब काफ़ी तौर पर यह साफ हो गया है कि शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है, जो एक छठे बॉल की कमी खलती थी उन्होंने वो गैप भी भर दिया है, एंड सिंस इट हैज़ गिवन इंडिया एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन एंड हेंस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम सिलेक्शन ऑल्सो।
5: ऑफकोर्स, लेकिन शेफाली वर्मा की अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हो ना, तो उसमें आपको मैं बताऊं, 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने 11 डॉट बॉल दिए हैं जिसमें प्लेड हुई हैं वो सिर्फ, एंड उसके साथ जो मेन हमारा बॉलर है दीप्ति शर्मा, उनकी 5 ही बॉलें डॉट हुई हैं। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है, आप एज अ पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं और मेन आप ओपनर बैठे हैं और आप मेन एज अ ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं टीम में, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉलिंग एक्शन एंड बॉलिंग डॉट्स में भी। तो वो चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेन बॉलर इतना कम डॉट बॉल करा के और वो आप मैच जिताने की तरफ लेके जा सकते हैं।
1: इसी बात पे मैं थोड़ा सा और ऐड करवाना चाहूँगा बहुत जल्दी से, और उसके बाद दीप्ति शर्मा की जो फील्ड आप देखते हैं ऑन साइड में, आपने तीन प्लेयर्स लिए, आप ब्लॉक कर रहे हो ऑन साइड बाउंड्री रविंद्र पाजी, उसके बाद बॉल आप लेग पर ही डाल रहे हो और सेट बैट्समैन को, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है।
2: देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि जैसे नंदिनी बॉल कर रही थी दो, एक डीप मिड विकेट और डीप स्केल लेके बॉल कर रहे हो तो आपके पास दोनों प्रोटेक्शन ऑन साइड में है, तो आपको मजबूरन मिड विकेट मिडिल और लेग में बॉल करना पड़ेगा, जो कि वही हुआ, बिलोरा ने उनको छक्का भी मारा। एक स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए इनको कि प्रॉपर तरीके से आप लेग साइड के दो लेके आप डिफेंस, आप पहले ओवर से डिफेंसिव हो चुके हो, आपको पहला काम है विकेट्स लेना, विकेट्स लेके आप अटैक कर सकते हो। वही हुआ शेरचंदी ने आके दो विकेट लिए तभी आप मैच में वापस आए, लेकिन जिस तरह से आप डिफेंसिव बॉलिंग शुरू करोगे तो उसमें तो आप पहले ओवर से मैच उनको देखे उनको लूज खेल रहे थे, उनको कोई प्रेशर ही नहीं था। अगर वो चरनी के दो विकेट्स नहीं होते तो आप तो मैच 17 ओवर में हार चुके होते जी अगर ये बैटिंग कर रहे होते।
4: उत्तरा पावर प्ले बॉलिंग में इश्यूज हैं ये साफ दिख रहा है हमको। अगले दो मैचेस जो है, पहला बांग्लादेश से 25 तारीख को और उसके बाद 28 जून को जो कहना चाहिए कि हमारे लिए नॉकआउट मैच साबित हो सकता है वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्या इतने इश्यूज लेकर के हम उन मैचेस से जीतने की उम्मीद कर पाएंगे?
3: कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है बल्कि बांग्लादेश के साथ है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बांग्लादेश हल्की टीम है या हम उनके साथ जीत सकते हैं या इजी रहेगा, बट साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले शायद थोड़ा सा प्रेशर इंडिया पे कम रहेगा, इसलिए भी क्योंकि उनको पता है कि वो जो एक बहुत ही थिन मार्जिन होता है जो नेट रन रेट का आता है जिसपे फाइनली चीज़ें अटक सकती हैं, वो अभी भी उनके फेवर में ही चल रहा है इंडिया के डिस्पाइट द लॉस। और अगर

0: कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है, पर प्रेशर बिल्कुल रहेगा, खत्म बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो आपको उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑलमोस्ट क्लियर कट टॉप टू में बनने हुए थे। इस मैच के बाद अब आपको बहुत सारे परमिटेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना गेम नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि साउथ अफ्रीका बाकी दो मैच कैसे खेलती है, और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं, एक तो बांग्लादेशी है, दूसरा उनका मैच जहां हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है, उनके लिए वो मैच नेदरलैंड्स का है जिसमें वो अपना रन रेट इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे परमिटेशंस हैं, हमें अब सिर्फ अपनी दो जीत नहीं देखनी है बल्कि दूसरे की हार की भी उम्मीद करनी पड़ेगी, और ये किसी भी टीम के लिए सबसे खराब सिचुएशन होती है क्योंकि चीजें अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इस मैच तक पूरी तरह से इनका अपना फ्यूचर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में था, अब आप थोड़ा उस पे से हाथ छोड़ चुके हो।
1: और वहीं पे बता दें कि 25 तारीख को साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के साथ खेलेगी और उसके बाद आखिरी मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का भी। लेकिन चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खास तौर से उन श्रोताओं का भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। तो रविंद्र सिंह जी आपका, वैशाली जी आपका, और उत्तरा गणेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनालिसिस का। एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ वंडरफुल गेम उदिता, इजंट इट?
2: जी बिल्कुल।
1: आप कुछ अगले गेम की प्रेडिक्शन करना चाहेंगी?
2: हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश ने कल जिस तरह से पाकिस्तान को हराया उससे उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कहीं वो हमारे लिए नेट रन रेट में बाधा न बन जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान शायद भारतीय टीम को रखना चाहिए।
1: जी हाँ, और हम सब यहाँ से अब विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि 25 तारीख को भी भारत का जो मुकाबला होगा उसमें हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। हम सब की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: प्लेयर ऑफ द मैच,
4: अभी आप आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

अभी आप भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे हैं वीमेंस आईसीसी T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री CJ ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय

0: जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted today amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President